100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज दिन बुधवार, ज्येष्ठ मास की 20वीं तिथि, शक संवत 1948, तदनुसार 10 जून 2026 सुबह के 5:55 हो रहे हैं। अब हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज दिन बुधवार, ज्येष्ठ मास की 20वीं तिथि, शक संवत 1948, तदनुसार 10 जून 2026 सुबह के 5:55 हो रहे हैं। अब हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

में राम क्षण क्षण में श्याम। हो मस्जिद में अजान या वाहे गुरु का नाम, तुम सुन लेना भगवान, करना सबके कष्टों का निदान। तुम्हारे चरणों में नमन, तुमको बारंबार वंदन। हमारी प्रार्थना स्वीकारो प्रभु, पुष्पांजलि के हर पुष्प में तुम पधारो प्रभु।

107.7 FM पर मैं शिवम सभी श्रोतागण का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रातः के 6:02 हो रहे और प्रतिदिन की तरह भगवान विघ्न विनाशक श्री गणेश के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए आज की भक्तिभाव का कार्यक्रम पुष्पांजलि के साथ दिन का शुभारंभ करते हैं।

एक बार नारद मुनि जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा कि आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है। विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए बोला कि मेरा प्रिय भक्त एक किसान है। इस बात पर नारद जी ने निराश मन से पूछा कि मैं तो आपका सबसे बड़ा भक्त हूं, फिर प्रिय क्यों नहीं।

नारद जी के ये कहने कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं आपका, फिर प्रिय क्यों नहीं? इस पर भगवान विष्णु जी ने नारद जी को एक अमृत कलश थमाया और बोले कि इस कलश को लेकर तीनों लोकों की परिक्रमा करो, पर ध्यान रहे, एक बूंद भी गिरी तो तुम्हारा सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। और नारद जी यात्रा पर निकल पड़े।

आप सुन रहे हैं भक्तिभाव का कार्यक्रम पुष्पांजलि। तीनों लोकों की परिक्रमा के दौरान नारद जी का पूरा ध्यान केवल कलश पर था। नारद जी अमृत की एक भी बूंद गिरने नहीं दी। अंततः भगवान के पास सुरक्षित लौट आए और विष्णु जी ने पूछा कि इस दौरान मेरा स्मरण कितनी बार किया। नारद जी बोले, हे प्रभु, मेरा तो सारा ध्यान अमृत कलश पर था। तब जाके भगवान ने नारद को समझाया कि वही मेरा सच्चा प्रिय भक्त है जो कर्म करते हुए भी मेरा स्मरण करता रहे।

विष्णु जी की बात नारद जी से जब हुई तो विष्णु जी ने कहा कि तुम तो मेरा नाम लगातार जप करते हो, पर जब तुम्हें कर्म दिया गया तब तुम्हारे पास मेरे लिए समय ही नहीं था, और किसान हर दिन काम करते हुए भी थोड़ा समय जरूर निकालता है, इसीलिए वह मेरा प्रिय भक्त है। नारद मुनि विष्णु जी के चरणों में नतमस्तक हुए और कहा, आपने मेरा दृष्टिकोण बदल दिया।

कई बार ऐसा लगता है कि हमारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। कभी अधीरता हमें विचलित कर देती है तो कभी सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत होता है। पर सच्चा साधक जानता है कि हर विफलता प्रगति की एक मजबूत सीढ़ी होती है।

अपनी कमियों को स्वीकार करना ही सुधार की प्रथम सीढ़ी है। स्वयं का मूल्यांकन के माध्यम से हम पहचान पाते हैं कि किन दोषों को त्याग कर हमें अपने भीतर की दिव्यता के और निकट पहुंचना है।

निस्वार्थ प्रेम करें, धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्वास सफलता की आधारशिला है। निस्वार्थ प्रेम से व्यक्तित्व में निखार आता है। उच्च मूल्य को अपनाते हैं तब हमारे भीतर शांति व संतुलन स्थापित होता है। और आज की पुष्पांजलि से मुझे यानी शिवम को आज्ञा दीजिए, पर हमेशा की तरह पुष्पांजलि से विदा लेने से पहले आप सभी को एक बार मेरे साथ जुड़कर अवघड़दानी भोले बाबा, जिसे कहते हैं काशी का नरेश, उसका नाम मेरे साथ जुड़िए और जय घोष करिए। दोनों हाथ हवा में ऊपर और आंखें बंद करके दिल से पुकारिए, बोलिए मेरे साथ एक बार, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।

यू आर लिसनिंग 102.2 एफएम रेनबो कानपुर। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सुबह की ताजी हवा के साथ कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स और न्यूज़पेपर की सुर्खियों के साथ अतीत के आईने से लेकर देश और दुनिया की ताजा खबरें अब नहीं रहेंगी आपसे दूर, क्योंकि प्रोग्राम शुरू हो रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर। आज मैं हूं आपके साथ आरजे आशीष।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर। आइए अब आपको बताते चलें आज हमारे केंद्र से दिन भर प्रसारित होने वाले प्रोग्राम्स की जानकारी। सुबह 8:30 पर सुनिएगा कुछ पुराने नगमे, प्रोग्राम होगा सुरों की पुरानी महफिल, रसबहार प्रोग्राम होगा सुबह 9 बजे से, और विविधा के अंतर्गत सुबह 9:45 पर सुनिएगा कुछ भक्ति गीत, प्रोग्राम होगा अर्चना। सुबह 11 बजे से हम लेकर आएंगे आपका पसंदीदा प्रोग्राम हम नवाज, जिसे आज आप सुनेंगे ऋतु और आशीष के साथ। दिन में 3 बजे से होगा प्रोग्राम म्यूजिक आवर, और शाम 4 बजे से सुनना ना भूलिएगा अपनी पसंद के सॉन्ग्स, प्रोग्राम होगा आपकी पसंद। अभी आप सुन रहे थे आज हमारे केंद्र से दिन भर प्रसारित होने वाले प्रोग्राम्स की जानकारी। 102.2 एफएम रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर।

दोस्तों, जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो सब कुछ पॉजिटिव ही होता है, और आपकी पॉजिटिविटी को डबल करने के लिए हम रोज लाते हैं मॉर्निंग मंत्रा। आज के मॉर्निंग मंत्रा में हम लाए हैं अपने देश की पहली महिला शिक्षिका और महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले के विचार। सावित्रीबाई फुले का कहना था कि बिना संघर्ष के कोई अधिकार नहीं मिलता। सामाजिक अन्याय का विरोध करना और अपने अधिकारों के लिए लड़ना हर इंसान का कर्तव्य है। फिलहाल अभी हमारा कर्तव्य है कि हम आपको सुनवाएं एक अच्छा सा प्यारा सा गाना।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर। दोस्तों, अपने कानपुर नगर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया पर बहुत ही अच्छा मैसेज शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि एक जिम्मेदार नागरिक और संवेदनशील प्रशासन मिलकर ही एक बेहतर समाज और विकसित शहर का निर्माण कर सकते हैं। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सोशल मीडिया पर मैसेज शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पहले और आज के भारत में एक स्पष्ट अंतर है। कभी दुनिया भारत को केवल एक सॉफ्ट पावर के रूप में देखती थी, लेकिन आज इसे समाधान देने वाली शक्ति के रूप में देखा जाता है।

दोस्तों अतीत के आईने में नजर डाले तो आज की तारीख है बहुत इंपॉर्टेंट। आज की तारीख यानी 10 जून 1986 को भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा था। 10 जून 1972 को मुंबई के मझगांव बंदरगाह से पूरी तरह से वातानुकूलित पोत हर्षवर्धन का जलावतरण किया गया।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: हमारे प्यारे दोस्तों, हम लेकर आ रहे हैं आपके होठों पर सजने वाले सॉन्ग्स को,
3: जो होंगे आपकी मेल्स पर बेस्ड मेलोडियस सॉन्ग्स।
2: तो अपने फेवरेट सॉन्ग्स को सुनने के लिए आप शाम 4 से 5 बजे हमारे साथ रहिएगा आपकी पसंद के सफर पर।
4: मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो।
3: Only on 102.2 FM Rainbow, the musical heartbeat.
2: तो मेल करने के लिए हमारा मेल आईडी है airkansomedia@gmail.com। तो हमारे साथ सुनिए रेनबो कानपुर पर 4 से 5 आपकी पसंद प्रोग्राम।

वो कानपुर सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर, मैं हूं आपके साथ आरजे आशीष। आज है 10 जून सन 2026, दिन है बुधवार का, और जो लोग अभी अभी सोकर उठे हैं उनको भी गुड मॉर्निंग है जी।

गुड मॉर्निंग कानपुर। प्रोग्राम में देश और दुनिया की खबरों की बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाम आज यानी बुधवार को एक और उपलब्धि जुड़ गई। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 4,399 दिन यानी कि

12 वर्ष और 15 दिन पूरे करके वे सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले नेता बन गए हैं। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार 4398 दिन यानी 12 साल 14 दिन प्रधानमंत्री रहे थे। देश की रणनीतिक सुरक्षा और ढांचागत विकास के इतिहास में कल यानी मंगलवार को एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लद्दाख के मिनीमर्ग ईस्ट पोर्टल के पास रिमोट का बटन दबाकर अंतिम ब्लास्ट किया, जिसे जोजिला टनल का मुख्य ब्रेक थ्रू सफलता के साथ पूरा हो गया। समुद्र तल से 11,578 फीट की रिकॉर्ड ऊंचाई पर बन रही ये 13.153 किलोमीटर लंबी सुरंग एशिया की सबसे लंबी दो तरफा सड़क सुरंग है। और गृह मंत्री अमित शाह ने कल यानी मंगलवार को नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। और इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर।

गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम में आइए अब आपको बता दें अपने कानपुर महानगर से जुड़ी कुछ खास खबरें। तो दोस्तों आधार की सुविधा का लाभ ज्यादातर लोगों को दिलाने के लिए प्रधान डाकघर अब संडे वाले दिन भी खुला रहेगा। चीफ पोस्टमास्टर राम सागर शर्मा ने बताया कि सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक काउंटर खुला रहेगा, लोग आधार संबंधी कार्य करा सकते हैं। और बिजली विभाग से संबंधित आपकी कोई भी प्रॉब्लम है या शिकायत है तो मौके पर ही निस्तारण कराने के लिए केस्को का मेगा कैंप आज यानी 10 जून को दादानगर हेल्प डेस्क और 11 और 12 जून को केशवपुरम हेल्प डेस्क में सुबह 10 बजे से 3 बजे तक कैंप लगेगा। और महाकाल की नगरी और डायमंड सिटी तक का सफर अब और आसान हो गया है। रेलवे ने इंदौर और उधना के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें गोविंदपुरी से चलेंगी और संडे से आप इनमें रिजर्वेशन करा सकते हैं। रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर।

102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर। और दोस्तों, खेल जगत से जुड़ी खबरों की बात करें तो भारत ने त्रिकोणीय वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से पराजित कर दिया। श्रीलंका ए को अंतिम 17 गेंदों पर 16 रन चाहिए थे जबकि उसके 4 विकेट बचे हुए थे। ऐसे में किसी को भी भारत ए की हार के बारे में जरा भी संदेह नहीं था, लेकिन तभी पासा पलट गया और मेजबान टीम ने सिर्फ 10 गेंद में 4 विकेट गंवा दिए।

दोस्तों, मौसम से जुड़ी अपडेट्स की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 43.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। और आगामी 5 दिनों में हल्के से मध्यम बादल छाए रहने के कारण गरज चमक और तेज हवाओं के साथ दिनांक 13-14 जून 2026 को हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ लू का प्रकोप भी जारी रहने के आसार हैं, तो ऐसे में अपना बहुत ख्याल रखें, खासकर छोटे बच्चे और बुजुर्गों का। FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर।

200 घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम को अब यहीं पर वाइंड अप करना चाहिए। फिलहाल मुझे यानी अजय आशीष को दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि थोड़ी देर में आप सुनेंगे देश और दुनिया की ताजा खबरें समाचारों के साथ। तो बने रहिए 102.2 FM रेनबो।

0: है। क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला

0: श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर करता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी

0: के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे PMEGP लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
3: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित।

0: विश्व के लिए तैयार।
1: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था। हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
2: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
1: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 1.25 लाख करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकम्स लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वर्ल्ड लीडर्स हेल प्राइम मिनिस्टर मोदीज ट्रांसफॉर्मेटिव गवर्नेंस एंड एडवोकेसी फॉर ग्लोबल साउथ। NDA to meet in New Delhi today to celebrate PM Modi's achievements and completion of 12 years of government. Centre unveils 1.25 lakh crore rupees rural development push. New framework under Viksit Bharat Jiramji to roll out from 1st July. US military launches strikes against Iran in response to downing of Army Apache helicopter off Oman coast. And in cricket, Ruturaj Gaikwad's century helps India A beat Sri Lanka A by 8 runs in tri-series opener in Dambulla. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has become the longest continuously serving democratically elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26th of May in 2014. He surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on 13th of May in 1952 and served until 27th of May 1964. Pandit Nehru's tenure as an elected Prime Minister amounted to 4,398 days. Now, Prime Minister Modi's continuous tenure is 4,399 days, making him the longest-serving elected Prime Minister in India's history.

102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। सुबह के 8:30 हो चुके हैं और हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम सुरों की पुरानी महफिल। प्रोग्राम का पहला गाना आ रहा है चोरी चोरी फिल्म से लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। गीतकार शैलेंद्र, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

सुरों की पुरानी महफिल प्रोग्राम में अब आ रहा है आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में जॉनी मेरा नाम फिल्म का गाना। राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीत को सुरों में ढाला है कल्याण जी।

एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।

102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है सुरों की पुरानी महफिल। प्रोग्राम का अगला गाना आ रहा है लूफर फिल्म से, आवाज आशा भोसले की, गीतकार हैं आनंद बख्शी और ये संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
1: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
0: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप, तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
1: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते

0: पर कार्यक्रम मेल मिलाप विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी कानपुर बेना झाबर रोड कानपुर पिन कोड है 208002।
1: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:15 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
2: रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम चल रहा है सुरों की पुरानी महफिल। मैं हूं आपके साथ आरजे आशीष और प्रोग्राम का अगला गाना आ रहा है अजनबी फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। आनंद बख्शी के लिखे गीत को सुरों में ढाला है राहुल देव बर्मन ने।

कुमार की आवाज में अब आ रहा है बॉम्बे टू गोवा फिल्म का गाना। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार राहुदेव बर्मन।

इस गाने के साथ ही आज का शुरू की पुरानी महफिल प्रोग्राम अब यहीं पर समाप्त होता है। फिलहाल मैं यानी आज आशीष आपसे मिलूंगा बस थोड़ी ही देर में रसभार प्रोग्राम के साथ। बने रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर के साथ।

यू आर लिसनिंग 102.2 एफएम रेनबो कानपुर। एक बार फिर शुरू हो गया एक नया दिन, नई उम्मीद और नए उत्साह के साथ। और एक बार फिर मैं यानी आज आशीष लेकर हाजिर हूँ प्रोग्राम रसबहार। आज रसबहार प्रोग्राम में हम बात करेंगे व्यस्तता की। जी हाँ, आज जिसे देखिए किसी ना किसी काम में बिजी है यानी कि व्यस्त दिखाई देता है, लेकिन क्या हम सचमुच बिजी हैं या फिर बिजी होने का दिखावा कर रहे हैं? इसी टॉपिक पर बहुत सारी बातें करेंगे। फिलहाल अभी आ रहा है प्रोग्राम का ये पहला गाना।

दोस्तों, आज अगर किसी इंसान से पूछिए कैसे हो आप, तो अक्सर जवाब मिलता है बस बहुत बिजी हूँ। मानो बिजी होना ही सफलता का सर्टिफिकेट बन गया हो। अगर कोई कह दे कि उसके पास टाइम है तो लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते, और धीरे धीरे हमने व्यस्तता को उपलब्धि और फुर्सत को कमजोरी समझना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? अभी कुछ दशक पहले की बात करें तो लोगों के पास आज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना स्मार्टफोन थे, ना इंटरनेट, ना ऑनलाइन बैंकिंग, ना डिलीवरी एप्स। तब कई कामों में घंटों लग जाते थे, फिर

भी लोग अपने परिवार के साथ बैठते थे, पड़ोसियों से बातचीत करते थे, किताबें पढ़ते थे और त्योहारों का आनंद लेते थे। आज हमारे पास टाइम बचाने वाली अनगिनत सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं। फिलहाल अभी हम बातों की व्यस्तता से निकलते हैं और आपको सुनवाते हैं प्रोग्राम का ये पहला अगला गाना। रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम चल रहा है रसबहार।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
3: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
4: बन गया बजट?
3: हाँ,
4: 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले।
4: ना,
3: पिछले महीने तो ली थी।
4: एक और
3: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
4: बढ़ी गई,
3: जाओ भाई।
5: RBI कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम चल रहा है रस बहार। और आज रस बहार प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि क्या हम सचमुच बिजी हैं या फिर बिजी होने का दिखावा कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे दिन का एक बड़ा हिस्सा ऐसे कार्यों में निकल जाता है जो देखने में बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, लेकिन वास्तव में उनका कोई विशेष परिणाम नहीं होता। सुबह उठते ही मोबाइल फोन हाथ में आ जाता है, हम सोचते हैं कि केवल 5 मिनट सोशल मीडिया देखेंगे, लेकिन कब आधा घंटा बीत जाता है पता ही नहीं चलता। फिर दिन भर मैसेजेस का जवाब देना, वीडियो देखना, बार बार नोटिफिकेशन चेक करना, बिना किसी उद्देश्य के इंटरनेट पर भटकना, ये सब मिलकर हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हम बहुत बिजी हैं। जबकि सच्चाई ये है कि हमारा समय बिखर रहा होता है।
8: प्लैटिनम रिकॉर्ड शहर टेक 1।

दोस्तों, आज के दौर में एक नई समस्या पैदा हुई है, दिखावटी व्यस्तता। कई लोग वास्तव में काम करने से अधिक समय ये दिखाने में बिताते हैं कि वे कितने व्यस्त हैं। सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहना, हर समय फोन पर बातें करते रहना, बिना जरूरत के मीटिंग्स करना, हर काम को कठिन बनाना, ये सब व्यस्तता का प्रदर्शन बन चुके हैं। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम बिजी हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि हम किस

0: आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
1: हमारे प्यारे दोस्तों, हम लेकर आ रहे हैं आपके होठों पर सजने वाले सॉन्ग्स को,
2: जो होंगे आपकी मेल्स पर बेस्ड मेलोडियस सॉन्ग्स।
1: तो अपने फेवरेट सॉन्ग्स को सुनने के लिए आप शाम 4 से 5 बजे हमारे साथ रहिएगा आपकी पसंद।

0: only on 102.2 FM Rainbow, the musical heartbeat.
1: तो मेल करने के लिए हमारा मेल आईडी है
0: airkansomedia@gmail.com.
2: तो हमारे साथ सुनिए रेनबो कानपुर पर 4 से 5 आपकी पसंद प्रोग्राम.
3: वन जीरो टू पॉइंट टू एफएम रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप. प्रोग्राम चल रहा है रस बहार. आज मैं हूं आपके साथ आज आशीष. और आज रस बहार प्रोग्राम में बातें हो रही हैं कि क्या हम सचमुच व्यस्त हैं या फिर व्यस्त होने का दिखावा कर रहे हैं. क्योंकि जीवन का उद्देश्य केवल हर समय काम में डूबे रहना नहीं है. जीवन का उद्देश्य है संतुलन बनाना और खुश रहना. फिलहाल अभी आपको खुश करने आ रहा है प्रोग्राम का ये अगला गाना.

दोस्तों आज हम अपनी लाइफ की कई इंपॉर्टेंट चीजों को समय की कमी का बहाना बनाकर टाल देते हैं। हम कहते हैं कि बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है, पेरेंट्स के साथ बैठने का टाइम नहीं है, बच्चों से बात करने का और उनके साथ खेलने का टाइम नहीं है, योगा और एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है। लेकिन अगर हम ईमानदारी से पूरे दिन का एनालिसिस करें तो पाएंगे कि हमारा बहुत सारा टाइम उन एक्टिविटीज में चला जाता है जिनका हमारी लाइफ में कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पड़ता। फिलहाल गीत संगीत का हमारी लाइफ में बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो चलिए बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले गाने की ओर। वन जीरो टू पॉइंट टू एफएम रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम चल रहा है रसबहार।

0: बात है।
1: बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम

दोस्तों, हर बिजी व्यक्ति को केवल दिखावा करने वाला नहीं कहा जा सकता। बहुत से लोग वास्तव में हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या हमारी व्यस्तता हमें आगे बढ़ा रही है या केवल थका रही है। अगर दिन भर के काम के बाद हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने कुछ सीखा, कुछ बनाया, किसी की हेल्प की या अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाया, तो हमारी व्यस्तता सार्थक है। लेकिन अगर दिन समाप्त होने पर हमें केवल थकान महसूस होती है और ये समझ नहीं आता कि पूरा दिन कहाँ चला गया, तो शायद हमें अपने समय के उपयोग पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। फिलहाल अभी जरूरत है प्रोग्राम के इस गाने की।

इस गाने के साथ ही आज का रस बहार प्रोग्राम अब यहीं पर वाइंड अप होता है। फिलहाल मैं यानी अजय आशीष आपसे मिलूंगा बस थोड़ी ही देर में विविधा प्रोग्राम के साथ। बने रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर के साथ।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: सारे गा पदा निदा पगरे गा मगरे गा सागा।
3: नमस्कार, मैं हूँ अनूप जलोटा। यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो कानपुर।

102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। सुबह के 9:45 हो चुके हैं और हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम अर्चना। अर्चना कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं महेंद्र कपूर की आवाज में इस आरती के साथ।

कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट माखन चोरी, उसी पर यह भजन सूरदास जी ने लिखा है। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने, और जिसके घर माखन चोरी होती वो गोपी आ जाती शिकायत करने यशोदा के पास कि देखो तुम्हारे बेटे ने हमारे घर बहुत नुकसान किया, बड़ा उपद्रव किया। यशोदा गुस्से में कन्हैया को बुलाती, पूछती है सब क्या करके आए, देखो सब शिकायत करने आई हैं। और कन्हैया बड़े भोलेपन से कह देते, मां मत सुनना सब झूठी, ये तो सब बहाना बना के आई है मुझे देखने, और बात समाप्त हो जाती है। लेकिन आज कन्हैया ने अपने ही घर में माखन चोरी की और मां ने देख लिया। बाद में मां अचानक पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया है क्या, अचानक पूछा था। तो कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया,

क्या सच्चाई है क्या वास्तविकता है आप सभी जानते हैं। कन्हैया ने माखन खाया है और मां ने देख लिया, दोनों जानते हैं माखन खाया है। मुख से निकल गया मैं नहीं माखन खाया, कन्हैया ने कहा मुख से निकल गया तो क्या हुआ, अभी सिद्ध कर देते नहीं खाया। और ऐसे ऐसे तर्क दिए मां को।

अंत में माँ ने कह दिया, हाँ बेटा तूने माखन नहीं खाया। सबसे पहला तर्क दिया, कहने लगे मां ये तुमने सोचा कैसे मैंने माखन खाया, तुम्हें तो मालूम है कितने काम है मेरे पास।

कोई असर नहीं मां पर। अब कन्हैया ने मां की खुशामद, मां की तारीफ शुरू की, मां प्रसन्न हो जाएगी, क्षमा कर देगी। देखिए कन्हैया मां की खुशामद कर रहे हैं।

थोड़ा गुस्सा दिखाया, कहने लगे माँ ये लाठी और कंबल दे दिया है तुमने, रोज भेज देती हो गाय चराने, ये सब वापस लो, मैं चला कल से ये काम नहीं करूं।

कन्हैया का गुस्सा भी सह लिया माँ ने। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी कोई माँ नहीं सुन सकती, आंखों में आंसू आ गए कन्हैया के, कहने लगे माँ मैं समझ गया बात क्या, ये माखन की बात नहीं, ये माखन का तो तुमने बहाना लिया, तुम्हारे मन में क्या है मैं जान गया।

तो मां मान गई, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। चमत्कार देखिए शब्दों का, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार किया। अभी तक मां कह रही है

मान गई, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। चमत्कार देखिए शब्दों का, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार किया। अभी तक मां कह रही है

अनूप जलोटा के गाए इस भजन के साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम अब समाप्त होता है। 102.2 एफएम रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से होगा।

सुनिए मुख्य समाचार। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी आज प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें स्वच्छता अभियान, फलों और मिठाइयों का वितरण और दिन भर विभिन्न मंदिरों में भंडारे शामिल हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी इस मौके पर काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास में सबसे लंबे अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देने वाले जन नेता बनने पर बधाई दी है। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि भारतीय लोकतंत्र का यह अभूतपूर्व कीर्तिमान संपूर्ण देश वासियों के विश्वास और स्नेह आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि इतिहास में ऐसे अवसर विरले ही देखने को मिलते हैं जब कोई नेतृत्व केवल सरकार का नहीं बल्कि एक युग की चेतना का प्रतीक बन जाता है। यह सम्मान उसी तप, त्याग और दूरदृष्टि राष्ट्रनिष्ठा का अभिनंदन है जिसने करोड़ों देशवासियों को विकसित भारत के स्वप्न से जोड़ा है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का आज तीसरा और अंतिम दिन है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों में कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा कराई जा रही है। सॉल्वर गिरोह के पकड़ने के लिए यूपी एसटीएफ, लोकल इंटेलिजेंस और पुलिस भी सक्रिय है। इसी क्रम में जौनपुर में भर्ती परीक्षा के मद्देनजर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी इंस्पेक्टर सुनील कुमार गौड़ ने नेतृत्व में स्टेशन परिसर में सघन चेकिंग की गई। परीक्षा में शामिल होने के लिए पहुंचे अभ्यर्थियों को जीआरपी टीम ने सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव दिए। साथ ही परीक्षार्थियों को भीड़भाड़ के दौरान असामाजिक तत्वों से सतर्क रहने के लिए जागरूक किया है। अमरोहा में पुलिस द्वारा कल से 12 दिवसीय राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटीज इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 का आयोजन किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बताया कि इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 10,000 प्रतिभागियों की ऑनलाइन स्क्रीनिंग की गई है, जिसके बाद 850 अभ्यर्थियों को चुना गया है। इस प्रोग्राम में देश भर से साइबर एक्सपर्ट और पुलिसकर्मी साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए साइबर योद्धा तैयार करेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें। चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

तो भैया सब लोगों ने आप सभी के एक बार फिर से राम राम प्रणाम बा। हमार नाम शिवम बा। आप सबका फेवरेट प्रोग्राम जो ना कि आप सभी अपने भाषा में और सबकी भाषा में कहल जाला, जेकर नाम बा सुगंध माटी के। अब बात जब सुगंध माटी को होला तो तरह तरह का बात, तरह तरह का भाषा, तरह तरह का गाना इस प्रोग्राम में जरूर बाजी। आज जब गाना का बात बाटे तो एगो गाना हम बड़ा दिन से एक जोगा के धैले रहनी है तो हम लोगों को सुनावे खातिर, तो ये गाना के सुनल जाओ। आ ये गाना का बहुत पहले जोन गायक बना बड़ा सब बात कह के गई, वह बात पर हुई आ गाँव गिराव का बात हुई, तो ये गाना के सुनल जाओ, आनंद लिहल जाओ।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है।
2: भाई अब मैच का क्या होगा?
1: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
3: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं।
4: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
3: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-444-444।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

10:13 हो गए बटे है। जैसर की एक गाना में एगो लाइन रही है कि बलिया के सतुआ देवरिया के मर्चा, तो बहुत कमे लोग इस बात से इत्तेफाक रखत हुए हैं जहाँ कि आज के समय में तो तमाम तरीके का ड्रिंक आगे में पिए वाला, ठंडा के पियता, केहू दही लच्छी पियता, खैर तो वो पुराने वाले, लेकिन तमाम तरीके का जो एनर्जी ड्रिंक नाम से जो कहल जाता है समय मार्केट में आई बा। लेकिन एगो समय रहे कि बलिया का सतुआ बहुत फेमस रहे, अहो समय फेमस बाटे, ऐसा बात नहीं के। तो उस समय क्या होके कि दोपहरिया में हाई मैं लूही बहुत ये इतना एकदम देह जरावे वाली, वैसा लूही में जे पुरानिया रहे जे घर का रहे जे उ सतुआ घोरा आ बढ़िया एकदम जो माटी के कुंडा में जो कहल जाला कि राब धरा गुड़ धरा दानेदार वाला ओकर रस घोरा सतुआ सनाव आ भर दोपहरिया आदमी खा आ हई जोन दवाई तमाम तरीके के चावल बटे के लोही से बचावे खाती हई दवाई खाला हाउ दवाई खाला हई जोगत लगा लो, तो वो समय कुल ना रहे। कहला मतलब ये बटे कि जे वो पीढ़ी के देखले बा जे वो पीढ़ी के समझले बा सतुआ का पिसाने का जे जौ का आटा खैले बा जे मकई का आटा खैले बा ओकर स्वास्थ्य आ जे आज के स्वास्थ्य बटे ओकरी में आ पहले के समय में बहुत अंतर रहल बाटे। फिलहाल एगो और भोजपुरी सॉन्ग जौन हालांकि चैत में सुनल जाला लेकिन एहू समय वो गाना के सुन सकत बानी जा आप सबे, तो ये गाना सुनल जाओ आ बढ़िया से बढ़िया गाना, शानदार शानदार गाना, बहुत सारा ईमेल भी आ गया बा आप सबका, पढ़ल जाए ईमेलो पढ़ल जाए, ढेर सारे बातियो हुई लेकिन गनवो चलल बहुत जरूरी बा। तो लिहल जाओ एगो पवन सिंह की आवाज में बेहतरीन गाना।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: दस बज के 20 मिनट हो गए बेटे। अच्छा आप सभी के एक बात और ही बतावल चल जाओ कि ये समय है जो नौका नौका घर बनत बटे, सब अपनी घर में एसी कूलर पंखा लगोले रहत बटे, लेकिन एक समय रहे कि जौन समय घर थपुआ नरिया के बने, जने के कहला मतलब खपरैला के घर कहल जा। बहुत आदमी जौन बाटे थपुआ नरिया के घर देखलहू ना हुई, नौका पीढ़ी तो बिल्कुल ना देखले हुई, लेकिन जे रहल हुई वे जानत बटे वो घर का स्वाद। कहे कि थपुआ नरिया का घर वो समय वो रहे कि जो ऑटोमेटिक टेम्परेचर चेंज कर ले अपने हिसाब से, समय के हिसाब से। जैसे गर्मी का ये समय जोन है मैं लुई बहत एटे, मैं आदमी धरती सिवान बगीचा मैं जरत रहल बा, ये समय वो घर जोन रहे थपुआ नरिया का छान मड़ई रहे वो ठंडा रहे, आ ठंडा के दिन में वो घर गर्म हो जा। तो देखो सोचल जाओ कि हमहन के पूर्वज वही समय वो टेक्निक बना दे रहे कि भैया हमार जो आने वाली पीढ़ी रही ओके गर्मी न लागे, जाड़ न लागे, बतास न लागे। लेकिन जब हम का नया पीढ़ी आई वो अपन कल्चर अपन संस्कृति अपन भाषा अपन जोन स्वाद बाटे ओके छोड़ के आधुनिकता में पीछे इतना पागल हो गई, आ भोजपुरी में कहल जाए कि इतना बौराहा हो गई कि वो चीज के आदमी छोड़ ही दिया। तो अब वो बात के आदमी धीरे धीरे समझत अटे, लेकिन एगो बात तो बता लो जा, वो समय जब थपुआ नरिया जब फूट जाए तब ओके फेरावे के रहे तो दूसरा दूसरा गांव से जाके वो कुहारे के साइकिल पर बैठा के ले आवल जा, आ ओकर पैसा देवे के पड़े, ओके धोती कुर्ता पहनावल जाओ, तब जाके वो बनावे तो हाथ थपुआ नरिया जोन बाटे खूब बढ़िया से सजा के जोगा के घर बने। आ हाई जितना है कुल लागे लकड़ी मूज कूस उकुल लगा के बढ़िया से रंग पोता के एकदम जोन आज के समय में जोन घर द्वार बाटे वो समय वो घर द्वार मैं माटी से लिपा, नहरी नाला से माटी निकाल के लिया स्पेशल माटी रहे वो लिपाओ, आ एकदम गेरू से रंग के पोत के खूब बढ़िया सुंदर सुंदर घर एकदम बनल जा। जे समय आज तो दुनिया तमाम तरीके के पेंट आ गिल बा, वॉलपेपर आ गिल बा, प्लास्टिक सीट आ गिल बाटे, तमाम तरीके के कुल सुविधा चलल बाटे। अच्छा भोजपुरी में दोस्तों ऐसे शब्द होते हैं जो बहुत ही पुराने समय के होते हैं और जो प्रचलन में बहुत कम हो जाते हैं, आमतौर पे जब हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो वो वर्ड बहुत ही कम होते हैं। जैसे हमने अभी एक इस्तेमाल किया वर्ड थपुआ और नरिया, तो जो खपरैल में जो पार्ट लगते थे जो इस्तेमाल होते थे उसे थपुआ नरिया बोला जाता था। जैसे मैंने बोला था एक निहोरा है, तो निहोरा शब्द का अर्थ ये होता है कि अनुरोध करना। तो ऐसे शब्द जो है हमारे गाँव में जो जो पुराने हैं, कहला का मतलब ये धोती कुर्ता पहन ले बा, नौका वाला नहीं हाउ पैंटा वाला स्टाइल की जोन बा धोती इंगने पहनला पेंट नियर लगौला चल दियाला, वो ना है जे पुरनका लोग जो रहे जे कपारे पर गमछी बांध के चले आ खादी का कुर्ता आ 3 मीटर का गमछा लगा के चलो जा लूँ, वो लोग जो धोती पहने कई स्टाइल है पहनला का वो लोग भाषा के समझत हो कम जा। एक और ही गाना बटे सुनल जाओ भाई, भर दोपहरिया एकदम बढ़िया गाना चली सुनल जा, आनल लिया जा, बड़ा तारीफों मिला था प्रोग्राम का, बड़ा ढेर सारा ईमेल आयल बा, पढ़ल जाई सबे पढ़ल जाई, लेकिन वो गनवो सुन लिया जाओ तब तनी आनंद आवे। जैसे कि आमे का टिकोरा बटे आमे का चटनी है सतुआ, बढ़िया दोपहरिया में एकदम खाइल जाओ और पच आराम करे।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तानें, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: और अब भोजपुरी से थोड़ा सा टेस्ट बदलते हैं, आते हैं इस गाने की ओर। चल रहा है सुगंध माटी के 100.7 FM रेनबो पर। शिवम है आज आपके साथ।

0: कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
3: पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। 10:34 और ये भागते हुए सेकंड, बहुत सारे ईमेल आ गए, जल्दी से ईमेल पे भी हम नजर दौड़ा लेते हैं। ब्रजेश सिंह इटहुआ दीपू कैसरगंज से इन्होंने हमें ईमेल किया है, लिखते हैं, राम राम शिवम भैया जी, और टाइम नहीं है फिर भी हम ईमेल कर रहे हैं, 6 बजे से लगातार कार्यक्रम सुन रहे हैं, और ये खेत में गन्ने में दवाई छिड़क रहे थे, उसे अब छोड़कर ये सुगंध माटी का आनंद लेने के लिए कुछ टाइम तक रुके हुए हैं। ब्रजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका ईमेल करने के लिए। तेज बहादुर यादव सुगंध माटी का लिए ने लिखा है, शिवम भैया जी को मेरा नाम कैसन है, बहुत ही गजबो गजब कार्यक्रम चलता, बहुत सुंदर गीत सुनवा रहे हैं आप और फुल मस्ती हो रही है, बहुत शुक्रिया। मऊ गांव का नाम इनका, मऊ शर्की जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश से, और अभी ये फिलहाल में हरियाणा से हमारा प्रोग्राम एप्लीकेशन के माध्यम से सुन रहे हैं। इंद्रपाल मिश्रा जी ग्राम अमृता महोली सीतापुर से, इंद्रपाल मिश्रा जी ने कार्यक्रम की बहुत बहुत तारीफ की है, बहुत शुक्रिया आपका ईमेल करने के लिए। विजयपाल यादव ललहुआ लखीमपुर खीरी से लिखते हैं, आदरणीय शिवम भाई नमस्ते, और बहुत गाने की जो है चॉइस बहुत अच्छी है, गन्ने की सिंचाई कर रहे हैं, आम के पेड़ के नीचे ये बैठे हुए हैं और सुगंध माटी का आनंद ले रहे हैं, बेहतरीन है। गाने का मतलब कि अगर आप खेतों में बैठ के ले रहे हैं तो वो कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा हो जाना, तो बिल्कुल एकदम लगे रहिए, सुनते रहिए और बहुत अच्छा लग रहा है। आपका ईमेल आ रहा है गुलबसा सिद्दीकी, हेलो गुड मॉर्निंग, आप प्रोग्राम बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रोग्राम की सारी तारीफें हैं और गाने की फरमाइशें हैं। राज कमल यादव का ईमेल पढ़ेंगे लेकिन कुछ देर बाद, क्योंकि गाना है बिल्कुल तैयार। 10:35 शिवम है आपके साथ सुगंध माटी में।

इंदु सोनाली को आप सुन रहे थे, और ये जो लास्ट में जो तान बजो जो छेड़ी है, ये भोजपुरी की एक बहुत पहचान है अलग से, कि बिल्कुल एकदम मतलब अभी अभी हमें एक पर्सनल फोन पे मैसेज आया कि कहा चाहता भैया कि हमके जाए कर अगला महीना में गावे, यही महीना में अजुए गावे भेजवा दे, मैं ट्रेन में भीड़ चलत थे हम केहूंग ने अब गावे पहुंचल जाओ। कहला का मतलब ये बा कि जब गाना आ भोजपुरी का स्वाद भाव जब तनी लागेला कि हाँ अब गांव से दूर आ गई बन जा, कमाई धमाई के चक्कर में पढ़ाई लिखाई के चक्कर में जब गांव से आदमी दूर हो जाला तो गांव को ये कुल बात सुन के याद तबे करे ले। तो जना कहता ना कैसन में कि लागत कि आज सांझी का ट्रेन धरे के परी गाँव में जाए के परी। फिलहाल अब भोजपुरी से थोड़ा सा चेंज करते हैं, आते हैं हरियाणवी सॉन्ग सुनते हैं, बढ़िया सा एंजॉय करिए। 10:46 शिवम है आज आपके साथ सुगंध माटी में।

और एक बार फिर से भोजपुरी में लौट रहे हैं वापस, क्योंकि भोजपुरी गानों का भी बहुत सारा स्टॉक बचा हुआ है। लोग कह रहे हैं भाई भोजपुरी गाना में सुना दीजिए। आचल सेठ लिखती हैं, शिवम भैया जी नमस्ते, हमारे मन की मुराद पूरी कर दी, बहुत दिनों बाद इस प्रोग्राम में आए हैं और हमारे घर में सास ससुर जी और हमारे वो भी मतलब इनके हस्बैंड भी सुन रहे हैं, गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है। और आपके आने से प्रोग्राम में 400 चांद लग जाते हैं, ऐसा आचल सेठ का कहना है। रोशनी रावत जी लिखती हैं कि राम राम भैया जी, बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम, बहुत ही तारीफ की है, इनके पास शब्द नहीं है। गांव बमना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव, फिलहाल ये चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रही हैं। बबीता राव, नीलू शर्मा, गुलाबशा दीदी, सब लोगों के साथ में ये सुन रहे हैं और सभी लोग डांस कर रहे हैं, बड़ा अच्छा इनको प्रोग्राम लग रहा है। विजय पाल यादव जी, वो डांस कर रही है, लग रहा है कि मतलब चोट लग जाएगी उसको, इसलिए पकड़े हुए हैं उसको। राजकमल यादव, सोनू परवाना मेल, आचल सेठ, रोशनी रावत, मोनू भैया लिखते हैं कि शिवम भैया जी राम राम नमस्ते हैं, हमारी नानी की तरफ से आपका भी राम राम, तो हमारे तरफ से भी आपकी नानी को राम राम जरूर बोलिएगा। और बहुत दिन बाद ही प्रोग्राम में आज आया हो, नानी जी कहते हैं कि अंजू बहनी रत्ना बहनी जी को राम राम पहुंचा दिया, बिल्कुल पहुंच के पास, और आपकी भी तारीफ कर रही हैं, आपके गाने की भी तारीफ कर रही हैं और आप जो बोल रहे हैं उसकी भी तारीफ ये कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका ईमेल करने के लिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। अगला ईमेल गीता सेठ जी का है और पवन कुमार जी ने भी हमें ईमेल किया है, तो जल्दी से एक गाना सुनवाते हैं, उसके बाद वाइंड अप करते प्रोग्राम। बेहतरीन सा गाना आपके लिए

जी हाँ भैया, आप अपने गर्मी में ख्याल रखिए, जो कि अभी लू जो चल रही है, जो बिल्कुल एकदम भयंकर वाली गर्मी है, उसमें बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि पटना से वैद्य बुलाने की नौबत ना आए, कहीं से भी वैद्य बुलाने की नौबत ना आए। खुद का ध्यान रखिए और पानी पीते रहिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। और जाते जाते ये बलिया का बागी गीत जरूर सुनिए, क्योंकि ये एनर्जी से भर दे।

0: 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। सुबह के 11 बज चुके हैं और हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम हमनवा, जिसमें आज मैं हूं आपके साथ आरजे आशीष और मेरे साथ मेरी हमनवा हैं
1: आरजे रितु। स्वीकार कीजिए दोस्तों मेरा भी प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हम नवा प्रोग्राम में। और आशीष तुम्हारा भी स्वागत है।
0: जी बहुत सभी लोगों का स्वागत है जितने लोग भी हमसे जुड़े हैं और सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: आशीष मैं तुमसे ये पूछना चाह रही थी कि तुम योग करते हो कि नहीं।
0: अरे अचानक से आपने बात की शुरुआत योग से ही क्यों की?
1: अरे वो मैंने इसलिए की कि मैं एक्चुअली रोज पार्क जाती हूँ ना, तो मैंने देखा है लोगों को योग करते हुए और मैंने कई पार्क देखे मेरे घर के आसपास हैं, तो मैं इस समय देख रही हूँ कि योग शिविर लगे हुए हैं और लोग योग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि लोग जागरूक हो रहे हैं योग के प्रति, तो इसलिए मैंने तुमसे पूछ लिया कि तुम करते हो कि नहीं करते।
0: जी बिल्कुल करता हूँ और डेली योगाभ्यास करता हूँ, साथ में एक्सरसाइज करता हूँ जितना समय मिल पाता है। और वहाँ पर हमारे बगल में ये मोती झील है, यहाँ पर जाता हूँ और योग करता हूँ। भाई योग के नियमित अभ्यास से शरीर में लचीलापन आता है, तनाव कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है, तो इतने सारे जब फायदे हैं तो फिर योग क्यों ना किया जाए।
1: बिल्कुल आशीष, हम भी यही कहना चाहते हैं अपने लिसनर्स से कि अगर जो योग नहीं कर रहे हैं या जागरूक नहीं है तो भाई योग जरूर करिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए और योग करिए, क्योंकि इससे बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ भी हैं।
0: जी भाई, तनाव और चिंता से मुक्ति मिलती है जैसा कि सभी जानते हैं, एकाग्रता में बढ़ोतरी होती है। कि भाई कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो अगर हम योग कर रहे होते हैं तो कोई भी काम हम करते हैं तो ध्यान पूर्वक करते हैं, और कई लोगों को ये समस्या होती है अनिद्रा की, तो वो समस्या भी दूर हो जाती है। मतलब हम यहाँ पर कई छोटी छोटी बातें बोल रहे हैं लेकिन योग का जो रूप है ना वो बहुत विस्तृत है।
1: बिल्कुल आशीष, और तो हम अपने श्रोताओं से यही कहना चाहेंगे कि योग को अपने जीवन में जरूर अपनाएं।
0: बिल्कुल रितु, बातें तो बहुत सारी होती रहेंगी, फिलहाल हम अभी बढ़ रहे हैं हम नवा के उन टॉपिक्स पर जिनमें आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमोंग सिविलाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सभ्यताओं के बीच संवाद का आज दिवस मनाया जा रहा है, तो इस पर हम बात करेंगे।
1: बिल्कुल आशीष, और एक दिवस और भी है विश्व भूगर्भ जल दिवस, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। और पशुओं के प्रति दया करुणा और उचित व्यवहार, ये भी एक हमारा विषय है आज का, और इस पर भी हम अपने श्रोताओं से बातचीत करेंगे।
0: साथ ही साथ तेजस्विनी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे शीला दावरे की, जो कि पहली भारतीय महिला ऑटो चालक हैं, तो इनके विषय में भी हम बात करेंगे। और फास्ट फूड हमारे लिए कैसे हानिप्रद है, इस पर भी
1: तो
0: बात करेंगे।
1: बिल्कुल इस पर तो जरूरी है बात करना आशीष, और साथ में रेसिपी है हमारे पास।
0: हाँ, और इसको सस्पेंस में रखते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल इसको सस्पेंस में रखते हैं, और हमारे श्रोता जुड़ चुके होंगे, कनेक्ट हो चुके होंगे अभी तक

0: हमसे। तो फास्ट फूड हमारे लिए कैसे हानिप्रद है, इस बारे में हम बात करेंगे और हम अपने श्रोताओं के विचार भी जानना चाहते हैं, क्योंकि देखो ये जो फास्ट फूड हैं ये सभी, मेरे ख्याल से ये जो प्रॉब्लम है ना ये सबके घरों में है।
1: मतलब लोग जानते हैं कि ये जो है हानिप्रद है, लेकिन स्वाद के चक्कर में फास्ट फूड से खींचे चले जाते हैं। तो फास्ट फूड हमारे लिए किस तरह से हानिप्रद है, आपके पास भी अगर कोई विचार हो तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है
0: AIRKANSOMEDIA@gmail.com।
1: ईमेल आईडी एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं AIRKANSOMEDIA@gmail.com।
0: और अब सुनते हैं एक बढ़िया सा ट्रैक।
1: बिल्कुल।

0: तो आशीष, अब हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस, यानी अंतर्राष्ट्रीय सभ्यताओं के बीच संवाद दिवस। मानव सभ्यता का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। समय के साथ दुनिया के अलग अलग भागों में अनेक सभ्यताओं का विकास हुआ।
1: जी बिल्कुल रितु, इन सभ्यताओं ने मानव जीवन को ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य, दर्शन और संस्कृति की अमूल्य धरोहरें प्रदान की। मिस्र, सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, चीन, यूनान और रोमन सभ्यता जैसी अनेक सभ्यताओं ने मानव विकास की दिशा निर्धारित की। इन सभी सभ्यताओं की अपनी अपनी विशेषताएं थी, लेकिन एक बात समान थी रितु, कि मानव कल्याण और सामाजिक विकास की भावना।
0: बिल्कुल आशीष, देखा जाए तो आज का विश्व पहले की अपेक्षा कहीं अधिक जुड़ा हुआ है। इंटरनेट, संचार, तकनीक और वैश्वीकरण ने देशों के बीच की दूरियां कम कर दी हैं, लेकिन इसके साथ ही सांस्कृतिक मतभेद, धार्मिक असहिष्णुता, सामाजिक विभाजन और संघर्ष जैसी चुनौतियां भी सामने आई हैं। ऐसे समय में सभ्यताओं के बीच संवाद की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है।
1: और इसी महत्व को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय सभ्यताओं के बीच संवाद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सभ्यताओं, संस्कृतियों और समुदायों के बीच आपसी समझ, सम्मान और सहयोग को बढ़ावा देना है।
0: बिल्कुल आशीष, संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता है। संवाद का अर्थ है एक दूसरे को सुनना, समझना और सम्मान देना। जब विभिन्न संस्कृतियों के लोग संवाद करते हैं तो वे एक दूसरे की परंपराओं, विचारों और जीवन मूल्यों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। इससे पूर्वाग्रह और गलत फहमियां दूर होती हैं और विश्वास का निर्माण होता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने रितु, और आज दुनिया अनेक गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसा कि दिखाई दे रहा है, और जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, गरीबी, असमानता, महामारी और युद्ध जैसी समस्याएं किसी एक देश या समुदाय तक सीमित नहीं है। इनके समाधान के लिए वैश्विक सहयोग आवश्यक है, और सहयोग तभी संभव है जब संवाद होगा, बातचीत होगी। संवाद हमें ये सिखाता है कि भिन्नताएं संघर्ष का कारण नहीं बल्कि सीखने और समृद्ध होने का अवसर है।
0: और भारत का इतिहास इस संबंध में अत्यंत प्रेरणादायक रहा है। हमारी संस्कृति सदैव सहिष्णुता, समावेशिता और सह अस्तित्व की पक्षधर रही है। वसुधैव कुटुंबकम का विचार हमें सिखाता है कि पूरा विश्व एक परिवार है। भारत ने सदियों से विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों को अपनाया है और उन्हें सम्मान दिया है। यही कारण है कि भारत को विविधता में एकता का अद्भुत उदाहरण माना जाता है।
1: और स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में अपने ऐतिहासिक संबोधन के माध्यम से विश्व को भाईचारे और सहिष्णुता का संदेश दिया था। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के माध्यम से मानवता को जोड़ने का कार्य किया। आज भी उनके विचार सभ्यताओं के बीच संवाद की भावना को मजबूत करते हैं।
0: और हमारी युवा पीढ़ी की भूमिका इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों के युग में हमें जिम्मेदारी के साथ संवाद करना चाहिए। हमें किसी भी संस्कृति, धर्म या समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए। हमें विविधताओं का सम्मान करना चाहिए और ऐसे विचारों को बढ़ावा देना चाहिए जो समाज को जोड़ते हैं, ना कि तोड़ते हैं।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने कि जो समाज को जोड़ते हैं, ना कि तोड़ते हैं। और शिक्षा भी सभ्यताओं के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जब हम विभिन्न देशों के इतिहास, साहित्य, कला और संस्कृति का अध्ययन करते हैं तो हमारे दृष्टिकोण का विकास होता है। हम ये समझ पाते हैं कि मानवता की मूल भावनाएं हर संस्कृति में समान है। प्रेम, करुणा, सहयोग और शांति।
0: बिल्कुल, सभ्यताओं के बीच संवाद केवल एक दिवस मनाने का सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि इसे हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। जब हम एक दूसरे को समझने और सम्मान देने का प्रयास करेंगे तभी सच्चे अर्थों में वैश्विक शांति और मानव कल्याण का सपना जो है वो साकार होगा। बिल्कुल, है ना आशीष? तो और आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को एक और
1: प्यारा सा गाना।
0: बिल्कुल।

0: मना रहे हैं, जरा कुछ बताएंगे उसके बारे में?
1: बिल्कुल, आज है विश्व भूगर्भ जल दिवस। और आशीष, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जल को जीवन का आधार कहा जाता है। पृथ्वी पर जीवन की कल्पना जल के बिना संभव नहीं है। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले जल का एक बड़ा भाग भूगर्भ जल से प्राप्त होता है। इसी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 10 जून को विश्व भूगर्भ जल दिवस मनाया जाता है।
0: जी हाँ, भूगर्भ जल वो जल है जो वर्षा के माध्यम से भूमि के भीतर जाकर मिट्टी और चट्टानों की परतों में संग्रहित यानी कि इकट्ठा हो जाता है। कुएं, हैंडपंप, नलकूप और बोरवेल इसी भूगर्भ जल के स्रोत हैं। ये जल न केवल हमारी प्यास बुझाता है बल्कि कृषि, उद्योग और पर्यावरण के लिए भी बहुत ही जरूरी है।
1: आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है जल संकट। बढ़ती जनसंख्या, अनियंत्रित शहरीकरण, जल का अत्यधिक दोहन और जलवायु परिवर्तन के कारण भूगर्भ जल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। कई क्षेत्रों में तो आशीष स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि लोगों को पीने का पानी भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।
0: और जो जल की कीमत है ना, वो इन गर्मियों के दिनों में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, है ना जो है ऋतु। और जो हमारा देश है भारत, विश्व में भूगर्भ जल का सबसे अधिक उपयोग करने वाले देशों में शामिल है। हमारे देश की कृषि व्यवस्था काफी हद तक भूगर्भ जल पर निर्भर करती है, लेकिन यदि हम आज नहीं चेते तो भविष्य में ये अमूल्य संसाधन समाप्त होने की कगार पर पहुंच सकता है।
1: वैसे आशीष, सरकार द्वारा अटल भूजल योजना, जल शक्ति अभियान और वर्षा जल संचयन जैसी योजनाओं के माध्यम से भूगर्भ जल संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान केवल सरकारों के प्रयासों से नहीं होगा बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।
0: बिल्कुल, सभी नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और हमें वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना चाहिए। जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए और जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए।
1: और हमें ये समझना होगा आशीष कि जल का हर एक कण अनमोल है। जिस प्रकार हम धन की बचत करते हैं, उसी प्रकार जल की बचत भी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आज किया गया छोटा सा प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य का आधार बन सकता है।
0: जल संरक्षण को केवल एक अभियान ना समझें बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आइए हम सभी मिलकर संकल्प लें, जल बचाएंगे, भूगर्भ जल बढ़ाएंगे, धरती को हरा भरा और भविष्य को सुरक्षित बनाएंगे।
1: तो आशीष, इसी के साथ आज हमारे साथ जुड़ी हैं मेहर वंशिका, जो बताएंगी भूगर्भ जल के बारे में।
2: FM रेनबो के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है मेहर वंशिका निगम और मैं जियोलॉजी यानी भूगर्भ शास्त्र की स्टूडेंट हूँ। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड ग्राउंड वाटर डे और इस अवसर पर मैं आपको भूगर्भ जल के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। हमारी धरती 70% पानी से भरी हुई है, जिसमें से 97% वाटर खारा है, तो हम उसे पी नहीं सकते। बचे हुए 3% में आते हैं हमारी बर्फ, ग्राउंड वाटर, लेक्स, रिवर्स एंड पॉइंट्स, जिसमें हम सबसे ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं ग्राउंड वाटर से। कुएं, नलकूप और बोर होल्स के थ्रू हम इस पानी को बाहर निकालते हैं, गाड़ी धुलने से लेकर के हमारा खाना उगाने तक। ग्राउंड वाटर हर जगह इस्तेमाल होता है, इसलिए पूरी दुनिया में इस पानी की बहुत कमी हो रही है। भारत में ही 7 से 8 स्टेट्स में हाई ग्राउंड वाटर स्कार्सिटी है, यानी यहाँ ग्राउंड वाटर की बहुत ज़्यादा कमी है। बाकी स्टेट्स में भी सिमिलर ही हाल है और आगे जा कर के जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, ये ग्राउंड वाटर और कम ही होने वाला है और हमारे लिए उलझने बढ़ने वाली हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम ग्राउंड वाटर को सेव करें। ग्राउंड वाटर बसता है धरती के नीचे एक्वीफर सिस्टम्स में, जहाँ छोटे से तालाब की तरह ये पानी पत्थरों में बना रहता है और हम बोर होल्स के ज़रिए इसको बाहर निकालते हैं। ये पानी रिचार्ज होता है बारिश से, लेकिन आज के दौर में जब रोड से लेकर के घर तक हमारी हर चीज़ पक्की और कॉन्क्रीटाइज हो चुकी है, बारिश को धरती के नीचे जाने की जगह नहीं मिलती। तो इसलिए अपने आसपास पार्क और गार्डन्स के रूप में ग्रीन एरियाज को ज़रूर मेंटेन रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएँ। जितना बड़ा ग्रीन एरिया होगा उतना ज़्यादा पानी नीचे जाएगा और नीचे हमारे एक्वीफर सिस्टम्स बढ़े रहेंगे और हमें पानी की सिक्योरिटी बनी रहेगी। इसके अलावा आपके घरों में अगर छतें हैं जहाँ पानी भर जाता है बारिश के दौरान, तो उस छत की नालियों को अपने बोरहोल सिस्टम्स या आसपास के किसी भी ग्रीन एरिया से कनेक्ट कर दें, जिससे कि बारिश का सारा पानी धरती के नीचे चला जाएगा और आपका पानी रिचार्ज होता रहेगा। ये तो हो गई डेली लाइफ की बातें। इससे भी बढ़कर

एक और चीज़ है जो हमारी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा बन गई है, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई के नाम से जानते हैं। चैट जीपीटी पे जब जब आप एक फ़ोटो या फिर एक वीडियो बनवाते हैं, वो एक मशीन काम करती है, और वो मशीन काम करते समय ओवरहीट होती है, इतना कि उसको ओवरहीट से रोकने के लिए बिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर यूज़ होता है, फ्रेश वाटर जो कि वेस्ट हो जाता है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की माने तो हर साल 500 बिलियन लीटर ऑफ फ्रेश वाटर यूज़ होता है सिर्फ इन मशीन्स को ठंडा रखने के लिए। तो पर्सनल लेवल पे जितना हो सके एआई का कम से कम इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया ट्रेंड्स को फॉलो ना करें, और वाटर सिक्योरिटी को बनाए रखने में अपना छोटा सा योगदान दें। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जल ही जीवन है, और भूगर्भ जल हमारी फ्यूचर की वाटर सिक्योरिटी है। इसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, बल्कि हमारा कल भी इसी भूगर्भ जल पर बना हुआ है। धन्यवाद।

0: 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप, और इस समय प्रोग्राम चल रहा है हम नवा, जिसमें आज मैं हूं आपके साथ आरजे आशीष, और मेरे साथ मेरी हम नवा है रितु। रितु, आज के समय में आप देख रही होंगी कि जो फास्ट फूड है ना, वो हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनता जा रहा है।
1: बिल्कुल देख रही हूँ आशीष, जहाँ भी जाते हैं हम तो वहीं बिल्कुल जो दुकानें हैं फास्ट फूड की उनके सामने, मतलब जो जगह है वो पूरी भरी होती है लोगों से, और मतलब बड़े चाव से लोग खाते हैं बाहर जाकर के।
0: स्वाद और सुविधा के कारण बच्चे हो या बड़े, सभी पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक की ओर आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये स्वाद हमारी हेल्थ पर कितना भारी पड़ सकता है?
1: बिल्कुल आशीष, लगभग सभी फास्ट फूड में बहुत अधिक मात्रा में तेल, नमक, चीनी और केमिकल वाले पदार्थों का यूज किया जाता है, और ये चीजें शरीर को जरूरी पोषण तो नहीं देती बल्कि धीरे धीरे कई बीमारियों को जन्म देती हैं। लगातार फास्ट फूड खाने से मोटापा बढ़ सकता है, जिससे शुगर, हाई बीपी और हार्ट से संबंधित रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है, और बल्कि बढ़ गया है, बढ़ रहा है लगातार।
0: बिल्कुल, और सिर्फ इतना ही नहीं, फास्ट फूड हमारे पाचन तंत्र पर भी बुरा प्रभाव डालता है, जिससे कि गैस, एसिडिटी, पेट दर्द और कई तरह की पाचन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चों और टीनेजर्स में इसके अधिक सेवन से शारीरिक विकास भी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि उन्हें आवश्यक विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते।
1: और आजकल देखा जा रहा है कि लोग घर के बने भोजन की बजाय बाहर का भोजन अधिक पसंद करने लगे हैं, जबकि घर का खाना न केवल स्वच्छ और ताजा होता है बल्कि उसमें शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं।
0: जी हाँ, और स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी यही सलाह देते हैं कि फास्ट फूड का सेवन जितना कम किया जाए उतना बेहतर है, और कभी कभार अगर हम फास्ट फूड खा भी लेते हैं तो उसके साथ संतुलित और पौष्टिक आहार को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए।
1: स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ जीवन की पहचान है, इसलिए हमें अपने खान पान की आदतों पर ध्यान देना चाहिए और स्वाद से अधिक स्वास्थ्य को महत्व देना चाहिए। छोटी छोटी अच्छी आदतें भविष्य में हमें बड़ी समस्याओं से बचा सकती हैं।
0: तो आइए आज ये संकल्प लें कि फास्ट फूड के अधिक सेवन से बचेंगे और पौष्टिक भोजन को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे, क्योंकि अच्छी हेल्थ ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है।
1: बिल्कुल, और हमारे जो भी श्रोता सुन रहे हैं हमें, हमने स्टार्टिंग में उनसे मैसेजेस मांगे हैं, मतलब उनके विचार मांगे हैं कि फास्ट फूड जो है वो हमारे जीवन के लिए कैसे हानिप्रद है, और इसके बारे में हमने तो बता ही दिया है, और हम जानना चाहते हैं कि हमारे श्रोता क्या सोचते हैं। तो हमारी ईमेल आईडी है aarkansomedia@gmail.com।
0: जी हाँ, ईमेल आईडी एक बार फिर से आपको बता दें, aarkansomedia@gmail.com।

0: और आशीष, हमने अपने श्रोताओं से पूछा था फास्ट फूड हमारे लिए कैसे हानिप्रद है, तो हमारे एक श्रोता का मैसेज हमारे पास पहुंच चुका है। ये है रोली, इनका मैसेज आया है। इन्होंने लिखा है कि ज़्यादातर फास्ट फूड मैदे से बनते हैं और मैदा हमारे लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है, और उसमें यूज़ होने वाली सब्जियाँ ज़्यादातर पहले से ही बना के रख ली जाती हैं, जो कि हमारे स्टमक को नुकसान पहुँचाती हैं और हमें फूड पॉइजनिंग होने का खतरा होता है और अनहाइजीनिक कुकिंग भी होती है।
1: तो भाई बहुत ही अच्छी बात इन्होंने लिखी हुई है कि भाई जो उसमें सब्जियां वगैरह यूज होती हैं तो वो पहले से ही होती हैं, कटी हुई होती हैं, और कटी हुई सब्जियां और पहले से रखी हुई सब्जियां हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक हैं, ये बात सभी को पता है।
0: बिल्कुल, और इनके इतने अच्छे मैसेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बिल्कुल। और ऋतु, अब हम बढ़ते हैं अपने हमनवा प्रोग्राम के अगले टॉपिक की ओर, और हमारा जो अगला टॉपिक है ना ऋतु, वो पशुओं से जुड़ा हुआ है कि भाई पशुओं के प्रति दया करुणा और उचित व्यवहार। और ये जो टॉपिक है केवल पशुओं की भलाई से जुड़ा नहीं है बल्कि हमारी मानवता, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों का भी परिचायक है। पशु पक्षी इस धरती के सहयात्री हैं, वे भी हमारी तरह भूख, प्यास, दर्द, भय और प्रेम की अनुभूति करते हैं। अंतर केवल इतना है कि वे अपनी पीड़ा को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए उनकी देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी हम मनुष्यों पर और अधिक बढ़ जाती है।
0: बिल्कुल सही कहा आशीष, भारतीय संस्कृति में सभी जीवों के प्रति दया और करुणा का संदेश दिया गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी जीवों पर दया को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी राष्ट्र की महानता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वो अपने पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करता है।
1: आज अनेक लोग जो है डॉग्स या कैट्स या खरगोश, कई सारे पक्षी आदि को पालतू पशु पक्षी के रूप में अपने घरों में रखते हैं, और पालतू पशु केवल मनोरंजन का साधन नहीं होते बल्कि परिवार के सदस्य की तरह ही होते हैं। इसलिए हमें उनकी उचित देखभाल करनी चाहिए, उन्हें पौष्टिक भोजन, स्वच्छ पानी, सुरक्षित आश्रय और समय समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना हमारा कर्तव्य है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्हें प्यार और अपनापन दिया जाए, क्योंकि पशु भी स्नेह और भावना को समझते हैं।
0: बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरी ओर आशीष, हमारे आसपास बड़ी संख्या में आवारा या स्ट्रे पशु भी रहते हैं। ये पशु अक्सर भोजन, पानी और आश्रय के अभाव में कठिन जीवन व्यतीत करते हैं। गर्मियों में तेज धूप, सर्दियों में कड़ाके की ठंड और बरसात में भीगते हुए ये पशु जीवन के लिए संघर्ष करते हैं। ऐसे में यदि हम अपने घर या मोहल्ले में उनके लिए पानी का बर्तन रख दें, कुछ भोजन की व्यवस्था कर दें या फिर घायल पशु की सहायता कर दें, तो ये एक बहुत बड़ा मानवीय कार्य होगा।
1: बहुत ही अच्छी बात आपने कही ऋतु की, जैसे अब इस समय गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो भाई आपकी छत होगा, आंगन होगा या आसपास कहीं भी जहां पर आप देखते हैं कि पशु पक्षी आते हैं, तो वहां पर आप कोई नांद रख सकते हैं जिसमें पशु पानी पी सके, या छोटा सा एक कटोरा रख सकते हैं जिसमें पक्षी पानी पी सकें, और कुछ दाना वगैरह डाल सकते हैं आप, है ना, जैसे चावल आपने खाए या फिर रोटी आपने खाई, कुछ बच गया तो आप उसको डाल सकते हैं, तो इससे जो है उस चीज का जो है वो भी नहीं होता है कि वो गलत जगह जा रही है और जो है किसी जीव के जो है पेट में जाती है वो चीज।
0: बिल्कुल। और आशीष, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी पशु को पत्थर मारना, उसे डराना, घायल करना या उसके साथ क्रूरता करना न केवल अमानवीय है बल्कि कानूनी रूप से भी गलत है। पशुओं के प्रति हिंसा हमारे समाज में असंवेदनशीलता को बढ़ाती है। इसके विपरीत पशुओं के प्रति दया का भाव समाज को अधिक मानवीय और सभ्य बनाता है।
1: और आज आवश्यकता इस बात की है कि हम पशु कल्याण के प्रति जागरूक बने। विद्यालयों, सामाजिक संस्थाओं और मीडिया के माध्यम से पशु संरक्षण के प्रति लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए। बच्चों में बचपन से ही पशु प्रेम और करुणा के संस्कार विकसित किए जाने चाहिए। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर थोड़ा थोड़ा सा प्रयास करें तो लाखों पशुओं का जीवन बेहतर बनाया जा सकता है।
0: बिल्कुल सही कहा आशीष, और बच्चों में सच में पशुओं के प्रति प्रेम और करुणा का भाव जगाना चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चे नहीं समझ पाते हैं और जो रास्ते चलते जो जानवर होते हैं उनको पत्थर मार देते हैं या कुछ भी उनके साथ शरारत कर देते हैं। तो पशुओं के प्रति दया, करुणा और उचित व्यवहार एक सभ्य समाज की पहचान है, चाहे पालतू पशु हों या

0: आवारा सभी जीवों को जीने का अधिकार है। यदि हम उनके प्रति संवेदनशीलता, प्रेम और जिम्मेदारी का परिचय दें तो न केवल उनका जीवन बेहतर होगा बल्कि हमारा समाज भी अधिक मानवीय और करुणामय बनेगा, है ना आशीष? अच्छा आशीष, एक बात और है कि मैं देखती हूँ अक्सर कि बहुत सारे जानवर जो हैं बाहर, मतलब वो पालतू हैं, लेकिन अगर उन्हें कोई बीमारी हो गई या उनसे कुछ प्रॉब्लम हो गई तो लोग उनको बाहर निकाल देते हैं, वो बाहर बैठे रहते हैं, मतलब उन्हें खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा। तो ये नहीं करना चाहिए। अगर आपने कोई भी पशु अपने घर पर रखा है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी है, अगर वो अच्छा है तो भी, और अगर वो बीमार है तो आप उसका इलाज कराइए।
1: ग्रामीण अंचलों में भी, ग्रामीण अंचलों में भी ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई गाय है, भैंस है, जब तक वो दूध दे रही है तब तक तो वो आपके घर में है, और अगर उसने दूध देना छोड़ दिया, दूध उससे नहीं प्राप्त हो पा रहा है तो वो उसको आवारा छोड़ देते हैं इसी तरह से, और इसे आवारा पशुओं की संख्या भी बढ़ जाती है। तो ये बहुत ही गलत बात है।
0: बिल्कुल गलत है आशीष, और हमारा उद्देश्य ही है ये सब बात करने का कि जो भी हमें सुन रहे हैं वो इस पर अमल करें।
1: बिल्कुल।

0: हमना प्रोग्राम में अब हम आ पहुंचे हैं तेजस्विनी सेगमेंट में, जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं ऐसी मोटिवेशनल महिलाओं की जिन्होंने न केवल अपने जीवन की दिशा बदली बल्कि समाज की सोच को भी बदलने का साहस दिखाया।
1: बिल्कुल आशीष, वो कहते हैं ना कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती, यदि मन में दृढ़ निश्चय हो तो परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो सफलता का मार्ग स्वयं बन जाता है। और ऐसी ही एक सफलता की कहानी हम लेकर आए हैं भारत की पहली महिला ऑटो चालक शीला दावरे की।
0: आज जब हम सड़कों पर महिलाओं को बस, टैक्सी, मेट्रो और अन्य वाहन चलाते देखते हैं तो ये सामान्य सी बात लगती है ऋतु, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वाहन चलाना लगभग पूरी तरह पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था। उस दौर में किसी महिला का ऑटो रिक्शा चलाना आश्चर्य की बात थी। और महाराष्ट्र के परभणी जिले में जन्मी शीला दावरे बचपन से ही आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। उनके जीवन में आर्थिक चुनौतियां थी लेकिन उन्होंने कभी अपने सपनों को छोटा नहीं होने दिया। कम उम्र में ही उन्होंने ये समझ लिया था कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए साहस और मेहनत दोनों जरूरी हैं।
1: साल 1988 में जब वे मात्र 18 वर्ष की थी उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए पुणे जाने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि उनके पास उस समय बहुत कम पैसे थे लेकिन हौसला अटूट था। नए शहर में रहना, काम ढूंढना और अपने पैरों में खड़े होना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय संघर्ष का रास्ता चुना।
0: हाँ, और जब शीला दावरे ने ऑटो रिक्शा चलाने का निर्णय लिया तब समाज ने इसे सहज रूप से स्वीकार नहीं किया। कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कुछ लोगों ने कहा कि ये महिलाओं का काम नहीं है। कई बार उन्हें ताने सुनने पड़े और विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन शीला दावरे ने दूसरों की बातों पर ध्यान देने की जगह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया।
1: और ऑटो चलाने के लिए उन्हें पहले वाहन चलाने की पूरी ट्रेनिंग लेनी पड़ी, इसके बाद लाइसेंस प्राप्त करना और काम शुरू करना भी आसान नहीं था। आशीष, कई ऑटो मालिक उन्हें वाहन देने से हिचकिचाते थे, फिर भी उन्होंने धैर्य रखा और लगातार प्रयास करती रही।
0: धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी, लोग उनकी लगन और आत्मविश्वास से प्रभावित होने लगे, यात्रियों ने उन पर भरोसा करना शुरू किया। जो लोग कभी उनका विरोध करते थे वही उनकी तारीफ करने लगे। समय के साथ उन्होंने अपना स्वयं का ऑटो रिक्शा खरीदा और स्वतंत्र रूप से काम करने लगी।
1: शीला दावरे की सफलता केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, उनकी सफलता ने ये संदेश दिया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। उन्होंने ये साबित किया कि अगर अवसर मिले और आत्मविश्वास मजबूत हो तो महिलाएं हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती हैं।
0: जी हाँ दोस्तों, ये कहानी थी शीला दावरे की, जो कि भारत की पहली महिला ऑटो चालक थी। और ऋतु, आज 10 जून है और आज एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, और आज मनाया जाता है विश्व नेत्रदान दिवस।
1: बिल्कुल आशीष, हर साल 10 जून को ये दिवस जो है वो मनाया जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को मृत्यु के बाद अपनी आँखें दान करने के लिए प्रोत्साहित करना और कॉर्निया की कमी से होने वाले अंधेपन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
0: जी हाँ, दुनिया में दृष्टि बाधित लोगों की एक बड़ी संख्या कॉर्निया से संबंधित समस्याओं से जूझ रही है। नेत्रदान के जरिए प्राप्त कॉर्निया को प्रत्यारोपित करके यानी कि ट्रांसप्लांट करके किसी नेत्रहीन व्यक्ति की जिंदगी में दोबारा रोशनी लाई जा सकती है।
1: बिल्कुल आशीष, तो हम तो अपने श्रोताओं से यही कहेंगे कि अगर आप भी नेत्रदान करना चाहते हैं, क्योंकि नेत्रदान जो है वो सबसे बड़ा दान है।
0: जी हाँ, कहा जाता है कि नेत्रदान महादान। और नेत्रदान से जुड़े कुछ तथ्य हैं, जैसे कि इसकी कोई आयु सीमा, मतलब जो है सख्त आयु सीमा नहीं होती, किसी भी उम्र या लिंग का व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। और मेडिकल कंडीशन की बात करी जाए तो चश्मा लगाने वाले, मधुमेह या उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी वाले व्यक्ति भी अपनी आंखें दान कर सकते हैं। और अगर एड्स, हेपेटाइटिस, रेबीज या कैंसर जैसी गंभीर संक्रामक बीमारियों से पीड़ित लोगों की आंखें इसमें स्वीकार नहीं की जा सकती।
1: तो आशीष, साथ में तुम ये भी बता दो हमारे श्रोताओं को कि अगर कोई नेत्रदान करना चाहता है तो कैसे करे।
0: भारत में नेत्रदान करने के लिए आपको अपने नजदीकी सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी आई बैंक में संपर्क करके एक नेत्रदान प्रतिज्ञा पत्र यानी कि ये प्रतिज्ञा पत्र एक फॉर्म भरना होता है। आप चाहे नेशनल हेल्थ या आई डोनेशन के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर नेत्र दान से जुड़ी अधिक प्रमाणित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको अपने कानपुर महानगर में नेत्र दान करना है तो आप हमारे जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज जा सकते हैं, वहां पर जाकर

0: और ऋतु हम नवा प्रोग्राम में अब हम आ पहुंचे हैं रेसिपी सेगमेंट में। और आज रेसिपी के अंतर्गत हम जो रेसिपी लाए हैं वो है भरवा तरोई।
1: क्या बात है भाई आशीष।
0: और इसकी सामग्री कुछ इस तरह से है कि आप 5-6 तरोई ले लें, 2 बड़े चम्मच बेसन, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, नमक स्वादानुसार, साथ ही 2 बड़े चम्मच तेल, राई आप ले सकते हैं आधा चम्मच राई के दाने, और 1 प्याज और 2-3 लहसुन की कलियां।
1: ये तो आपकी जो तरोई हमने ली है उस पर डिपेंड करता है कि कितना हमें भरावन बनाना है। तो प्याज आप 1 की जगह 2 भी ले सकते
0: जी,
1: हैं
0: जी, जी। है ना? और इसके लिए विधि कुछ इस तरह से है कि तरोई धोकर हल्का छील लें और बीच में लंबा चीरा लगा दें। फिर उसके बाद बेसन, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, आमचूर पाउडर और नमक मसाला, ये नमक मिलाकर, साथ में राई मिलाकर, प्याज और लहसुन का इस तरह से आप पेस्ट बनाकर उसको,
1: हाँ मतलब ये कि प्याज लहसुन का पेस्ट बनाना है और उसमें ये जो सारी चीजें अभी तुमने बताई हैं ये इन सारी चीजों को मिलाना है। लेकिन इसके साथ आपको करना ये है कि जो बेसन है वो कच्चा ना मिलाएं, उसको थोड़ा सा भून लें। धनिया जो पाउडर है इसको भी आप थोड़ा सा भूनें, क्योंकि जो भरवा मसाला होता है ना वो भून करके ही चीजों को बनाया जाता है, तभी वो बढ़िया बनता है,
0: तभी उसका स्वाद बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और इस मसाले को तरोई के अंदर भर दें और फिर उसके बाद कढ़ाई में तेल गर्म करके भरी हुई तरोई रखें, ढककर धीमी आंच पर 15-20 मिनट पकाएं, बीच बीच में पलटते रहें।
1: बिल्कुल।
0: और तरोई नरम हो जाए और हल्की सुनहरी दिखने लगे तो गैस बंद कर दें और इसके बाद गर्मा गर्म भरवा तरोई रोटी या पराठे के साथ परोसें।
1: आशीष कुछ टिप्स भी लिखे हैं तुमने।
0: देखिए भरवा तरोई बनाने के लिए अगर भरावन में 1 बड़ा चम्मच भुनी मूंगफली का पाउडर या थोड़ा सा सौंफ का पाउडर मिला दें तो इससे जो भरवा तरोई का स्वाद है ना वो और भी लाजवाब हो जाता है।
1: ये बात तुमने बिल्कुल सही कही है। सौंफ भी भून करके मिलाते हैं हम लोग जब बनाते हैं तो सौंफ और जीरा भी भून करके उस भरावन में, जो भरावन होता है उसमें हम लोग मिलाते हैं। ये जो तुम मूंगफली का पाउडर है ये मुझे लग रहा है नई चीज है, मतलब हम लोग नहीं मिलाते हैं, तो अगर इसको मिलाएंगे तो हो सकता है स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाए।
0: जी हाँ, और इस समय तरोई जो है वो बाजार में बहुतायत मात्रा में है ना।
1: हाँ।
0: वैसे ऋतु जरा घड़ी की तरफ देखिए, जो

0: सुइया इशारा कर रही है कि हम नवा प्रोग्राम को अब यहीं पर वाइंड अप करना चाहिए। तो मुझे यानी कि आरजे आशीष
1: और मुझे यानी ऋतु को हम नवा प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।

0: नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के गौरव की पुनर्स्थापना की और देश को गुलामी की मानसिकता से आजाद कराया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि और विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में देश की जनता का अटूट विश्वास नजर आता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने साहसिक फैसले लेकर सुधार किए हैं और अभूतपूर्व गति और व्यापकता के साथ कई पहल लागू की हैं। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में फतेहपुर में जिलाधिकारी निधि गुप्ता ने सभी निकायों और ग्राम पंचायतों में सफाई अभियान चलाया गया। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी ने सभी जनपदवासियों से अपील की कि अपने घरों के आसपास साफ सफाई रखें, कूड़े को सड़क पर ना फेंकें और शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग दें। प्रदेश सरकार 3 तलाक और एसिड अटैक जैसे मामलों से पीड़ित महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से लाभान्वित करने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही निराश्रित महिलाओं को भी इन सभी योजनाओं का लाभ देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महिला कल्याण विभाग पीड़ित और निराश्रित महिलाओं का विस्तृत डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। शासन स्तर पर इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश और शासन आदेश तैयार करने की प्रक्रिया भी चल रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: 12:05 का वक्त और आप सबका इस्तकबाल करती है आपकी होस्ट फातिमा। वक्त हो गया है प्रोग्राम शत्रुपा का। जी हाँ, आज जायके का कौन सा वो एस्पेक्ट है जो हम कवर करेंगे इस प्रोग्राम में, सब कुछ साझा करूंगी आपके साथ। लेकिन उससे पहले एक पॉजिटिव नोट, एक पॉजिटिव डोज जिस पर आगाज करेंगे प्रोग्राम का, और वो ये है कि भाई आज स्टूडियो आते वक्त, क्योंकि गर्मी बेतहाशा थी, तो मैंने नोटिस की इस बात को कि कुछ गर्मी के चलते, कुछ इंसान की खुद की मसरूफियत के चलते, कई लोग ऐसे मिले मुझे रोड पर ही चलते फिरते, जिनके चेहरे पर एक अजीब सा, मतलब आप कह सकते हैं डिससेटिस्फैक्शन, और उनकी जो तेवरियाँ थी ना, वो थोड़ी सी चढ़ी हुई लग रही थी मुझे। फिर मैंने खुद रियलाइज़ किया कि कितने जजमेंटल हो जाते हैं हम ना लोगों को देख करके। लेकिन फिर ये भी रियलाइजेशन आया कि हाँ, हो सकता हो कोई वजह हो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जजमेंटल होना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। जजमेंटल होने से बेहतर है कि आप सिचुएशन को समझें और उस सिचुएशन में खुद को रख के देखें, तब आपको पता चलेगा एम्पथाइज करना किसे कहते हैं। तो बस इसी नोट पर आगाज करेंगे इस प्रोग्राम का एक बेहतरीन से ट्रैक के साथ। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। तो ये कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर, जो है धड़कन लखनऊ की।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम की सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: सात रंग का इंद्रधनुष है,
4: सात सुरों की सरगम है,
5: सात जन्म है सात समंदर,
3: साथ हमारा हरदम है।
5: जिंदगी के सतरंगी रंग
4: FM रेनबो के संग।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

12:13 मिनट का वक्त हो गया है और बता दूं भाई, रास्ते में मतलब स्टूडियो आते वक्त मैंने देखा कि बहुत सारी जगहों पर आम बिक रहे थे जी, क्या ही बताऊं बस। तो फिलहाल मार्केट में आम अवेलेबल तो है, लेकिन हाँ अभी माना जा रहा है कि अभी जो अपनी दशहरी है ना, जो डाल की पकी हुई दशहरी होती है, वो अभी मार्केट में नहीं आई है। लेकिन फिर भी आम देख करके ही ना आंखों को इतना सुकून मिलता है कि हम आपको क्या ही बताएं। गर्मियों के मौसम में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला फल है आम। इसे आम और खास सभी लोग बड़े शौक से खाते हैं। जी हाँ, आम और खास सभी लोग बड़े शौक से खाते हैं। ये हमारी सेहत को दुरुस्त बनाए रखने में काफी मददगार भी साबित होता है, क्योंकि भाई देखिए मौसमी फल है और कुदरत का निज़ाम कुछ ऐसा है कि जो मौसमी फल होते हैं ना, वो हमारी बॉडी के लिए बड़े बेनिफिशियल होते हैं। लेकिन इस वक्त हम बात करें, जैसे मैंने आज आते वक्त देखा तो बाजार में कई वैरायटी के आमों की भरमार है। स्थानीय बागीचों के

0: साथ साथ बाहरी राज्यों से आए आम भी मार्केट्स में और मंडियों में धड़ल्ले से बिक रहे हैं। हालांकि आम की इस खरीदारी में थोड़ी सी भी लापरवाही आपकी सेहत पर थोड़ी सी भारी पड़ सकती है। तो लापरवाही सेहत पर भारी ना पड़े इसके लिए क्या करना चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ कैसे पहचाने कि ये आम बिल्कुल वर्थ है हमारे लिए। दरअसल बाजार में मिलने वाले ज्यादातर आमों को समय से पहले तोड़कर केमिकल्स में पकाया जा रहा है। बाजार में केमिकल से पकाए जा रहे आमों का सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है, जिससे पेट की समस्याएं और तमाम जटिल बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इन केमिकल युक्त आमों की पहचान बड़ी आसानी से की जा सकती है, वो मैं बताऊंगी आपको कि कैसे आप कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि ये जो केमिकल युक्त आम है ना, इनका सेवन करने से पेट में तेज जलन, गैस, उल्टी और डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। साथ ही अगर कृत्रिम रूप से पकाए गए ये आम शुगर पेशेंट्स यानी जो डायबिटिक्स हैं, अगर वो ले लेते हैं तो उनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है। जी हाँ, ऑल ऑफ अ सडन उनके शुगर लेवल्स हाई हो जाते हैं या फिर कई कंडीशंस में कंडीशंस बहुत वर्सन अप हो जाती हैं। तो ऑल इन ऑल ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर बेहद नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसके लगातार सेवन से न सिर्फ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है बल्कि भविष्य में काफ़ी सारी जटिल बीमारियाँ जो होने का, जो उनको इस तरीके की जटिल बीमारियाँ होने का जो खतरा है ना, वो कई गुना बढ़ जाता है। अब कैसे हम पहचान कर पाएं और किस तरीके से खुद को बचा पाएं कि कौन सा आम हमें खाना है, कौन सा नहीं खाना है, इसके बारे में भी हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक तो नहीं है, ब्रेक है अब हमारा म्यूजिकल। बहुत ही बेहतरीन सा ट्रैक मैंने क्यों किया हुआ है, तो इस ट्रैक को एंजॉय करेंगे और उसके बाद आपसे कुछ बातें और हम जरूर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप एंजॉयिंग 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: मैं किसी की जरूरत नहीं,

12:25 का वक्त और दावती इश्क फिल्म का ये जो ट्रैक अभी आपने एंजॉय किया, इस गाने की पिक्चराइजेशन में लास्ट में कुछ ऐसा होता है कि आदित्य रॉय कपूर एक चपाती को पूरा हवा में स्वर्ल करते हुए वापस अपने उंगलियों पर जब लाते हैं ना, तो माइंड ब्लोइंग सीन है। हम लोग भी कोशिश करते हैं ना कि घरों में कुछ ऐसा कर पाए, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि भैया इसके लिए बहुत एक्सपर्टीज चाहिए होती है। फिलहाल दावते इश्क का गाना तो सुन लिया आपने, लेकिन दावते आम, जी ये कोई आम दावत की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है आम की दावत, जी मैंगो की दावत के बारे में बात हो रही है। वक्त हो चुका है जब हम बेहतरीन आमों का मजा उठाएंगे अगले 1 से 1.25 महीने तक, और कैसे पहचान करें, कैसे हम खुद घर पर पका सकते हैं इन आमों को बगैर इस मलामत के कि कहीं हम केमिकल युक्त आम तो नहीं खा रहे हैं, इसके ऊपर कुछ गुफ्तगू हम करना चाह रहे हैं। भाई जो आम केमिकल से पकाए जाते हैं ना, वो अक्सर पूरी तरह पीले दिखने के बावजूद अंदर से कुछ कच्चे होते हैं और उनका टेस्ट भी बेहतरीन नहीं होता, बेस्वाद से लगते हैं और उनकी जो स्किन है ना वो भी थोड़ी सिकुड़ी सी लगती है। अब जब आज मुझे ये प्रोग्राम करना था ना, तब मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि जब बचपने में हम अपने ननिहाल जाते थे ना, तो क्या होता था, एक बड़ी सी बाल्टी होती थी, जितना भी आम आता था उसमें डाल दिया जाता था और वो सब आम नीचे बैठ जाता था और कई घंटे तक, 2.5 घंटे 3 घंटे तक वो उसमें पड़ा रहता था। तब हम सोचते थे क्यों ऐसा होता है, हम लोग को क्यों इतनी देर वेट करना पड़ता है। तो आज जब ये प्रोग्राम करना था ना, तब मुझे मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और ये रियलाइजेशन मेरे सामने आया कि भाई सबसे बड़ी पहचान ये कि केमिकल से पका हुआ आम है या नहीं है, ये आप कर सकते हैं आम को पानी में डुबोकर। जी पानी में डालने पर जो केमिकल से पके आम होते हैं ना, वो डूबते नहीं हैं बल्कि ऊपर तैरने लगते हैं, और इसके बिल्कुल उलट पेड़ का पका प्राकृतिक आम पानी में डालते ही नीचे बैठ जाता है। बाजार में आम खरीदने के फौरन बाद उसका सेवन बिल्कुल भी ना करें। आम को घर लाने के बाद पहले साफ पानी से अच्छी तरह से धोएं और फिर कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दीजिए, भूल जाइए। हालांकि आम लाने के बाद भूला नहीं जाता है, लेकिन फिर भी भूलना पड़ेगा। ऐसा करने से आम की जो प्राकृतिक गर्मी होती है, जो टॉक्सिटी होती है ना, और बाहरी केमिकल का जो असर होता है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अब एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है और वो ये है कि भाई अगर हम बाहर के पके हुए आम, केमिकल से इनफैक्ट पके हुए आम ना खाना चाहें और घर पे ही पकाना चाहें आम, तो क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप फलों के राजा आम के शौकीन हैं लेकिन केमिकल्स आपको डराते हैं, तो आप सबसे पहले आम की एक पेटी ले आइए, जितना भी आम आपको लाना है कच्चे आम ले आइए, उसको साफ पानी से धोकर सुखा लें, फिर अखबार में एक एक आम अलग से अच्छी तरह से लपेट कर सामान्य टेम्परेचर पर किसी भी गत्ते के डिब्बे, बर्तन या जार में रख दीजिए। 3 से 5 दिन में कच्चा आम पक कर तैयार हो जाएगा, वो भी केमिकल का इस्तेमाल किए बगैर। जी हाँ, ध्यान रहे कि कमरे का तापमान कम से कम 20 से 22 डिग्री होना चाहिए। एसी वाले कमरे में इन्हें बिल्कुल भी ना रखिए। हालांकि इस प्रोसेस में पूरी पेटी में, यानी कि अगर आप बहुत सारे आम इकट्ठा करके रखते हैं ना, पेटी ना भी ले, अगर किसी गत्ते में आप रख रहे हैं तो उसमें 2, 3, 4 आम खराब भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ ये है जो अच्छे आम होंगे वो आपको नेचुरली पके हुए मिलेंगे। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम सब के लिए बड़े फायदेमंद होती हैं, और हम तो पर्सनली करते हैं। हमने सोचा था कि कभी अगर ऐसा मौका लगा कि हम

में जून के महीने में शत्रुपा में जायके को लेना पड़ा ना, तो फिर हम इसका डिस्कशन जरूर करेंगे। तो बस इसी नोट पर एक और बेहतरीन सा ट्रैक आप तक पहुंचाएंगे। आप रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर।

0: आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम की सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण,
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं विकास में सहभागी बने।

0: नज़र डाली किस तरीके से हम घर पे आम पका सकते हैं। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम घर पे नहीं पका पाते हैं, तो फिर हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या बचता है? मार्केट से खरीदने का। अब आम खरीदते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए मार्केट से, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे कर लेते हैं। आम खरीदते वक्त जब कभी भी आप मार्केट जाएं, तो आपके मन में ये जो एक सवाल उठता है ना, पता नहीं मीठा होगा कि नहीं होगा, सही तरह से पका है अभी कि नहीं। सवाल ये भी होता है कि आम को पकाने के जो अलग अलग तरीके बाजार में उपलब्ध हैं, उनकी पहचान आप किस तरह से कर सकते हैं। तो आप जब मार्केट से आम लें, तो इस चीज़ का ध्यान दें कि आम के ऊपर अम्लीय रस के दाग धब्बे तो नहीं हैं, आम पर किसी रसायन के अलग अलग सफ़ेद या नीले निशान ना हो। उमूमन आम को छूकर भी उसके पकने का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पका हुआ आम थोड़ा सॉफ्ट होता है, अधपका आम कहीं से सॉफ्ट और कहीं से ठोस होता है, जबकि कच्चा आम पूरी तरीके से ठोस होता है। और दूसरा तरीका ये भी है, आप आम को बिल्कुल नीचे से अंगूठे से अगर हल्का सा प्रेस करके देखेंगे ना, तो पका हुआ आम छूने से सॉफ्ट लगेगा। इसके लिए आपको पूरे आम करते हैं ना, तो जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो वेंडर्स होते हैं आम के, कहते हैं भाई साहब थोड़ा ध्यान से, आम है, बड़ा नाजुक फल होता है, थोड़ा सा वो ऑफेंसिव भी हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए ये ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, नीचे से चेक करिए और आपको पता चल जाएगा कि आप जो आम खरीदने जा रहे हैं वो पूरी तरीके से पका है या नहीं है। ऑलराइट, राइपनिंग मेथड से पके आमों का रंग एक तरीके का होता है, क्योंकि ये एक समान तापमान में पकाए जाते हैं और ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट और दिखने में बेहद खूबसूरत रंग के होते हैं। अब आम ये नॉर्मल लोगों के खाने के लिए तो बड़ी सारी बातें हमने कर ली, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो डायबिटिक है, और आम तो सभी को पसंद होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आम और खास सभी को पसंद होता है आम। तो डायबिटीज पेशेंट्स आम को एक स्नैक्स की तरह ले सकते हैं, डॉक्टर्स उन्हें एक छोटा पोर्शन लेने की सलाह देते हैं। आम को खाने के साथ खाने से परहेज करना चाहिए, जब भी आम खाएं तो आधी चपाती कम खा लीजिए, अगर थोड़ा सा आप इंटेक बढ़ा रहे हैं आम का तो एक चपाती कम खाइए। इससे आम और चपाती से मिलने वाले जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ना, उनकी मात्रा का एक बैलेंस बन जाता है। दोपहर में खाने के बाद आप आम खा सकते हैं और इवनिंग स्नैक्स में भी आम का सेवन किया जा सकता है। लेकिन ये तो जो नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनकी बात हो गई, लेकिन जिन्हें थोड़ा सा हाई लेवल रहता है, टाइप 2 रहती है, तो उन्हें थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए। और अगर कभी बहुत ज़्यादा दिल चाहे तो प्लीज़ अपने जो डॉक्टर्स हैं उनसे एक सलाह लेकर के ही इसका इंटेक करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह साबित हो सकता है। आम के भरपूर फायदे हैं, भरपूर। जी हाँ, आम में क्या ऐसी खासियत है कि इसे फलों का राजा बना दिया गया। दरअसल आम स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत ही गुणकारी फल है। इसमें मौजूद विटामिन बीटा कैरोटीन और फाइबर इसकी प्रोडक्टिविटी को, इसकी क्वालिटी को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आम खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, आँखों की रोशनी बढ़ती है, अपच के लिए भी काफ़ी अच्छा है। जी हाँ, आप अपच की समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में आम आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। ये बिना पचे ही अवशोषित होने वाला फल है। जी इसके अलावा ये ऊर्जा बढ़ाने में काफ़ी मददगार होता है, काफ़ी सहायक साबित होता है। तो आम के बहुत सारे फायदे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं। हमारे लिए तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आम आ जाए मार्केट में और हम खाना शुरू कर दें, तो बस हमारे लिए तो यही फायदा है, और हम तो बेसब्री से दशहरी का इंतजार करते हैं। फिलहाल आज क्योंकि मौका है और दस्तूर भी है, तो आम से बनने वाली एक डिश है जो ईजिली बन जाएगी आपके साथ साझा करूंगी मैं। उसके लिए मैं आपको थोड़ा वक्त दे रही हूँ, आप एक पेपर पेन लेकर के बैठ जाइए, फटाफट बताऊंगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर, जो है धड़कन लखनऊ।
1: आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम तिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

फिलहाल तो आम के जो शौकीन लोग हैं ना, उनके जज्बातों में सिर्फ और सिर्फ आम की जो कसक है ना, वो घूम रही होगी। तो आज प्रोग्राम में हम आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आप आम से श्रीखंड, आम श्रीखंड कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए दही 500 ग्राम ताज़ा और मीठा दही, आम का पल्प 1 कप, पके हुए मीठे आम जो भी आपको पसंद है उसका ले लीजिए, पिसी हुई चीनी ले लीजिए 3 से 4 बड़े चम्मच, या स्वाद अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर, केसर के 8

किस चीज़ का इंतजार है? अब सिर्फ आपको खाना ही खाना है। आम श्रीखंड एक सर्विंग बोल में निकालें, इस पे कटे हुए मेवे डाल दें, कटे हुए मेवे से इसे सजाएं। अब इसे फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दें, और उसके बाद ठंडा ठंडा आम श्रीखंड पूरी या पराठे के साथ खाने में बड़ा स्वादिष्ट लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी खाना पसंद करते हैं, भाई हमें तो हर चीज़ के साथ पसंद है, और ये बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है इस टाइम पर। अगर गेस्ट आपके घर आते हैं ना, आप घर का बना हुआ आम श्रीखंड सर्व करते हैं ना, आप जैसे मैंने बताया ना, फाइनल जब बन जाए बड़े बोल में, उसके बाद आप उसे रेफ्रिजरेट करते हैं, तो आप अगर छोटे छोटे मिट्टी के कुल्हड़ों में इसे रेफ्रिजरेट करेंगे और उसके बाद मेहमानों के सामने सर्व करेंगे ना, तो और बड़ा आपको बड़ा प्राउड फील होगा कि आपने खुद बनाया, खुद सर्व किया। तो बस इसी नोट पर वाइंड अप करेंगे इस प्रोग्राम को आज, और एक छोटे से म्यूजिकल और न्यूज़ ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में। तो रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर, जो है धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देने के उपलक्ष्य में भाजपा राष्ट्रव्यापी अभियान चला रही है। इसके तहत आज पार्टी के नेता मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली के एक मंदिर में पूजा अर्चना की। पत्रकारों से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास में सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देने वाले जन नेता बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि भारतीय लोकतंत्र का ये अभूतपूर्व कीर्तिमान संपूर्ण देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा, यह सम्मान उसी तप, त्याग, दूरदृष्टि और राष्ट्रनिष्ठा का अभिनंदन है जिसने करोड़ों देशवासियों को विकसित भारत के स्वप्न से जोड़ा है। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जौनपुर में सेवा, संस्कार, सुशासन और सम्मान के 12 वर्ष थीम के तहत जन कल्याण और जन जागरूकता अभियान व्यापक स्तर पर संचालित किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं, नीतियों और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए विभिन्न विकास खंडों और ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का आज तीसरा और अंतिम दिन है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा कराई जा रही है। बोर्ड के डीजी एसबी शिडकर ने बताया कि कल हुई परीक्षा में अभ्यर्थियों की कुल उपस्थिति 76.10% दर्ज की गई। हरदोई, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर और कानपुर से नकल करने या फर्जी तरीके से परीक्षा दे रहे युवकों को पकड़ा गया है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विज्ञान विभाग ने कल के लिए प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी जनपदों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही कई जिलों में तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने को लेकर चेतावनी भी जारी की है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक लखनऊ की

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम,
3: RHL गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: 1:05 का वक्त, प्रोग्राम होटो पे तेरी बात का आगाज करेंगे एक बेहतरीन से ट्रैक के साथ। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, बस आप रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.6।

0: अधिक युवाओं को प्रशिक्षण एवं प्रमाणन उपलब्ध कराया जा सकेगा। प्रशिक्षित युवाओं के लिए 80% प्लेसमेंट सुनिश्चित करने की योजना है।
1: वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली वाक़े कौमी इम्तिहान एजेंसी के सदर दफ्तर का दौरा किया और 21 जून को मुजव्वज़ा नीट की री एग्जाम की तैयारियों का जायजा लिया। सदर दफ्तर के बाहर उन्होंने सहाफियों से बातचीत भी की। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।

ताकि जो पेरेंट्स इस कीमती टाइम को कहीं ना कहीं यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं अपनी किसी भी प्रायोरिटी के चलते, तो वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाए. और अभी तकरीबन 20 दिन का टाइम और बाकी है समर ब्रेक ख़त्म होने में, तो उस इस टाइम को वो प्रॉपरली एंजॉय कर सके अपने बच्चों के साथ. fmakashwani@gmail.com ये हमारा ईमेल एड्रेस है, इस ईमेल एड्रेस पर आप मेल सेंड करिए. फिलहाल एक बेहतरीन से ट्रैक के साथ हम कंटिन्यू रखेंगे इस प्रोग्राम को. सो स्टे ट्यून एंड कीप एंजॉइंग 100.7 FM रेनबो.

1:23 का वक्त, चुपके चुपके नहीं, हमने तो खुलेआम एक अनाउंसमेंट किया था। जी हाँ, हम आज आपसे प्रोग्राम होटो पे तेरी बात में जानना चाह रहे थे कि भाई गर्मी की छुट्टियां आप अपने बच्चों के साथ या आपके घर अगर कुछ बच्चे आए हुए हैं, आपकी बहन भाई या किसी और के भी, तो उनके साथ कैसे बिता रहे हैं। इस टॉपिक पर मैं आपके इनपुट्स जानना चाह रही थी, तो मेरे पास कुछ मेल्स आ चुके हैं। और जो पहला मेल मैं शामिल कर रही हूँ मोहम्मद फरहान जी का, इन्होंने मेल टॉपिक से जुड़ा नहीं लिखा है, लेकिन हाँ इन्होंने एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की है। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि नेक्स्ट प्रोग्राम में आप मेल करिएगा मैं अपने पसंद का ट्रैक एंजॉय करने के लिए। और एक और मेल हमारे पास आई है आसिफ अंसारी जी की, हैदराबाद तेलंगाना से, मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ और मैं इस वक्त घूमने आया हुआ हूँ, आप लोग भी घूमने आइए मतलब गर्मी की छुट्टियों में आप घूमने फिरने में लगे हुए हैं, राइट। अब यहाँ इसमें बच्चे शामिल हैं या नहीं ये आपने स्पेसिफाई नहीं किया है, कोई नहीं। नेक्स्ट मेल हम जो शामिल कर रहे हैं वो मसूद की है, लखनऊ से आई हमारे पास। इन्होंने लिखा है, हम तो भाई बिना बैग वाली पढ़ाई करा रहे हैं अपने बच्चों को। ओके, बिना बैग वाली पढ़ाई कैसे होती है ये भी इन्होंने स्पेसिफाई किया है। मैं अपने बचपने की कहानियां अपने बच्चों को सुनाता हूँ, खेल खेल में गणित सिखाता हूँ उन्हें। ओके, ये जो खेल खेल में गणित सिखाने वाली बात है ना, इससे दो चीज़ें मेरे जहन में आ रही हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जाहिर सी बात है आपके बच्चे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, क्योंकि जो बेसिक मैथ्स है वो तो आप खेल खेल में सिखा सकते हैं, लेकिन जो बड़े गहरे कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ्स के वो तो खेल खेल में नहीं सिखाए जा सकते। लेकिन हाँ, एक अच्छी पहल है आपकी जो आप अपने बच्चों को खेल खेल में, जैसे मेंटल मैथ्स, चाहे वो एडिशन सब्ट्रैक्शन और आप मल्टीप्लीकेशन डिविजन या कुछ प्रॉब्लम सम्स देकर

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है। मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

Baby, I love you. रेस फिल्म का ये ट्रैक अभी आपने एंजॉय किया 100.7 एफएम रेनबो पर, और बहुत ही बेहतरीन सा एक और ट्रैक मैंने क्यों किया था जो बचपने की याद दिला देता, लेकिन इससे पहले मेरी नज़र पड़ गई हमारे जीमेल एड्रेस पर और हमने देखा कि भाई बहुत सारे ईमेल्स आ चुके हैं, तो हमने सोचा पहले मेल्स शामिल कर लेते हैं। रोशनी रावत जी, गुड आफ्टरनून, हम बिल्कुल ठीक हैं, और आपने लिखा है 12 बजे से हम प्रोग्राम सुन रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम सुनना, और आगे लिखती हैं ये कि मैं आपको सफ़ीपुर ज़िला उन्नाव से मेल कर रही हूँ, और लिखा है मैं खुद ही एक बच्चा हूँ, मुझे कोई कहीं भी घुमाने ले जाता है, मैं चली जाती हूँ, मैं चली जाऊँगी, आगे भी चली जाऊँगी। अरे वाह, क्या बात है। ऑलराइट, नेक्स्ट मेल हमारे पास आया है सुल्तान रज़ा जी का बरेली से। इन्होंने लिखा है गर्मी की छुट्टियों में मैं बच्चों का तो नहीं, मैं खुद एक बच्चा हूँ और मैं मुख्य रूप से दुकान पर बैठता हूँ और आपके कार्यक्रमों का आनंद लेता हूँ। मेरे मम्मी पापा घर पे रहते हैं और हम लोगों ने प्लान बनाया हुआ है 25 तारीख को हम घूमने बाहर जा रहे हैं। ऑलराइट, साथ ही साथ इन्होंने कुछ लोगों के नाम लिखे हैं, रज़ा अफजल मोनिश सादिक, ओके ऑलराइट, और हैप्पी बर्थडे विश किया है हमारे माध्यम से अपने बड़े भाई को। ओके सुल्तान जी, मैं ये जानना चाह रही थी प्रोग्राम में, अच्छा कुछ लोगों का ईमेल अभी मेरे पास आया है जो मेरी निगाह से होके गुजरे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें अभी आज का टॉपिक नहीं पता है, तो टॉपिक ये है कि गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के साथ कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं आप, अगर आप खुद एक बच्चे हैं तो आप कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये आज हम आपसे जानना चाहते हैं। और ये रिक्वेस्ट हमारी बाबू अंसारी जी की भी थी बाराबंकी से, और देखिए अब आपको टॉपिक पता चल गया है बाबू अंसारी जी, तो प्लीज़ फटाफट हमें अपने व्यूज़ हम तक पहुँचाइए। दिग्दर्शन गौर जी का मेल हमारे पास आया है शोभापुर मेरठ कैंट से, और दिग्दर्शन जी ये प्रोग्राम गाने सुनने का है लेकिन फरमाइशी गीत सुनने के लिए नेक्स्ट प्रोग्राम में मेल करिएगा, फिलहाल हमें टॉपिक से जुड़ी कुछ अपने जो व्यूज है हमारे साथ साझा करिए। रामराज जी का मेल हमारे पास आया है रायबरेली से, और उन्होंने लिखा है सबसे पहले हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार, स्वीकार कर लिया हमने आपका नमस्कार, आपको भी नमस्कार। और इन्होंने लिखा है बच्चे हमारे घर के जो बच्चे हैं वो अपने नाना नानी के यहाँ जाते हैं, वहाँ हंसी खुशी बच्चे आम जामुन खाते हैं, ननिहाल के आम और जामुन खाने में कुछ और ही मज़ा आ जाता है।

बिल्कुल सही बात है कि ननिहाल के जो आम और जामुन होते हैं ना, उनका मज़ा ही कुछ अलग सा होता है। तो बस इस बचपने वाली जो ये जो सब बातें हैं ना, इनको आप तक पहुंचाते पहुंचाते दिल चाहने लगा कि ये वाला जो ट्रैक है ना, वो आपके साथ मिलके एंजॉय करें। ब्रह्मचारी फिल्म का ये ट्रैक हम सब के लिए सिर्फ हमारे रेडियो सेट्स पर। सो स्टे ट्यून्ड।

ऑलराइट, मेल आने का जो सिलसिला है ना वो जारी है और नेक्स्ट मेल हम शामिल कर रहे हैं। लखनऊ से हमारे पास मेल आया है एमन का। इन्होंने लिखा है कि हमने अपने बच्चों को दो बार नॉन फायर कुकिंग में इन्वॉल्व किया है और साथ ही साथ कई बार उनके साथ माप तौल की एक्टिविटी भी की है, उनको बस माप तौल सिखाने के लिए। ग्रेट गोइंग एमन। इसके अलावा हमारे पास मेल आया है लालगिरी जी का। इन्होंने हमें ज़िला श्री गंगानगर राजस्थान से मेल किया है और इन्होंने लिखा है कि हमें आप लोगों के सभी कार्यक्रम सुनना बहुत पसंद है और मैं बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने हिमाचल घूमने आया हुआ हूँ। ओके, एंजॉय योर वेकेशन इन हिमाचल। ऑलराइट, नेक्स्ट मेल हमारे पास किसका आया है? वकील अहमद जी का आया है। इन्होंने हमें हथूरी ज़िला सीतापुर से मेल किया है। इन्होंने लिखा है बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, समर ब्रेक चल रहा है, इसमें उन्हें स्कूल का काम करवाते हैं और उर्दू भी पढ़ने जाते हैं बच्चे हमारे, और यहाँ गर्मी बहुत तेज़ हो रही है। दो पीपल के बहुत पुराने से पेड़ हैं, उसके पास कुछ इंतज़ाम है स्विमिंग करने का। ऑलराइट, तो मतलब वहाँ पे भी टाइम स्पेंड करते हैं ये। ऑलराइट, या फिर अपने बच्चों के साथ ये स्पेंड करते होंगे ये टाइम। बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशन तो इन्होंने नहीं दी है, लेकिन हाँ अच्छा लगा ये जान करके कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ में भी पेरेंट्स अपने बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट मेल हमारे पास आ गया है मुंगीसापुर कानपुर देहात से, और ये मेल हमारे पास आया है रामेश्वर जी का। इन्होंने लिखा है कुछ लोगों के नाम लिखे हैं और साथ ही साथ लिखा है कि प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आते हैं। ऑलराइट, टॉपिक से जुड़ा इन्होंने कोई भी बात नहीं लिखी है, तो रामेश्वर जी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे तो प्लीज़ हमें टॉपिक से जुड़े जो भी अपने विचार हैं वो हमारे साथ ज़रूर साझा करिए। गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, समर ब्रेक टाइम चल रहा है, तो इसमें आप अपने बच्चों के साथ कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या आपके घर पर कुछ घर परिवार पर आपके कुछ रिलेटिव्स के बच्चे आए हुए हैं उनके साथ कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं हमारे साथ ज़रूर साझा करिए। ओके, बहुत ही अवेटेड एमन नवाब जी का भी मैसेज हमें प्राप्त हो गया है डीला से, और आपने लिखा है अपनी गर्मी की छुट्टी मोबाइल देखकर सोकर टीवी पर मोबाइल फिर सोकर बिता रहे हैं हम। ओके, और आगे इन्होंने और कुछ भी स्पेसिफिकेशन हमें दिए हैं। मेरे दादाजी हाई स्कूल साइंस टीचर हैं, तो कहीं ना कहीं हम सभी बच्चों को पढ़ाई से पूरी तरीके से फुर्सत नहीं मिल पाती है लेकिन हाँ, दादाजी के साथ टाइम स्पेंड करना और दादाजी से चीज़ें सीखना बड़ा फ्रूटफुल साबित होता है, ये लिखा है इन्होंने। थैंक यू सो मच मेल करने के लिए हमें। ऑलराइट, इतने सारे मेल्स शामिल करने के बाद फिर से वक्त हो जाता है एक बेहतरीन सा ट्रैक आप तक पहुंचाया जाए, और इस बार भी ट्रैक जो है वो हम सब की पसंद का है, हमारे स्पेशली हमारे बच्चों की पसंद का है। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप एंजॉयिंग 100.7 FM रेनबो।

इनकार और इकरार की परिस्थिति में बने हुए हैं हमारे एक लिसनर भी, इनका नाम है ब्रह्मेश सोनी। इन्होंने लिखा है कि मैं टिकैत नगर बाराबंकी से आपको मेल कर रहा हूँ, मैं भी अनमैरिड हूँ और आप सबकी बातें सुन रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ। रेडियो के हमारे कुछ दोस्त हमारे साथ बैठे हुए हैं और बस इन्होंने लिखा है लास्ट में कि हमारी ईमेल शामिल कर लीजिएगा। देखिए, आप अनमैरिड है तो क्या हुआ, आपके घर पे कुछ ना कोई आपके बड़े भाई बहन किसी के बच्चे होंगे, कुछ पड़ोसी होंगे। समर ब्रेक के टाइम पे हम सब मिलजुल करके टाइम स्पेंड करना बड़ा मजे से एंजॉय करते हैं भाई, तो मुस्कुराइए, ये अच्छी बात है। सतीश अनेजा जी का मेल हमारे पास आया है और इन्होंने चंडीगढ़ से हमें मेल किया है, रेगुलर लिसनर है हमारे। इन्होंने लिखा है हमारी गर्मियों की गर्मियां बहुत अच्छी रहती हैं, सुबह सुबह काम निपटाकर सारा दिन घर पर आकाशवाणी के साथ बिताते हैं और खाने पीने का भी विशेष ध्यान रखते हैं। चंडीगढ़ में वैसे भी गर्मी बहुत ज्यादा नहीं होती, जून और जुलाई में मनाली में भी कुछ दिन के लिए चले जाते हैं, लेकिन रेडियो हमेशा हमसफर रहता है जिससे बहुत सुकून मिलता है। थैंक यू सो मच। बिमला अनेजा का भी नाम लेने की रिक्वेस्ट आपने की थी। ओके, मोहम्मद आमिर का भी मेल हमारे पास आ गया है बरेली से, और ये तो गीत सुनने की रिक्वेस्ट की, नेक्स्ट प्रोग्राम में मेल करिएगा प्लीज। ऑलराइट, इसके बाद हमारे पास एक और मेल आया है और ये मेल है सऊद का, लखनऊ से। इन्होंने लिखा है हम अपने घर पे जितने बच्चे हैं उनको और अपने पड़ोसी के बच्चों को इकट्ठा करके टीचर वाला गेम खिलवाते हैं। ओके, और लिखा है कि हम खुद स्टूडेंट बन जाते हैं और देखते हैं कि बच्चे किस तरीके से इनैक्ट करते हैं अपने क्लास

सिस को, इससे उनका बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ऑल राइट, इसके बाद सारा का मेल आया है हमारे पास न्यू दिल्ली से। इन्होंने लिखा है कि रोज सोने से पहले एक चीज बताना। ओके, इन्होंने अपने बच्चे को डायरी लिखने की हैबिट डेवलप कराई है और सोने से पहले एक चीज़ वो मेंशन करती है जिसमें वो थैंक यू कहती है। किसी भी पूरे दिन में जो भी उसने गतिविधियां की होंगी उसमें से किसी एक चीज़ का वो थैंक यू नोट ज़रूर लिखती है। बड़ी अच्छी सी बात है, और डायरी लिखना तो बहुत ही अच्छी आदत होती है, बहुत रिलैक्स्ड फील करते हैं आप। फिलहाल वक्त हो गया इस प्रोग्राम को यहीं वाइंड अप कराया जाए, और फाइनली हम इस प्रोग्राम को यहीं वाइंड अप कर देंगे। इस वादे के साथ एक छोटे से म्यूजिकल और न्यूज ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे प्रोग्राम हॉटमेल में। तो रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर।

नेता बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि भारतीय लोकतंत्र का ये अभूतपूर्व कीर्तिमान संपूर्ण देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा, यह सम्मान

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है, इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
3: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, उसमें सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
4: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर भावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2169 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
6: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
6: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट है, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ NDA गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
7: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वें शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री की टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि एलपीजी कनेक्शनों को पीएनजी कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
8: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठाके कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
9: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के 5वें बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बल बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: अफगानिस्तान के कुनार खोस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

2:41 मिनट का वक्त और ये जो दो ट्रैक्स अभी आपने एंजॉय किए ना 100.7 एफएम रेनबो पर, ये दोनों हमारे लिसनर्स की पसंद के थे। ऑल राइट, सरिता अभिजीत जी का मैसेज हमें प्राप्त हो गया है बहादुरा नागपुर से। प्रिंस एकांश, सुमित, कुमारी ध्वनि, परी, अभिजीत, सरिता, प्रणिता, सिद्धांत, सबका नाम लेने की आपने रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। ओके ओके ओके, ऑल राइट, इसमें नया मेल किसका है? नरेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेल हमें किया है। और पानीपत से आपका मेल हमें प्राप्त हो गया है, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। राधे कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मेल किया उसके लिए। प्लस एक सॉन्ग सुनने की आपने रिक्वेस्ट की, हम पूरी कोशिश करेंगे ये सॉन्ग आज प्रोग्राम में प्ले हो। जी हाँ, ऑल राइट। देन रोजी डिकैस्ट्रो जी के ईमेल एड्रेस से भी मेल आ गया हमारे पास, जनकपुरी सहारनपुर से, आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं। और जॉन, पर्ल, विलिस, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट आपने की है, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। राजू मिगलानी जी, आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया है, दुर्ग कॉलोनी हांसी से, आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं। बबीता, सुभाष, बब्बू डब्बू, सबका नाम लेने की रिक्वेस्ट की, और अगर हमारी पसंद का ट्रैक प्ले कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, ये भी लिखा आपने। नहीं भाई, मेहरबानी की क्या बात है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि सबकी पसंद का ट्रैक हम प्ले कर पाए, लेकिन थोड़ा टाइम का कॉन्स्ट्रेंट रहता है। शुभ दोपहरिया लिखकर भेजा है संजय साहू जी ने, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। सफलता, कड़ी मेहनत, आत्म जागरूकता और सही दृष्टिकोण पर, अच्छा, सफलता कड़ी मेहनत, आत्म जागरूकता और सही दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। ओके, बिल्कुल सही बात आपने कही। पोटिया कला दुर्ग से आपने मेल किया है हमें, और सुजाता साहू जी का नाम लेने की रिक्वेस्ट की है, साथ ही एक सॉन्ग सुनने की भी रिक्वेस्ट की है, पूरी कोशिश हम करेंगे। स्वर्ण सिंह जी, आपका मेल हम ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं, सुनील पाठक जी का भी शामिल हो चुका है। एजाज अहमद जी ने हमें मेल किया है, कहाँ से मेल किया है, ये यूपी 34 लिख करके भेज दिया है इन्होंने हमें, और आगे लिखा है, मुझे प्रोग्राम का बेसब्री से इंतजार रहता है, मैं इस प्रोग्राम को सुनने के लिए सारे काम जल्दी से खत्म कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच इतनी इज्जत अफजाई के लिए। ओके, सादिक खत्री जी का भी मेल हमें प्राप्त हो गया है, वैष्णव कॉलोनी सनावत से, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। और आपकी पसंद का कोई भी सदाबहार सुरीला गीत सुनवा दीजिए, बिल्कुल नेक्स्ट ट्रैक जो होगा ना वो स्पेशली आपको डेडिकेटेड होगा। गुड आफ्टरनून एफएम रेनबो, जावेद अख्तर जी ने मेल किया हमें लिख करके, और बस गुड आफ्टरनून लिख के भेजा है, गुड आफ्टरनून विशेस आपको भी। ओके, नेक्स्ट मेल उदय भान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेल किया हमें, किसी भी गीत में हमें शामिल कर लीजिए। रजौनी, जिला महोबा, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से हम आपको मेल कर रहे हैं। जय हिंद पाल, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश और समस्त परिवार का नाम लेने की आपने रिक्वेस्ट की थी। प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने हमें एटा से मेल किया है, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल, अनम, यशफ, रसीद और जुबैर, मुबीन, सबका नाम लेने की रिक्वेस्ट की, और लास्ट में लिखा है बहुत बहुत शुक्रिया। शीलू मौर्या जी, आपका भी शुक्रिया, फैजुल्लागंज लखनऊ से आपका मेल हमें प्राप्त हो गया है। मैम, मेरी सिस्टर शिवांगी मौर्या, संदीप मौर्य और मेरे हस्बैंड शोभित मौर्य जी का नाम ले लीजिएगा, सबका नाम ले लिया हमने, और आपने एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की। अच्छा, इस फिल्म का सॉन्ग अभी थोड़ी देर पहले हम प्ले कर चुके हैं, वैसे हम कोशिश करेंगे कि ये सॉन्ग भी प्ले हो जाए, लेकिन फिर भी थैंक यू हमें मेल करने के लिए। जनवेश कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कोशिश कीजिएगा अपनी पसंद का गाना सुनवा दीजिए। भाई, हम अपनी पसंद का कोई गाना आज नहीं सुनवा रहे प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में, ये प्रोग्राम डेडिकेटेड है आप सबको, जितने भी ट्रैक्स प्ले हो रहे हैं ना सब आपकी पसंद के, और हमें तो लामोला वो सब ट्रैक्स ऑटोमेटिकली पसंद आ जाते हैं। जनवेश कुमार जी ने ग्राम रसूलपुर पोस्ट सकरावा जिला कन्नौज से मेल किया है, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। लिखा है, कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया जो आपको अच्छा लग रहा है कार्यक्रम की प्रस्तुति। संजय ढींगिया जी, बागपत, उत्तर प्रदेश से आपने मेल किया है और एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की है, बिल्कुल हम कोशिश पूरी करेंगे। हीरामणि वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, भाटापारा छत्तीसगढ़ से आपका मेल हमें प्राप्त हो गया है, कोई भी गीत सुनवा दीजिए। और आपने पारसमणि, पुष्पेंद्र, नोखेलाल वर्मा, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की है। मेहर अरोड़ा जी, आपका

मेल हमें प्राप्त हो गया राजस्थान से। एक सॉन्ग आपने सुनने की रिक्वेस्ट की, हम पूरी कोशिश करेंगे आज वो सॉन्ग जरूर प्ले हो इस प्रोग्राम में। शोविंद कुमार जी, प्लीज मैम हमारा मेल शामिल कर लीजिए। गुड आफ्टरनून, मैं आज बहुत दुखी हूं क्योंकि आज हमारे अच्छा कोई इनके बहुत ही करीबी हैं, वो इस दुनिया को रुखसत करके आज जा चुके हैं। ओके, बड़ा ही दुखद समाचार है ये, लेकिन उनकी आगे की जो मतलब आगे इन्होंने लिखा है, मैं उनकी याद में एक सॉन्ग सुनना चाहता हूँ। ओके ओके ओके, आपने हमें डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से मेल किया है, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। हम आपके साथ इस दुखद समय में खड़े हैं, बस आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके घर वालों के लिए हमेशा एक हेल्पिंग हैंड बन के खड़े रहिएगा, अगर आपकी लाइफ में वो इतने इम्पोर्टेंट थे तो। ओके, संजू देवी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सीतापुर से आपका मेल हमें प्राप्त हो गया है। एक सॉन्ग सुनने की आपने रिक्वेस्ट की, प्लीज़ मैडम जी सुनवा दीजिए, मेरा गिफ्ट काफ़ी दिनों से प्ले नहीं हुआ है। ओके ऑलराइट, मोहसिन रजा जी आपका मेल प्राप्त हो गया हमें, खंडवा रोड सनावत से। शाहबाज, अरबाज, फरहाज, फरदीन, समीर, डॉक्टर मोइन, सबका नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू। महेंद्र देपान जी, रूड़ा जिला नागौर राजस्थान से आपका मेल हमें प्राप्त हो गया है। और सुरेश दौलत गुर्जर, रोशनी रावत, बबीता राव, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू। ओके, टाइगर खान खान खान, ये ईमेल एड्रेस है जिससे मेल आया हमारे पास, लिखा है माय नेम इज़ नरगिस, मैं आपको बिलाई तहसील संडीला डिस्ट्रिक्ट हरदोई से मेल कर रही हूँ। गुड आफ्टरनून मैम, मैं आपकी रेगुलर लिसनर हूँ, मेरी एक फरमाइश है, प्लीज़ हो सके तो इसे प्ले कर दीजिएगा। तैयबा शादाब सलमान, इनका नाम लेने की रिक्वेस्ट की है, बिल्कुल हो सकेगा हम ज़रूर प्ले करेंगे। फिलहाल आपका मेल हमने शामिल कर लिया। धर्मेंद्र कुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मिर्कापुर पोस्ट दरियाबाद जिला बाराबंकी से आपका मेल हमें प्राप्त हो गया है। और प्रजापति शुभम कुमार, महक, मीना, इन सब का नाम लेने की आपने रिक्वेस्ट की है, थैंक यू मैम जी। ओके ओके ओके ओके, सोमदत्त जी का भी मेल हमें प्राप्त हो गया है पटियाला पंजाब से, और एक सॉन्ग सुनने की आपने रिक्वेस्ट की है। ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु, इन सब का नाम लेने की भी ऑलराइट। ओके, सुरेश नारंग जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इतना कलरफुल, इतना बेहतरीन मैसेज करने के लिए, सहारनपुर से आपने मेल किया हमें। और आशा नारंग, सुरेश नारंग, सोनाली नारंग, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की है। ओके, मोहसिन हाशमी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्यार भरा आदाब, आप अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए। नई बस्ती गंज डुंडवारा से मैं आपको मेल कर रहा हूँ, यासीन, नाजमा बेगम, और साथ में मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद कलीम, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू। निसार अली जी आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया है। और धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं। नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान, बाबू, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ मेल शामिल कर लीजिएगा। देखिए आपकी मेल शामिल हो गई है। ओके, शिवराज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बाबू रिहा पोस्ट बरौली मालिक जिला बाराबंकी से आपने मेल किया है और लिखा है एक अच्छा सॉन्ग सुनवा दीजिए। ओके, दुर्गराम साहू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने हमें कबीर धाम छत्तीसगढ़ से मेल किया है। किशन, मति कुमारी, मति इंद्राणी, माया, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की थी, कोई भी गीत सुनवा दीजिए, किसी भी गीत के साथ शामिल कर लीजिए। ओके, हीरामणि वर्मा जी आपका मेल हम ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं। ओके ओके ओके, देखिए किसी का छूट तो नहीं रहा अभी तक। ओके, मनोज बंसल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हरियाणा से आपने हमें मेल किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल राइट, तो फिलहाल ये गाना सुनने का जो रिक्वेस्टेड ट्रैक है ना, उसे सुनने का टाइम आ गया है। रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर, जो है धड़कन लखनऊ की।

ऑल राइट, 2:55 का वक्त हो गया है, चलते चलते कुछ मेल्स हमारे पास और आ गए हैं। जगदीश जी ने मेल किया है मारिया, इन्होंने हमें कहाँ से मेल किया है, जिला रतलाम एमपी से मेल किया है आपने। श्रीमती रंजू बाय, युवराज सिंह, शिवांगी, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की और लिखा है किसी भी गीत में बस हमारा मेल शामिल कर लीजिए। आपका मेल शामिल हो गया है। साई गायकवाड़ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बारिश का मौसम चल रहा है, आपके पसंद को आपकी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए। महाराष्ट्र से आपने मेल किया है। नारायण गायकवाड़, दयानंद ओमकार, साई गायकवाड़ जी ने इतने लोगों का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, हमने नाम ले लिया। थैंक यू मेल करने के लिए हमें। शिव प्रकाश जी, मैम और सर नमस्ते, मैं शिव प्रकाश फतेहपुर से जो दिल्ली में काम करता हूँ। हमें काम करते करते शाम को जोर से भूख लगती है और जब खाना खाने बैठते हैं तो खाना खाने का मन नहीं करता। क्या ये भी ये तो डॉक्टर साहब का सवाल आपने कर लिया, डिस्पोशिया के बारे में जो बात हो रही थी। फिलहाल आपने मेल किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। अशोक कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लखीमपुर खीरी से आपका मेल हमें प्राप्त हो गया, गुड आफ्टरनून। और मैंने कोशिश की है कि सभी का मेल शामिल हो जाए, अगर किसी का नहीं हुआ है। कौशिक वाधवान जी, गुजरात से आपका मेल अभी भी हमें मिल गया। केम छो असी मजामा छो, गुड आफ्टरनून विशेस लिख के भेजी हैं और एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की। हम पूरी कोशिश करेंगे सॉन्ग प्ले हो, लेकिन फिलहाल इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम आ गया है इस ट्रैक के साथ। ये भी किसी लिसनर की पसंद का ही सॉन्ग है, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर, जो है धड़कन लखनऊ की।

102.2 की फ्रिक्वेंसी पर आपने ट्यून इन किया है एफएम रेनबो कानपुर को। नमस्कार दोस्तों, म्यूजिक आर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रोग्राम में जहां बातें होती हैं दिल की, दौर की और समाज की,

वहीं आज बातें होंगी सोशल मीडिया की चकाचौंध की। आपके विचार आमंत्रित हैं। हमारी ईमेल आईडी है airkansomedia@gmail.com।

दोस्तों आज का युवा इंटरनेट की दुनिया में जी रहा है। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल स्क्रीन, रात को सोने से पहले आखिरी नजर भी मोबाइल पर। रील्स, स्टेटस, लाइक्स, फॉलोअर्स और वायरल होने की चाह, इन सब ने युवाओं की सोच, रिश्तों, करियर और जीवन शैली को गहराई से प्रभावित किया है। सोशल मीडिया ने अवसर भी दिए हैं दोस्तों और चुनौतियाँ भी। कहीं ये प्रतिभा को मंच देता है तो कहीं तुलना और अकेलेपन की वजह भी बन जाता है। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं आपको ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक।

दोस्तों, एक समय था जब दोस्ती गली मोहल्लों में पनपती थी। आज दोस्ती फ्रेंड रिक्वेस्ट से शुरू होती है। पहले लोग यादों को दिल में रखते थे, अब स्टोरी में डालते हैं। आज का युवा डिजिटल है, तेज है, जागरूक है। वो दुनिया भर की जानकारी एक क्लिक में हासिल कर सकता है, लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। सोशल मीडिया की दुनिया अक्सर दिखावे से भरी होती है। लोग अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा दिखाते हैं और देखने वाला अपनी जिंदगी को कमतर समझने लगता है। फिलहाल एक और ट्रैक पहुंच रहा है।

दोस्तों, अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो सोशल मीडिया वरदान भी है। आज कितने ही युवा इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से अपनी कला दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। कोई गाना गाकर मशहूर हो रहा है, कोई कॉमेडी से, तो कोई शिक्षा

वेल गाइस, सोशल मीडिया ने लोगों को जोड़ा भी है और दूर भी किया है। घर में सब साथ बैठते हैं लेकिन सबकी नज़र मोबाइल स्क्रीन पर होती है। कई बार वर्चुअल दुनिया इतनी बड़ी हो जाती है कि असल रिश्ते पीछे छूटने लगते हैं। युवा घंटों चैट करता है लेकिन परिवार से दो मिनट बात नहीं कर पाता। याद रखिए, ऑनलाइन दोस्ती अच्छी है लेकिन असली रिश्तों की गर्माहट ही अलग होती है।

0: कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
2: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
5: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
4: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप। तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
5: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
4: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:15 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर। मेल मिलाप।

म्यूजिक हर प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं एफएम रेनबो कानपुर से 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर अपनी दोस्त रितु के साथ। प्रोग्राम में बातें हो रही हैं सोशल मीडिया की चकाचौंध की, और आप भी इस विषय पर कुछ शेयर करना चाहते हैं हमसे तो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। और हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए airkansomedia@gmail.com।

दोस्तों, सोशल मीडिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है फेक न्यूज़। बिना सच्चाई जाने कई लोग खबरें शेयर कर देते हैं। इससे अफवाहें फैलती हैं और समाज में भ्रम पैदा होता है। तो युवाओं को जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनना होगा। कुछ भी शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई जांचना ज़रूरी है। लेकिन गाइज, सॉन्ग को प्ले करने से पहले कुछ भी जाँचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।

दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन से बाहर भी एक खूबसूरत दुनिया है जहां असली मुस्कान है, सच्चे रिश्ते हैं, खुला आसमान है। कभी दोस्तों के साथ बिना फोटो लिए भी पल बिताइए, कभी सूरज को ढलते हुए देखिए, किताबें पढ़िए, कभी परिवार के साथ बैठिए, क्योंकि यही पल असली यादें बनते हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।

आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो कानपुर को 102.2 की फ्रीक्वेंसी पर। प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक आर। आज बातें हो रही हैं सोशल मीडिया की चकाचौंध की।

वेल गाइज, तकनीक बुरी नहीं होती, उसका गलत इस्तेमाल नुकसान पहुंचाता है। अगर सोशल मीडिया को सीखने, प्रेरणा लेने और सकारात्मक जुड़ाव के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। युवाओं को चाहिए कि वे ऑनलाइन रहने के साथ साथ इन लाइफ भी रहें।

तो दोस्तों सोशल मीडिया की चमक आकर्षक जरूर है, लेकिन असली चमक आपके व्यक्तित्व, विचारों और कर्मों में होती है। मोबाइल का यूज कीजिए, लेकिन मोबाइल को खुद पर हावी मत होने दीजिए। लाइक्स से ज्यादा जरूरी है आत्मसम्मान, और फॉलोअर्स से ज्यादा जरूरी है सच्चे रिश्ते। इसी खूबसूरत संदेश के साथ टाइम हो गया है प्रोग्राम को वाइंड अप करने का। तो मुस्कुराती रहिए, सकारात्मक रहिए, और जिंदगी को स्क्रीन से नहीं दिल से जीते रहिए। सुनिए ये ट्रैक और मुझे म्यूजिक प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। नमस्कार।

102.2 की फ्रिक्वेंसी पर आपने ट्यून इन किया है एफएम रेनबो कानपुर को। अगला प्रोग्राम होगा आपकी पसंद, कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

पसंद प्रोग्राम में हम लेकर आए हैं आई मिलन की बेला फिल्म का गाना, जिसे आवाजें दी हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। शैलेंद्र के लिखे गीत को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। और इस गीत के लिए हमारे पास ढेर सारी ईमेल फरमाइशें आ चुकी हैं। भटिंडा पंजाब से परम सिंह जौड़ा, मनप्रीत कौर, करणबीर, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिब्बू, एकम, दमन और अभिजीत। नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद कलीम अंसारी। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन और पायल जोशी की फरमाइश आई है। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर, श्रीमती सरिता गवाड़कर, प्रिंस और एकांश गवाड़कर। बदलापुर मुंबई से प्रणीता गवाड़कर, सिद्धांत गवाड़कर, लाडला टुक टुक गवाड़कर। आकार हाइट्स भादुरा नागपुर वैशाली शैलेश गवाड़कर की फरमाइश आई है। श्वेता, सुमित और कुमारी ध्वनि गवाड़कर।

मेरा गांव मेरा देश। जी हाँ, इसी फिल्म का गीत आ रहा है अब आपके मोबाइल और रेडियो सेट पर। मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमा राज, दिव्या भारती, गौराया जालंधर से संदीप कौर, प्रभा और राधिका कौर, जिला खरगोन सनापद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा, राजकुमार बोड़ाना, सुदामानगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप। और इसी के साथ शास्त्री नगर बीट शहर से हमारे पास फरमाइश आई है आशा सपकाल, किशन सपकाल, सोनिया सपकाल, साईराज सपकाल और विशाल सपकाल की।

0: Hi, this is Udit Narayan. You are listening 102.2 FM Rainbow शहर की म्यूजिकल हार्टबीट. दिल से जुड़े रहें और सुनते रहें शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को.
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी. देश के विकास में सहभागी बने.
2: एक आवश्यक सूचना सुनिए. कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं. इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं. नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें. पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे. एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं. नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026. सूचना समाप्त हुई.
3: आपकी पसंद प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं एफएम रेनबो कानपुर से 102.2 की फ्रीक्वेंसी पर अपनी रेडियो दोस्त ऋतु के साथ.

मेरे हुजूर फिल्म का गाना अभी आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी और हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा था और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई कापस हेड़ा दिल्ली से अरमान खान, फिरोज़ खान, संदीप जाटव, पूजा जाटव, शनि चौक खंडवा से प्रभा कुमारी, अजीता कुमारी, दुर्गा कुमारी, शिवकोटी ओंकारेश्वर से राकेश ताई, गौरव डोम, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन, कविता, राधा नामदेव, अनिल जैन, संजय ढिकिया, संदीप मक्कड़ और दर्शन भाई। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से फरमाइश आई है मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब, पलक, लुबना और यश मंसूरी की।

प्रोग्राम में अगला गीत हम लेकर आए हैं प्रेम पर्वत फिल्म का, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने। जा निसार अख्तर के बोलों को सुरों में पिरोया है जयदेव ने, और इस गीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुराना तालाब डुमराव से बलीउल्लाह अंसारी, बेबी पूजा मलिक, रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से इनका नाम हम पढ़ चुके हैं, प्रशांत शिंदे, सुनीता यशराज ऋषि और कृष्णा घोटके, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी गीतिका और भानु प्रकाश, गंज डुंडवारा कासगंज से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम, मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद यासीन, शमशुल कमर राही, और इसी के साथ चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा का भी फरमाइश हमारे पास आ चुकी है। तो आप सभी की फरमाइश पर आप तक पहुंच रहा है प्रेम पर्वत फिल्म का ये ट्रैक।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
3: आपकी पसंद प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं एफएम रेनबो कानपुर से 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर। और अब प्रोग्राम में आ रहा है मोहम्मद रफी, आशा भोसले और शमशाद बेगम का गाया सीआईडी फिल्म का ये गाना है। और मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है ओपी नैयर ने। और इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई इंदिरा बिहार दिल्ली से, बेबी अंसारी, निशा और डब्लू अंसारी, चंद्रनगर राजकोट से कौशल्या जोशी, सोनाली सुरेश, एस के जाटव, संदीप रानी जटोलिया, डोडी लोहारा, बालोद से हरिशंकर डोम, अनिता डोमिन, असलम अंसारी, राज और एस डी अंसारी, एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता गणेश, कार्तिक परी, स्वाति प्रयाग चौधरी, आप सभी की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं सीआईडी फिल्म का ये ट्रैक।

पाकुड़ झारखंड से हमारे पास फरमाइश आई है। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत की, सुतासु अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, मुन्ना भगत और गुड्डी भगत की, सराभा नगर जालंधर से जी आर पाल और समस्त पाल परिवार, माल्यान सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम मुस्कान, जी वी एम जैन, चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और विमला अनेजा, और बागवान मंजिल छोटी बलिया से नूर आयशा अहमद, इकबाल अहमद, अखलाक अहमद, आमना आसमा, राबिया परी, आशु जूही, सदफ आरजू और बागवान परिवार के सभी लोगों की फरमाइश आई है। और आप सभी ने सुनना चाहा है शोर फिल्म का ये गाना, जिसे आवाज़ें दी हैं किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों ने। संतोष आनंद ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
2: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
1: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप। तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
2: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
1: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 3:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
3: आपके पसंद प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं FM रेनबो कानपुर से 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर अपनी दोस्त रितु के साथ, और प्रोग्राम में लीजिए आप सुनिए दूध का कर्ज फिल्म का गाना, जिसे आवाजें दी हैं मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल ने। लिरिक्स हैं आनंद बख्शी के और संगीत है अनु मलिक का। और इस गीत के लिए हमारे पास ईमेल फरमाइशें आई हैं नेहरू चौक पैठण से सुरेश जाधव, अनीता, आरती, सोनल, सिया, आरती, अरुण धोगड़े, भाव साहब धोगड़े, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज, गाँव लोहगढ़, ठाकुरांवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। और ये एक और फरमाइश आई है पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा, रिमझिम गुप्ता, समडिल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, दीति, राधे, दीपक और अंकु राघव गुप्ता।

के अंत में लीजिए सुनिए बरसात फिल्म का गाना, कुमार सानू की आवाज है, समीर का लिखा गीत और संगीत नदीम श्रवण का। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, मोहम्मद सादिक की फरमाइश आई है, आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्लाह आजाद ने भी अपनी फरमाइश भेजी है। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसबीर, सीता और गीता, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल, पूजा परिहार, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां की फरमाइश आ चुकी है। और ये एक और फरमाइश हमें दिखाई दे रही है, एवर ग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रविता खुराना, केशु रिधान खुराना, आप सभी की पसंद पर लीजिए सुनिए बरसात फिल्म का ये ट्रैक।

शाम के 5 बजे हैं। अब सुनिए समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की उपलब्धि पर चर्चा की गई। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि भारतीय लोकतंत्र का यह कीर्तिमान संपूर्ण देशवासियों के विश्वास और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है। प्रधानमंत्री के देश में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने पर पूरे प्रदेश भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की। जौनपुर के श्री गौरी शंकर धाम मंदिर में एक आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य मंत्री डॉ धर्मवीर प्रजापति अयोध्या में धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। देवरिया के सोमनाथ मंदिर में विशेष पूजा पाठ एवं हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वाराणसी में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कानपुर देहात में पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए तथा टीबी मरीजों को पोषण पोटली प्रदान की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन ईओडब्ल्यू की कार्यप्रणाली एवं प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में त्वरित जांच, प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा पुराने मामलों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आर्थिक अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई को और अधिक प्रभावी और त्वरित बनाने के लिए आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन को आधुनिक तकनीक, सुदृढ़ जांच प्रणाली और प्रभावी अनुश्रवण तंत्र से सशक्त किया जाएगा। प्रदेश भर में खरीफ सीजन की तैयारियों के बीच कृषि विभाग ने किसानों को मौसम की चुनौतियों से निपटने के लिए नई रणनीति अपनाने का आह्वान किया है। वाराणसी में आयोजित पत्रकार वार्ता में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि इस वर्ष श्री अन्न और तिलहन फसलों के रकबे को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी में परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में कहा कि यह सिर्फ एक योजना का परिवर्तन नहीं है बल्कि करोड़ों मजदूरों के जीवन और आजीविका से जुड़ा विषय है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित होगा।

वेल फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। जैसे मैंने वादा किया था कि ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा और ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, बस आपके पास हूँ, आपके करीब हूँ और जल्द वापस आऊंगा। और देखिए, आ गया मैं। 5:53 का ये वक्त हो रहा है और ये अगला प्रोग्राम जिसका नाम पता है ना आपको, जी हाँ, यूथ वेव के बाद ये अगला प्रोग्राम है जिसका नाम है FM Top 10। 5 बज चुके हैं और आज इसमें 10 सबसे जो गाने होते हैं, मतलब जो काउंटडाउन होता है, वो हम आप तक पहुंचाते हैं अलग अलग सालों के। तो आज जो साल मैंने चुना है वो 1992 यानी कि 1992, और इस साल में के जो 10 प्रभावी गीत थे वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और सबसे पहले पहला गीत यानी कि पायदान नंबर 10 पर और काउंटडाउन नंबर जो ये शुरू है 10 नंबर पर जो गीत है वो आप तक पहले पहुंचा रहा हूं। और ये गाना कुमार सानू और अलका याग्निक ने गाया है और गाने में शाहरुख खान और उर्मिला मातोंडकर हैं। बोल है आनंद बख्शी के, कुछ कुछ अंदाज़ आपको ज़रूर लग रहा होगा। और मैं आपका दोस्त देव साथ दूंगा इस प्रोग्राम में 100.7 FM पर। बने रहिए और सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए।

वेल, 10 नंबर के पायदान पर आपने ये गाना सुना, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब नवे नंबर पर कौन सा गाना है, बिल्कुल बताएंगे आपको और आपको सुनवाएंगे भी। इसमें भी आवाजें हैं कुमार सानू की और साथ में हैं उनके पूर्णिमा। म्यूजिक कंपोज किया है आनंद मिलिंद ने और लिरिक्स हैं समीर के। 90s के दौर में समीर ऐसे गीतकार थे जिनके लिरिक्स लगभग हर फिल्म में होते थे। गाने जो हैं वो मतलब काफ़ी सफल और काफ़ी अच्छे गाने उन्होंने लिखे। 90s के जितने भी गाने मोस्टली समीर के लिखे हुए उनके गाने पसंद भी किए जाते थे। फिलहाल देर ना करते हुए आपको ये गाना सुनवा रहा हूँ। फिल्म है बोल राधा बोल, इसके मुख्य कलाकार ऋषि कपूर और जूही चावला।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
3: पाए पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
5: वेल, FM रेनबो FM टॉप 10 का ये सफर शुरू हो चुका है। नंबर 10 और नंबर 9 के गाने आपने सुन लिए। अब वक्त है नंबर 8 पे कौन सा गाना है ये आपको बताने का। और ये गाना भी काफी हिट हुआ था अपने समय में, यानी कि 1992 में। उसके बाद भी और लोग आज भी पसंद करते हैं। इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं विजू शाह। फिल्म में काफी सारे कलाकार थे, यानी कि एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। और अब अंदाजा लगा होगा आपको या फिर नहीं लगा तो मैं बता रहा हूं, फिल्म है विश्वात्मा। और चलिए नंबर 8 पर विश्वात्मा से कौन सा गाना है ये वाला, चलिए आपको सुनवाते हैं।

Well, अगला गाना जो है यानी कि पायदान नंबर 7 पर और 10, 9, 8 के बाद अब वक्त है 7 का। और ये जो गाना है जिस फिल्म से है, ये फिल्म लोगों को काफी पसंद आई थी और इस फिल्म के गाने काफी सारे थे जो कि लोगों ने पसंद किए थे। और इस फिल्म से एक एक्टर ने डेब्यू किया था, उस एक्टर का नाम था पृथ्वी। ये उनकी डेब्यू फिल्म थी, हालांकि उसके बाद ये वो एक बहुत बड़ी संभावना देख रहे थे लोग उनमें, लेकिन उसके बाद वो काफी ज्यादा सफल नहीं हो पाए और कुछ फिल्में की और उसके बाद फिर सीन से ये गायब हो गए। फिलहाल 7 में इनके इस फिल्म में थी दिव्या भारती, नवाब आरजू का लिखा और कुमार सानू का गाया ये गाना है और कंपोजिशन है नदीम श्रवण की।

वेल 10, 9, 8, 7 छ और उसके बाद वक्त आता है 6 का, यानी कि लगभग आधा सफर हम तय करने जा रहे हैं। और ये जो 6 नंबर के पायदान पर ये काउंटडाउन जो शुरू हुआ, अब हम पहुंचे हैं नंबर 6 पर। और 6 पर कौन सा गाना, ये जल्द आपको पता चलेगा। और इसे भी कंपोज किया है नदीम श्रवण ने, लेकिन इस फिल्म में रोनित रॉय और फरहीन है। जी, 90s में बहुत सारे एक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने फिल्में तो अच्छी की थी, गाने भी चले थे, लेकिन उसके बाद फिर शायद वो एक्टर्स आगे वो उस चीज को उतना कैरी नहीं कर पाए। और हालांकि अच्छे एक्टर्स थे, जैसे कि रोनित रॉय के बारे में माना जाता है, हालांकि वो अभी भी कुछ फिल्में कर रहे हैं, अब उनका कमबैक हुआ, लेकिन वैसा नहीं जैसा उन्होंने पहली फिल्म से अपना जो

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं

0: उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: वेल, आधा सफर तय हो चुका है, 5:33 हो रहे, मैं हूं देव आपके साथ लेकर एफएम टॉप 10 और पायदान नंबर 5 पर कौन सा गाना, वो जरूर आपको बताऊंगा। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो फिल्म है, मतलब जिस फिल्म से ये गाना है, ये मणि रत्नम की 1988 की तमिल फिल्म अग्नि नट छतिरम की रीमेक थी और समीर ने गाने लिखे थे और आनंद मिलिंद का संगीत था। हालांकि फिल्म भी ठीक ठाक चली थी और इसका ये गाना जो मैं अभी आपको सुनाने जा रहा हूं, जो कि नंबर 5 पर है, ये काफी पसंद किया गया था।

वेल नंबर चार पर यानी कि पायदान नंबर चार पर जो गाना है वो जरूर आपको सुनाएंगे, और आपको बता दें कि इसमें म्यूजिक जतिन ललित का है और फिल्म है जो जीता वही सिकंदर, इसमें आमिर खान और आयशा जुल्का आपको नजर आएंगे। और बताएं आपको इसके फिल्म, ये जो फिल्म थी इस फिल्म में अक्षय कुमार ने भी ऑडिशन दिया था लेकिन किसी वजह से उन्हें नहीं लिया गया, और दीपक तिजोरी वाला जो रोल है वो पहले मिलिंद सोमन कर रहे थे और उन्होंने लगभग 75% इस रोल की शूटिंग कर ली थी और उसके बाद उन्हें रिप्लेस किया गया दीपक तिजोरी से। फिलहाल इस गाने के लिरिक्स मजरू सुल्तानपुरी के हैं और गाना आपके सामने है।

वेल, अब बढ़ते हैं आगे। 5:44 का ये वक्त हो रहा है और अब देखते हैं कि हमारे नंबर 9 के काउंटडाउन पे कौन सा है जी। और ये जो फिल्म है नंबर 9, नंबर 3, जी हाँ, ये है फिल्म खिलाड़ी से। और गाना बिल्कुल आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा और ये इसमें आवाज है अभिजीत की और अलका याग्निक की है। म्यूजिक जतिन ललित का और फिल्म अब्बास मस्तान की एक एक्शन थ्रिलर थी।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: वेल, पायदान नंबर 2 पर हम पहुंच गए हैं और इस पायदान पर कौन सा गाना है जरूर पता चलेगा आपको। और ये है फिल्म दीवाना से, और ये एक रोमांटिक एक्शन फिल्म थी और इसमें आवाज विनोद राठौड़ और अलका याग्निक की है। म्यूजिक नदीम श्रवण का है और लिरिक्स जी जैसे कि उस समय 90s में चलते थे समीर, उनका म्यूजिक, उनकी लिरिक्स।

Well, 10 नंबर के पायदान से लेके हम 2 नंबर तक पहुंच गए और एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं। 10 नंबर पर इस प्यार से फिल्म चमत्कार, 9 पे तू तू तू तू तारा, 8 पर 7 समंदर पार और 7 पर दिल जिगर नजर, 6 पर फर्स्ट टाइम तुम्हें देखा जान तेरे नाम से और 5वें पायदान पर आके तेरी बाहों में और 4 पर पहला नशा, 3 पर वादा रहा और 2 पर ऐसी दीवानगी फिल्म दीवाना से जो इस वक्त आप सुन रहे हैं। और अब हम बढ़ते हैं नंबर 1 पर यानी कि पायदान पर। टॉप गीत, टॉप गाना कौन सा है उस साल का? और बता दें आपको कि 1992 के सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से ये फिल्म थी और इसमें उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज है, म्यूजिक आनंद मिलिंद का, और ये सेकेंड बेस्ट सेलिंग एल्बम थी उस साल की और उसी एल्बम से, उसी फिल्म से ये गाना। चलिए सस्पेंस खत्म करते हैं, फिल्म है बेटा। वेल, म्यूजिक से आप समझ गए होंगे कि कौन सा गाना है, तो इस गाने को ये नंबर 1 पर एंजॉय कीजिए और दीजिए इजाजत देव को फिलहाल अभी इस प्रोग्राम से, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि मेरा और आपका साथ 8 बजे तक बना हुआ है।

नमस्कार, 6 बजे हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ये बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के उपलक्ष्य में हो रही है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री सहित भाजपा के शीर्ष नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया है। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर में बैठक को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के देश में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने पर पूरे प्रदेश भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की। राज्य मंत्री डॉक्टर धर्मवीर प्रजापति अयोध्या में धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। वाराणसी में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कानपुर देहात में पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए तथा टीबी मरीजों को पोषण पोटली प्रदान की गई। प्रदेश में खरीफ सीजन की तैयारियों के बीच कृषि विभाग ने किसानों को मौसम की चुनौतियों से निपटने के लिए नई रणनीति अपनाने का आह्वान किया है। वाराणसी में आयोजित पत्रकार वार्ता में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि इस वर्ष श्री अन्न और तिलहन फसलों के रकबे को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन ईओडब्ल्यू की कार्यप्रणाली और प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने ईओडब्ल्यू की आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में त्वरित जांच, प्रभावी कार्रवाई और दोष सिद्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में आर्थिक अपराधों से संबंधित लंबित जांच, विवेचनाओं, गिरफ्तारी अभियोजन, जन जागरूकता गतिविधियों तथा संगठनात्मक सुधारों की समीक्षा की गई। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। प्रदेश के सभी 75 जिलों में बनाए गए 1183 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षार्थियों को सघन जांच के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल ने 8 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है। वहीं राज्य परिवहन निगम रियायती दरों पर बसों की सुविधा प्रदान कर रहा है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। विभाग ने कल और 12 जून के लिए प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बिजली कड़कने, आंधी के साथ तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। इस दौरान कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है।

पंकी के गोपालपुर गांव के पास आज एक ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लिया गया है। आरोपी चालक की तलाश जारी है। इस बुलेटिन में इतना ही। 7 बजे सुनिए प्रदेश की टॉप 10 न्यूज़।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: भले 6:08 का ये वक्त हो रहा है और शाम अवध में आप सभी का स्वागत है 7 FM पर, और मैं हूं एक बार फिर से आपका दोस्त, वही पुराना जो पिछले 2 घंटे से है आपके साथ, यानी कि देव। वेल, एंजॉय कीजिए ये सफर एक और मेरे साथ इस घंटे का, और उसके बाद फिर तो पता है आपको कि आपको हेलो बोलना है और आपकी फरमाइशें हम पूरी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये सेगमेंट जरूरी है जिसका नाम है शाम अवध। वेल, बहुत सी चीजें हैं मेरे पास, बहुत सी बातें हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, हमारे साथ बैठना पड़ेगा और एंजॉय करना पड़ेगा म्यूजिक। तो चलिए शुरू करते हैं इस कारवां को, और एक गीत तो आपने सुना, एक और आपको सुनवाते हैं, और फिर कुछ लखनऊ की, कुछ अवध की, कुछ जरूरी बातें आपसे जरूर करूंगा।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
2: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: जी हाँ, सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की 100.7। और ये शाम है और शाम अवध ये प्रोग्राम है, ये जो आप शो हैं सुन रहे हैं। और शाम होते होते अच्छी खबर ये आ गई है कि भैया जो है मौसम वैज्ञानिकों ने बता दिया कि अगले 2 दिन में कुछ जो है आपको इस गर्मी से, इस चिलचिलाती धूप से, इस पिचपिचाती गर्मी से जो है वो राहत मिलने वाली है, क्योंकि मौसम थोड़ा सा करवट लेने वाला है, थोड़ा सा बदलने वाला है और कहीं कहीं आंधी बौछार हो सकती है और पानी भी गिर सकता है, बरसात भी हो सकती है। उसे खैर अब पिछली बार जब हुआ था तो कुछ जगहों पे जानमाल का भी नुकसान हुआ था, तो ऐसा ना हो अगर हम तो यही चाहेंगे। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत अगर बारिश होती है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की आंधी आती है, तो कम से कम जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और लोगों को, हम सभी को थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। फिलहाल आपको राहत मिलती है इस धूप से जब आप घर में रहते हैं और इंजॉय करते रहते हैं 100.7, क्योंकि म्यूजिक का डोज आपको मिलता है यहाँ पर लगातार, और साथ ही साथ आप इंजॉय करते रहें नॉन स्टॉप म्यूजिक, क्योंकि कहीं बाहर जाने की इस धूप में कहाँ जाएंगे, कहाँ घूमेंगे, किसके यहाँ जाएंगे, हर कोई तो अपने घर के अंदर है और बाहर निकलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो धूप की मार है वो तबीयत खराब कर सकती है ना। तो फिलहाल हमारा म्यूजिक

वेल, ऐसा एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि लखनऊ विश्वविद्यालय यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की पीएचडी पार्ट टाइम प्रवेश यानी कि 2025-26 के तहत बायोकेमिस्ट्री और एजुकेशन के विषयों से जो भी सिलेक्ट हुए हैं, जो भी अभ्यर्थी, जो भी एप्लीकेंट्स, उनके परिणाम रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं और जो भी चुने गए हैं जो भी अभ्यर्थी, वो अपनी लॉगिन आईडी से जो है अपनी फीस जमा कर सकते हैं। और ये जो जमा करने की तिथि है, जो तारीख है, वो 12 जून है। तो इस बात का ध्यान रखें और अपनी फीस टाइम पर जमा कर दें।

आपको बताएं कि डाक अदालत जो है वो ऑर्गेनाइज होने वाली है 1 जुलाई को। पोस्ट मास्टर जनरल मुख्यालय जो परिक्षेत्र कार्यालय में 1 जुलाई को 2:30 बजे से डाक अदालत लगाई जाएगी और डाक सेवा से संबंधित जो भी मामले हैं वो याचिका 19 जून तक प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब जिनकी भी कोई शिकायतें हैं, कोई प्रॉब्लम है और कोई भी मामला है अगर, तो वो 19 जून तक जो है वो अपनी समस्या जो है उसे संबंधित इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। और ये जो है ऐसे ही मामलों पर विचार किया जाएगा जिन्हें पहले प्रवर डाक अधीक्षक या फिर डाक अधीक्षक स्तर पर होने वाली डाक अदालत में उठाया जा चुका है, यानी कि कोई भी नया मामला अगर आपका है तो वो इसमें डिस्कस नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखें और अपनी अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप इस अदालत में जाकर उसका लाभ ले सकते हैं 1 जुलाई को। लेकिन हाँ, जो भी आपकी याचिका वो 19 जून तक जरूर आप अपनी प्रस्तुत कर दें।

वेल, एक और एग्जाम अभी हुआ है काली है, और इसका परिणाम जल्दी आने वाला है। कौन सा है वो एग्जाम जरूर आपको बताएंगे। और ये है संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद यानी कि JEECUP द्वारा आयोजित तो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा मंगलवार को समाप्त हो गई यानी कि कल। और काफ़ी लोगों ने इसमें एग्जाम दिया और काफ़ी लोग ने जो है वो स्किप भी कर दिया। हालांकि एग्जाम तो कंडक्ट हो गया है और इसका रिजल्ट जल्द आने वाला है, और ये 20 जून को जो है इसका रिजल्ट आने की संभावना है। और परिणाम यानी कि रिजल्ट आने के बाद ही काउंसलिंग की डेट भी डिसाइड कर ली जाएगी। तो भाई आप अपडेट रहिए और देखिए 20 जून के आसपास आपका जो रिजल्ट है उसमें आपने क्या स्कोर किया, उसके बाद आपकी काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: वेल 6:51 हो रहा है और जो भी टूरिस्ट अब आएंगे ना उनको भारतीय परंपराओं से अब परिचित कराया जाएगा। वो कैसे होगा बिल्कुल आपको बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश संस्कृति संग्रहालय म्यूजियम एंड रिचुअल सेंटर में जो भी टूरिस्ट होंगे उनको भारतीय संस्कृति परंपराओं और रीति रिवाजों से परिचित कराया जाएगा और लखनऊ में ये सेंटर डेवलप हो रहा है। इस सेंटर का क्यूरेशन का जो काम है उसकी मतलब डिजाइन जो वो आखिरी दौर में है और जल्दी ये शुरू हो जाएगा। बख्शी का तालाब क्षेत्र में बनाए जा रहे इस सेंटर में मतलब जन्म से लेकर मरने तक यानी कि मृत्यु तक भारतीय जीवन यात्रा और अर्थ धर्म काम और मोक्ष जैसे जो है इनको केंद्र में रखा जाएगा और आधुनिक तकनीकों टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, जैसे 3D प्रोजेक्शन मैपिंग, पैनोरामिक वीडियो वॉल से इन सारी जो है इनको दर्शाया जाएगा और सारी प्रस्तुतियां इनके द्वारा होंगी। तो चलिए एक अच्छा कार्य कि जो भी टूरिस्ट आएंगे उत्तर प्रदेश में उन सबको जो है भारतीय संस्कृति का ज्ञान और ज्यादा मिलेगा और जो भी है मतलब जो भी हमारा धर्म है जो भी इससे करीब जाएंगे और बहुत सी चीजें जो है वो शायद बहुत लोगों को नहीं पता है उसका ज्ञान उसकी जानकारी सबको मिलेगी।

वेल, अब वक्त ये कह रहा है कि इजाजत लेनी होगी, क्योंकि बस अगले प्रोग्राम के इंतजार आप सभी को है, जिसमें आप डायल करते हैं नंबर हमारा और हम पूरी करते हैं आपकी फरमाइश। तो बने रहिए और सुनते रहिए 90.7 FM। फिलहाल दीजिए देव को इजाजत इस प्रोग्राम से, मिलता हूँ अगले प्रोग्राम में।

0: नमस्कार, 7 बजे हैं। अब सुनिए प्रदेश की टॉप 10 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर आज प्रस्ताव किया पारित। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हो रही है एनडीए की बैठक। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं समेत भाजपा के शीर्ष नेता बैठक में शामिल। प्रधानमंत्री ने किया बैठक को संबोधित। सबसे लंबी अवधि तक प्रधानमंत्री के रूप में देश सेवा करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी प्रधानमंत्री को बधाई। कहा, देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है ये कीर्तिमान। प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय तक निर्वाचित पीएम के रूप में सेवा करने पर आज प्रदेश भर में हुआ विविध कार्यक्रमों का आयोजन। लखनऊ, अयोध्या, जौनपुर, वाराणसी में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न। कानपुर देहात में बांटे गए आयुष्मान कार्ड। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत राज्यों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम आवंटन की घोषणा। उत्तर प्रदेश को मिली सबसे ज्यादा 9,721 करोड़ से अधिक की धनराशि। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से हुई संपन्न। सभी 75 जिलों में बनाए गए 1,183 परीक्षा केंद्रों पर रही सीसीटीवी की निगरानी। कृषि विभाग ने प्रदेश के किसानों को मौसम की चुनौतियों से निपटने के लिए नई रणनीति बनाने का किया आह्वान। वाराणसी में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने श्री अन्न और तिलहन फसलों के रकबे को बढ़ाने पर दिया विशेष जोर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में की आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन की कार्यप्रणाली और प्रगति की समीक्षा। सीएम ने आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में त्वरित जांच, प्रभावी कार्रवाई और दोष सिद्धि सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सीएम डैशबोर्ड पर संचालित विकास कार्यों की नवीनतम रैंकिंग की जारी। उत्कृष्ट कार्यों के लिए औरैया के डीएम बृजेश कुमार को मिला पहला स्थान। दूसरे स्थान पर रहे जालौन के जिलाधिकारी राजेश पांडे। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का जताया अनुमान। प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बिजली कड़कने और आंधी की चेतावनी की जारी। ओलावृष्टि की भी जताई आशंका। इस बुलेटिन में इतना ही। 7:20 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

जी हाँ, जिसे हर दिल गुनगुनाए, और अभी आपका दिल बहुत जोर से धड़क रहा होगा और बहुत जोर से गुनगुना रहा होगा, क्योंकि अब वक्त है कि हो सकता है आपका नंबर लग जाए, आपकी लॉटरी लग जाए, क्योंकि प्रोग्राम शुरू हो चुका है हेलो एफएम, जिसमें आप डायल करते हैं हमारा नंबर और भाई आपसे होती है थोड़ी गुफ्तगू, थोड़ी बातचीत, और उसके बाद हम आपकी फरमाइश पूरी करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज किसका नंबर लगेगा और किसकी लॉटरी लगेगी और किसकी किस्मत चमकेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये ट्रैक आप तक भेज रहा हूं और तब तक आप नंबर डायल करना हमारा शुरू कर दीजिए जल्द से जल्द, और मेरी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जो कॉलर्स हैं उन्हें लिया जाए और भले ही छोटी बातचीत हो, थोड़ी बातचीत हो, उनके पसंद के गाने बजा सकें, और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम हमारे श्रोताओं को इंक्लूड कर सकें। तो चलिए हो जाइए शुरू, बिल्कुल नंबर डायल कीजिए। मैं हूं देव आपके साथ लेकर ये प्रोग्राम जिसका नाम है हेलो एफएम।

दिया जाए और भले ही छोटी बातचीत हो, थोड़ी बातचीत हो, उनके पसंद के गाने बजा सकें और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम हमारे श्रोताओं को इंक्लूड कर सकें। तो चलिए हो जाइए शुरू, बिल्कुल नंबर डायल कीजिए। मैं हूं देव आपके साथ लेकर ये प्रोग्राम जिसका नाम है हेलो एफएम।

0: हेलो।
1: हाँ भाई साहब।
0: जी जी नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: हम श्री प्रकाश तिवारी उन्नाव से भाई साहब बोल रहे हैं।
0: अच्छा जी, बताइए।
1: बताया तो आप
0: नहीं नहीं उन्नाव से? नहीं नहीं वो तो ठीक है, आपने बताया, आपका गाना भी निकल गया है बिल्कुल, आप अभी आप सुनेंगे भी, लेकिन कुछ थोड़ी बातचीत तो करेंगे।
1: नहीं बिल्कुल कीजिए
0: जी, बताइए उन्नाव से आप कहाँ से? उन्नाव में कहाँ?
1: उन्नाव से आप जैतीपुर हरौनी के पास में है भाई साहब, जैतीपुर।
0: अच्छा जैतीपुर के पास।
1: हाँ
0: अच्छा, इस वक्त कहाँ पे? अपने घर से हैं या फिर बाहर है? आपने फोन मिलाया बाहर से?
1: नहीं, घर पे हैं भाई साहब।
0: ओके, तो कैसी मौसम, कैसे चल रहा? वैसे अभी तो पता चला है कि एक दो दिन में कुछ थोड़ी राहत मिलने वाली है गर्मी से।
1: हाँ राहत मिलने वाली है, आज कुछ बदली टाइप की थी भाई साहब, पानी तो भी गिरा नहीं।
0: नहीं नहीं अभी तो नहीं गिरा, वो मौसम वैज्ञानिक बता रहे कि एक दो दिन में हो सकती है कुछ बात।
1: अरे तो भाई साहब आपके मुंह में गिर सककर
0: नहीं नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ ये, मैं तो उनकी बात आप तक पहुँचा रहा हूँ।
1: अच्छा भाई साहब,
0: तो चलिए, और अकेले हैं इस वक्त? आपके साथ भी मतलब दोस्त लोग हैं साथ में, परिवार के लोग हैं इस वक्त?
1: तो डेली चेक कर रहे हैं भाई साहब।
0: हाँ जी बताइए।
1: सबसे पहले आपको, आपकी टीम को भाई साहब,
0: चलिए शुक्रिया।
1: तो हमारे बाबू अंसारी भाई हैं, परवीन अंसारी हैं, नवनीत हैं, ओंकार हैं, संतोष हैं, सत्यम है, और इनकी पिंकी हैं, और हरिकेश भाई बस।
0: और आपने जो गाना चूज किया है 70s का है ना?
1: हाँ भाई साहब, हम पुराने गाने ज्यादा सुनते हैं।
0: जी काका पसंद है आपको, राजेश खन्ना?
1: हाँ बिल्कुल पसंद है। और भाई साहब आपका शुभ नाम नहीं पूछा हमने।
0: मैं देव बोल रहा हूँ।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
0: तो चलिए एंजॉय कीजिए अपना गाना, ये सुनिए और अपने साथ अपने परिवार के साथ इसको एंजॉय कीजिए, ठीक है? फिर दोबारा आपसे होगी बात।
1: ठीक भाई साहब, नमस्ते।
0: ओके ओके।

0: और चले देखते हैं जल्दी से, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है और उसके बाद समाचारों को भी वक्त हो जाएगा, तो जल्दी से एक कॉलर और ले लेते हैं। हेलो,
1: इतना कोई चाहे तो बताना, पलकों पे कोई बिठाए तो बताना।
0: जी बिल्कुल बताइए।
1: इतना कोई चाहे तो बताना, पलकों पे कोई बिठाए तो बताना, मोहब्बत तो कर लेगा हर कोई, मोहब्बत तो कर लेगा हर कोई, पर मेरी तरह कोई निभाए तो बताना।
0: क्या बात,
1: मेरी
0: है, क्या
1: तरह
0: बात
1: कोई निभाए तो बताना।
0: जी जी, अब ये जो लाइने, जी वालेकुम अस्सलाम,
1: और बताइए आप कैसे हैं?
0: अरे हम तो बढ़िया, लेकिन ये जो लाइने जिन्होंने सुनाई है उनका शुभ नाम जान सकते हैं?
1: जिला सीतापुर पचानापुर मस्जिद के पास है, शमा परवीन अंसारी बात कर रहे हैं। सर और बताइए आप कैसे हैं?
0: भी हम बिल्कुल अच्छे हैं। और शमा जी, शमा परवीन अंसारी आपने पूरा नाम बताया, हम बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं आप भी एंजॉय कर रही होंगी अभी।
1: जी बिल्कुल, 4 बजे से आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं आप। सर बहुत धमाकेदार प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। सर जल्दी आया करो, आप काफी दिनों के बाद आए हैं आप।
0: जी जी, हो कोशिश रहती है लेकिन कभी कभी कुछ बात होती है ना। वेल आगे चलिए, आपकी बात ध्यान रखेंगे और कोशिश।
1: जल्दी आना सर, इंतजार इतना मत करवाना।
0: ठीक ठीक, चलिए आपकी बात जो है उसको हम ध्यान में रखेंगे। और ये बताइए कि इस वक्त क्या हो रहा था? गाना तो आप सुन रही थी, साथ ही साथ कुछ और काम वाम चल रहा था?
1: साथ ही साथ आपको याद कर रहे थे और फोन कर रहे थे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, तो चलिए आपने याद कर लिया और आपका नंबर भी लग गया, हम भी आगे, सारी चीजें एक साथ मिल गई और आपकी पसंद का गाना जो है वो भी हम प्ले करने वाले हैं।
1: जी
0: है ना,
1: और हम गाना डेडिकेट करना चाहते हैं।
0: जी बताइए।
1: सबसे पहले आपको
0: थैंक यू,
1: फिर मेरी छोटी बहन तरन्नुम अंसारी,
0: ओके,
1: और छोटी बहन मेरी एजल नूर अंसारी, और साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, रिंकी पिंकी, आरजे पूनम और गुलाब साहब की, और मोहम्मद फैज भाई, मोहम्मद आसिफ भाई, वकील अहमद मजदूरी, और जो ये दादाजी हमारे अभी फोन किए थे, श्री प्रकाश दादाजी और मिंटू तिवारी अंकल, जावेद अख्तर भाई, जितने सुन रहे हैं सभी सुनने वालों को सुनवाना चाहते हैं सर।
0: चलिए चलिए, उन सभी को आपकी तरफ से गाना, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बाय।
1: ओके बाय।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर पारित किया प्रस्ताव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को दी बधाई, कहा देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है ये कीर्तिमान। विकसित भारत जीराम जी योजना के तहत राज्यों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम आवंटन की घोषणा। उत्तर प्रदेश को मिले सबसे ज्यादा 9,721 करोड़ 48 लाख रुपए। और यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। प्रदेश के 1,183 परीक्षा केंद्रों पर किए गए थे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में भाजपा के शीर्ष नेता एनडीए शासित 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और 2047 तक देश को विकसित देश में बदलने के मोदी सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन और नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
0: श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों और विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री मोदी को बधाई दी है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई।
2: राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए कृतज्ञता प्रकट करता है। समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एवं सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की दिशा में किए

0: पे उनके प्रयासों की सराहना करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु उनके नेतृत्व की प्रशंसा करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय लोकतंत्र का ये अभूतपूर्व कीर्तिमान संपूर्ण देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर प्रदेश भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया। इस क्रम में लखनऊ में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं अयोध्या समेत जौनपुर के श्री गौरी शंकर धाम मंदिर, देवरिया के सोमनाथ मंदिर और राज्य के अन्य मंदिरों में विशेष पूजा पाठ और हवन का आयोजन किया गया। कानपुर देहात में लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित दीपोत्सव स्वच्छता एवं सेवा कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में भव्य दीपोत्सव और महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। दिन भर चले कार्यक्रमों के तहत विभिन्न मंदिरों, घाटों और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान तथा पौधारोपण किया गया। वहीं अस्पतालों, वृद्धाश्रमों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सेवा संस्थानों में फल, दवा, वस्त्र एवं आवश्यक सामग्री का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्थानों पर प्रसाद वितरण, आतिशबाजी और मिठाई बांटकर लोगों ने अपनी खुशी व्यक्त की। भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अनेक नई उपलब्धियां हासिल की हैं। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
1: आकाशवाणी समाचार। सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण बीबी जीराम जी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। राज्यों के लिए इंटरिम अवलोकेशन में उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक 9,721 करोड़ 48,00,000 रुपए धनराशि की व्यवस्था है। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन ईओडब्ल्यू की कार्यप्रणाली और प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने ईओडब्ल्यू की आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में त्वरित जांच, प्रभावी कार्रवाई और दोष सिद्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पेश है एक रिपोर्ट।
4: बैठक में आर्थिक अपराधों से संबंधित लंबित जांच, विवेचनाओं, गिरफ्तारी, अभियोजन, जन जागरूकता गतिविधियों और संगठनात्मक सुधारों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन मामलों में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं उनमें

0: अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया को गति दी जाए, प्रत्येक मामले की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। बैठक में बताया गया कि जांच, विवेचना और कार्यवाहियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने आर्थिक अपराधों के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। प्रदेश के सभी 75 जिलों में बनाए गए 1183 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा करवाई गई, जहां सघन जांच के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर पारित किया प्रस्ताव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को दी बधाई, कहा देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है ये कीर्तिमान। विकसित भारत जीराम जी योजना के तहत राज्यों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम आवंटन की घोषणा। उत्तर प्रदेश को मिले सबसे ज्यादा 9,721 करोड़ 48 लाख रुपए। और यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। प्रदेश के 1183 परीक्षा केंद्रों पर किए गए थे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: और अब सुनिए फीफा वर्ल्ड कप 2026 की डेली अपडेट्स।
3: England goalkeeper Craig Gordon. He's been describing how it feels to realise his World Cup dream at the age of 43.
4: Magnificent to be here after all the years of trying, not only personally but as a country to get here. So yeah, delighted to be here. It feels like it's getting real now. First few weeks have been preparation, everything's been going really well. And now we're finally here. We're the last few days away from getting into the games for real now.
3: Mexico, along with the USA and Canada, is one of the host nations for the World Cup. Well, the former Mexico international Joaquin Beltran has told the BBC they're really excited for the tournament to start on Thursday.
5: We have 3 stadiums, Monterrey, Guadalajara and Mexico City, ready to receive the people of Colombia, Uzbekistan, Korea, South Africa. Everyone is talking about the 13 games we will host, so it's a very special time for us.
3: And for more World Cup news from the BBC, go to bbc.com/football.
6: World Football Update from the BBC.

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: चलिए देखते हैं, बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो
2: हेलो हेलो हेलो
1: हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही थी।
2: जी सर, आ रही है आपका?
1: जी बिल्कुल आ रही है, बताइए अपना नाम बताइए सबसे पहले। जी वालेकुम अस्सलाम।
2: साहिबा अंसारी, मैं वगन जिला लखीमपुर खीरी से बोल रहे
1: हैं। लखीमपुर से इस वक्त साहिबा जी बोल रही हैं। साहिबा जी क्या कर रही थी अभी आप?
2: सर बाहर रख के हवा खा रहे थे, वो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी।
1: और थोड़ा ज्यादा आपको होल्ड करना पड़ा, इंतजार करना पड़ा है ना?
2: जी सर कोई बात नहीं।
1: अच्छा ये बताइए कि इंतजार कितना मन, जब नंबर लग जाए तो कैसा लगता है, कि जल्दी जल्दी आ जाए कि या फिर इंतजार जितना
2: अच्छा लगता है?
1: नहीं, इंतजार करना उसके बाद अच्छा नहीं लगता, या फिर चलिए जितना अगर ज्यादा इंतजार करना पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं?
2: सर कोई दिक्कत नहीं, बस फोन उठ जाए, फोन कटे ना,
1: फोन कटे ना, बात हो जाए और अपनी पसंद का गाना बज जाए तो फिर उसके बाद तो मतलब बढ़िया ही।
2: गाना भी ना बजे सर कोई बात नहीं,
1: मतलब बस बात हो जाए ना।
2: जी सर बस बात हो जाए।
1: तो साहिबा जी अभी इस वक्त तो आप घर पे ही हैं और आपका वहाँ मौसम भी तो गर्म हुआ, लेकिन अभी पता है आपको कि अभी एक दो दिन में जो है वो थोड़ी जो है
2: हमारे वहाँ अभी से मौसम ठंडा हो गया है।
1: अभी से हो गया मतलब?
2: जी, वो ठंडी ठंडी हवा चल रही है।
1: मतलब बस बात निकली है कि अगले एक दो दिन में जो है मौसम थोड़ा बदलेगा, और शाम से देखिए बदलने लगा आपके यहाँ।

0: हमारे वहाँ बहुत मौसम ठंडा है, बहुत ठंडी हवा चल रही है।
1: कहाँ पे इस वक्त, मतलब घर के बाहर आंगन में है, खेत में है या फिर छत पे है?
0: घर के आंगन में है।
1: ओके, और साथ में
0: मम्मी है, छोटी बहन है हमारी।
1: क्या बात है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हो, आपकी पसंद का ये जो गाना है वो हम प्लेकर करते हैं, ताकि आपका गाना जो है वो आप पूरा सुन
0: डेडिकेट भी
1: सकें।
0: करना है सर हमें।
1: जी हाँ, डेडिकेट।
0: जी सर,
1: जी बिल्कुल, डेडिकेट कीजिए, किसको करना है?
0: तो सबसे पहले आप हैं,
1: चलिए,
0: फिर
1: थैंक यू सो
0: जमशेद
1: मच।
0: सर हैं, मोहम्मद आसिफ भाई हैं, मोहम्मद फैज भाई हैं, अकेले अहमद मंसूरी भाई हैं, समापी हैं, गुलाब साहबी हैं, महक अंसारी हैं, आदि अंसारी हैं, रिंकी पिंकी हैं, रोशनी रोशनी भी हैं, प्रीति,
1: जी जी
0: उत्तम कुमार, राशिद अंसारी भाई,
1: चलिए इन
0: और
1: सभी
0: जितने
1: को।
0: लोग सुन रहे हैं सबको सर।
1: जी बिल्कुल, और ये जो गाना आपने चूज किया, आपने कहा था कि गाना है पता है लेकिन फिल्म नहीं पता, तो मैं आपको फिल्म बता देता हूँ, आपकी जानकारी थोड़ी बढ़ जाएगी। जी के है ना,
0: जी सर
1: ये
0: बताइए।
1: गाना जो है फिल्म प्यासा सावन से है, ठीक है? यही वाला है ना?
0: जी
1: बिल्कुल वही वाला। चलिए ठीक है, एंजॉय कीजिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सर, थैंक यू सर।

0: वेल अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं किसी को भी, क्योंकि नंबर किसी का भी लग सकता है। और देखिए जल्दी से हमारे पास इस वक्त एक कॉलर आ गई हैं और उनसे बात करते हैं, क्योंकि वो कहीं नहीं गई और उन्होंने ट्राई करते रहीं और आखिर में उनका नंबर लग गया। हेलो,
1: गुड इवनिंग सर।
0: जी गुड इवनिंग,
1: मैं रोहिणी ग्राम हरदोई से बोल रही हूँ।
0: हरदोई से रोहिणी बोल रही है, राइट। तो रोहिणी क्या करती है आप?
1: मैं पढ़ाई करती
0: हूँ। गुड, कौन सी क्लास में है आप? 11th में।
1: हाँ।
0: यानी अगले साल बोर्ड्स हैं आपके, है ना?
1: हाँ
0: सर। अच्छा, तो कैसा लगता है बोर्ड का एग्जाम? तो आप टेंथ वाला तो दिया होगा आपने, पास किया, तो अब एक बार और आने वाला है, तो कैसा लगता है जब बोर्ड का एग्जाम आता है? तो
1: सर बिल्कुल डर नहीं लगता, अच्छा लगता है।
0: डर नहीं लगता? क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, 11th में तो अभी इस बार जो है, मतलब ये साल तो बोर्ड नहीं है, तो थोड़ी राहत लग रही होगी आपको कि हल्का लग रहा है? पिछले साल बोर्ड दिया था, इस साल राहत है, थोड़ा तैयारी करें और अगले साल फिर देना है। तो क्या करना चाहती हैं 12th के बाद?
1: जॉब करना चाहती हूं।
0: नहीं, जॉब तो करना चाहती है, मतलब जॉब तो करेंगी, लेकिन किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हैं, किस पढ़ाई में, किस स्ट्रीम में आगे बढ़ना चाहती हैं?
1: टीचर बनना चाहते हैं।
0: टीचर, गुड। क्यों, आपके घर में कोई टीचर है? हेलो, आपके घर में कोई टीचर है कि आप पहली टीचर बनेंगी?
1: पहली टीचर बनेंगे, हमारे घर में कोई नहीं।
0: कोई टीचर नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है। हम उम्मीद करते हैं और विश करते हैं आपको कि आप भी पढ़ाई कीजिए और आपका ये जो सपना टीचर बनना आप चाहती हैं, बहुत ही नोबल प्रोफेशन है जिसमें आप बच्चों को सिखाते हैं, टीचर्स लोग होते हैं, तो आप भी बनना चाहती हैं। तो अच्छा, टीचर की कौन सी क्वालिटी आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? नहीं, सभी टीचर्स तो अच्छे लगते हैं, क्वालिटी कौन सी अच्छी लगती है? बहुत से टीचर्स होते हैं जैसे आप उनसे जितने भी सवाल कीजिए, जितने भी क्वेश्चन कीजिए, वो इरिटेट नहीं होते, गुस्सा नहीं होते, समझाते हैं बार बार, आपको गाइड करते हैं। और कुछ टीचर्स हो सकता है शायद थोड़ा डांटते हो, तो आपको कैसे टीचर पसंद है और कैसा बनना है आपको? तो अच्छा, बच्चे अगर आपको डिस्टर्ब करें, आपको परेशान करें बार बार, तो आप गुस्सा नहीं करेंगी? सही बात है। और बच्चों में जिज्ञासा रहती है ना, तो वो बार बार, एक बार अगर पॉइंट क्लियर नहीं होता तो बार बार पूछते हैं, तो टीचर को जो है, मतलब जब आप टीचर बनेंगी जैसा आप बता रही हैं, तो आप बार बार उनका जो क्वेश्चन है, मिसकंसेप्शन है, कुछ भी है, तो उसको दूर करेंगी, है ना? हेलो जी, जी जी, तो चलिए आपका गाना जो है वो हम प्ले करते हैं। और किसी को डेडिकेट करना है आपको? कौन है आपके साथ इस वक्त जो सुनेगा आपका ये गाना? अच्छा, जल्दी से।
1: हेलो सर, गुड इवनिंग।
0: हाँ गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका?
1: मोहिनी नाम है सर।
0: अच्छा, रोहिणी और मोहिनी, क्या बात है, बिल्कुल मिलता जुलता नाम है। क्या करती हैं आप मोहिनी? आप भी पढ़ाई करती होंगी छोटी, कौन सी क्लास में आप?
1: बीए कर रही
0: हूँ। बीए?
1: सर।
0: अच्छा, आप बड़ी हैं?
1: जी सर, हाँ बड़ी।
0: ओके, तो चलिए, आपकी बहन तो टीचर बनना चाहती है, आप क्या बनना चाहती हैं?
1: पुलिस बनना
0: चाहते हैं। क्या बात है, अरे बाप रे, तब तो आपसे डर के बात करना पड़ेगा। तो चलिए, रोहिणी और मोहिनी जी, आपकी ये, मतलब फिलहाल ये जो पसंद है ये रोहिणी की है, और क्या ये पसंद मोहिनी की भी है?
1: ये सर दोनों लोग कहीं
0: चलिए, मुझे लगता है थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा लाइन में। ये रोहिणी की पसंद का ये ट्रैक हम बजा रहे हैं फिल्म बाजीगर से, एंजॉय कीजिए और जल्द होती है आपसे फिर बात, और फिर यहीं पर यानी कि फोन के जरिए मुलाकात। सुनते रहिए 100.7 FM। मैं हूं देव आपके साथ, 7:44 का ये वक्त हो

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: हेलो,
2: हाँ सर जी, नमस्ते
1: जी। जी नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं?
2: संतोष कुमार चौरसिया
1: जी।
2: हरियाणा से।
1: कहाँ से?
2: गुड़गांव हरियाणा से।
1: गुड़गांव से। तो संतोष जी, सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप, आपको कैसा लग रहा है?
2: बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार मेरा कॉल लगा सर।
1: पहली बार लगा है?
2: हाँ सर।

0: चलिए, तो कैसा महसूस हो रहा? बहुत अच्छा,
1: बहुत खुश हूँ सर।
0: अच्छा, प्रयास कब से कर रहे हैं?
1: सर कम से कम 1 साल हो गया सर।
0: क्या बात है, 1 साल से कंटिन्यूस प्रयास कर रहे हैं और देखिए आखिरकार आप सफल हो गए। तो अच्छा,
1: मेरा होम टाउन यूपी बलिया बेलथरा का रहने वाला हूँ सर।
0: अच्छा, वहाँ पर? अच्छा, कब से जॉब कर रहे हैं, कितने समय से बाहर हैं वहाँ पे आप?
1: सर 6 साल हो गया।
0: 6 साल से बाहर हैं, तो गुड़गांव में ही हैं या फिर इधर उधर भी और रहे?
1: गुड़गांव में सर, गुड़गांव में।
0: इधर उधर और भी? अच्छा, वहीं पे गुड़गांव में ही मेन?
1: गुड़गांव में जॉब करते हैं।
0: अच्छा, आते कब, आना कब होता है आपका बलिया?
1: अगर छुट्टी पे आते हैं।
0: ओके, तो इस वक्त आप अपने मतलब क्या कैसे रह रहे हैं, रूम लेके रह रहे हैं, पीजी में कैसे?
1: रूम लेके रहते हैं सर।
0: अच्छा, खुद ही बनाते खाते हैं?
1: नहीं सर, मेरी पत्नी है पूजा भारद्वाज।
0: ओके ओके, अच्छा मतलब फैमिली है आपकी वहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आते हैं जब, तो अच्छा लगता होगा आपको अपने घर पे?
1: बहुत अच्छा।
0: अच्छा, ये तो अभी 1 साल से ट्राई कर रहे हैं, और वैसे हमारे साथ आपका हमारा साथ कब से है, कितने सालों से?
1: 1 साल से सुनता हूँ।
0: उससे पहले नहीं सुनते थे?
1: उससे पहले सर रेडियो 2015 में सुनते थे, फिर बीच में नहीं सुन पाए, फिर उसके बाद मैं मोबाइल ऐप पे डाउनलोड करके रेडियो उसके बाद एफएम रेनबो सुनने लगा सर।
0: चलिए चलिए चलिए, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा हमें भी किया।
1: पत्नी को गाना डेडिकेट है और सभी सुनने वालों को सर।
0: चलिए बिल्कुल, और गाना भी बिल्कुल आपने सही चुना है, इसको सुनिए, एंजॉय कीजिए दोनों लोग आप लोग, ठीक है?
1: थैंक यू सर।
0: ओके ओके, थैंक यू सो मच।

0: वेल क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है, कोशिश हमारी ये है कि ज्यादा से ज्यादा कॉलर ले लें, और एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त लाइन पर हैं, आइए जल्दी से उनसे बात करते हैं। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते सर जी।
0: जी नमस्कार, नाम बताएं अपना।
1: जी मोहम्मद ताली अंसारी, राजा कटरा, बाराबंकी से। सर जी एक हफ्ते या 10 दिन के बाद मेरी कॉल लगी है।
0: तो चलिए, मतलब बहुत ज्यादा तो गैप नहीं हुआ, अभी लोग तो साल भर इंतजार करने के बाद फोन लगता है उनका।
1: जी
0: है ना, तो ताल
1: प्रिपरेशन भी चल रही थी सर की।
0: अच्छा है,
1: हो गया तो आप सर जी फिर
0: किसी जॉब जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे एग्जाम की?
1: जॉब की प्रिपरेशन, परसों मेरा एग्जाम हुआ है, बैराज सेंटर गया।
0: ओके, तो कैसा हुआ?
1: जी एग्जाम बहुत बढ़िया हुआ सर जी।
0: चलिए तो उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा।
1: जी सर जी दुआ करिए सर जी, वर्दी मिल जाए सर
0: जी। जी जी बिल्कुल, वर्दी मिल जाएगी, मतलब वर्दी मिल जाएगी तो मतलब रॉक तो नहीं चढ़ेंगे फिर उसके बाद, गर्मी तो नहीं आएगी?
1: नहीं नहीं सर जी नहीं।
0: चलिए चलिए अच्छी है, हमारी मतलब हम दुआ करते हैं कि आपको जिस चीज के लिए आपने एग्जाम दिया है और जिस जॉब के लिए दिया वो आपको मिल जाए।
1: सर जी आप कैसे हैं सर जी?
0: हम तो बढ़िया हैं, मस्त हैं, और जब प्रोग्राम करते हैं तो और भी अच्छे हो जाते हैं, आप लोगों से अलग अलग लोगों से बात करने का मौका मिलता है।
1: हम भी सर जी सोच रहे थे जल्दी से सब एग्जाम जब क्लियर हो सके तो हम भी रेनबो सुने और कनेक्ट हो रेनबो से।
0: तो चलिए फ्री हो के आप बिल्कुल सुकून से सुन रहे हैं
1: जी, आप सुकून से सुन रहे हैं।
0: तो चलिए बिल्कुल, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है, अगर डेडिकेट करना तो जल्दी से कर दीजिए।
1: आसिफ भाई तेलंगाना हैदराबाद से और सभी सुनने वालों को।
0: अच्छा जी, तो चलिए ये गाना जो है आपने हिमेश रेशमिया का चुना है फिल्म अक्सर से।
1: जी अक्सर मूवी का।
0: तो चलिए थैंक यू सो मच तालिब जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: बाय बाय।
0: और जब अगर लग जाए आपकी जॉब मतलब आप एग्जाम क्लियर कर लें तो तभी हमें जरूर बताइएगा।
1: जी जरूर बताएंगे सर जी।
0: चलिए ओके ओके, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू जी।
0: और दोस्तों इसी के साथ इस प्रोग्राम को यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ, मेरी होगी आपसे जल्द मुलाकात। सुनते रहिए 90.7 FM।

0: नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के मुख्यमंत्रियों और नेताओं को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन की यात्रा राष्ट्रीय हित और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रति साझा प्रतिबद्धता से प्रेरित रही है। एनडीए सरकार के 12 वर्ष और प्रधानमंत्री के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के उपलक्ष में एनडीए की बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने इस उपलब्धि को सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ साझा किया है। उन्होंने कहा कि जनता ईश्वर का रूप है, जिन्होंने अपना भरोसा एनडीए सरकार को सौंपा है। जनता आज स्थिर सरकार का काम देख रही है। ये सफलता देश को हर एक व्यक्ति को प्रेरित करती है। एक दिन हर किसी के सपने पूरे होंगे। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता उपस्थित रहे। सभी नेताओं ने उनके नेतृत्व की सराहना करते हुए इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर उन्हें शुभकामनाएं दी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के शिक्षा क्षेत्र में सबसे क्रांतिकारी सुधारों और मोदी सरकार के 12 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। नई दिल्ली में आयोजित साप्ताहिक शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इस नीति ने विद्यार्थियों को निर्धारित शैक्षिक योग्यता और आकांक्षाओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन यानी ईओडब्ल्यू की कार्यप्रणाली और प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने ईओडब्ल्यू की आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में त्वरित जांच, प्रभावी कार्रवाई और दोष सिद्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। विभाग ने कल और 12 जून के लिए प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बिजली कड़कने, आंधी के साथ तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। इस दौरान कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी आशंका जताई है। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। प्रदेश के सभी 75 जिलों में बनाए गए 1183 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षार्थियों को सघन जांच के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल ने 8 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है। वाराणसी में भूटान सरकार को बौद्ध मंदिर एवं गेस्ट हाउस निर्माण के लिए 2 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने अपर मुख्य सचिव पर्यटन अमृत अभिजात की उपस्थिति में पर्यटन विभाग और रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। लीज समझौता 30 वर्षों के लिए किया गया है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि बौद्ध मंदिर एवं गेस्ट हाउस का निर्माण हो जाने से बौद्ध श्रद्धालुओं की संख्या में काफी वृद्धि होगी। इस बुलेटिन में इतना ही। हमारा अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। हमारी जनगणना
1: हमारा विकास। जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned 100.7
3: Stay tuned 100.7 FM Rainbow
4: धड़कन लखनऊ की।
5: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर
6: पुरानी जींस और गिटार
5: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
7: है रते आशिके जगा
5: फिर रात को फुर्सत के वो पल
8: ये रात

0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
1: है आशिके जगा।
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
2: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz, FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई,
5: शाम होने को है।
4: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास,

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM

आ जाए कोई शायद दरवाजा खुला रखना। चुपके से कोई कहता है शायर नहीं हूं मैं, क्यों असल में हूं वो बजाहिर नहीं हूं मैं। भटका हुआ सा फिरता है दिल किस ख्याल में, क्या ज्यादा ए वफा का मुसाफिर नहीं हूं मैं। आप शायर में आज मैं यानी जमशेद हूं आपके साथ 100.7 FM रेनबो के साथ। कबूल कीजिए जमशेद का प्यार भरा सलाम।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: मुख्तसर इतना कि दो लफ्जों से बन जाता है दिल, और वसी इतना कि इसमें दो जहां के राज हैं। सुनते रहिए आबशार 100.7 FM रेनबो पर।

कल चौदहवीं की रात थी, सब भर रहा चर्चा दे रहा, सारी दुनिया से अकेले जूझ लेता हूं कभी, और कभी अपने ही साये से डर जाता हूं मैं। जिंदगी जब मुझसे मजबूती की रखती है उम्मीद, फैसले की उस घड़ी में क्यों बिखर जाता हूं मैं। जिंदगी ना जाने कब किस मोड़ पर क्या फैसला लेगी, इसका एहसास हम कभी नहीं कर पाते, बस उस ओर चलते चले जाते हैं जिस तरफ जिंदगी हमें ले जाती है। और यकीन जानिए, उस वक्त जिंदगी के हर फैसले पर यकीन करना पड़ता है, और क्यों ना हो यकीन, क्योंकि जिंदगी हमारी है, हमारे साथ वही चलते हैं जो शायद हमें समझ पाते हैं, वरना जिंदगी जिंदगी क्या है ये तो आप भी समझ सकते हैं। कुछ हाथ कुछ साथ जिंदगी में हमेशा बरकरार रहते हैं, और कुछ चंद राहों में चंद लम्हों में साथ चलते हैं। जमशेद हूं आपके साथ, आबशार में 100.7 FM रेनबो के साथ।

तू जो नहीं है कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवा है हंसी है। कुछ खाली जगहें होती हैं, शायद जिंदगी में कभी भर नहीं पाती हैं। लाख कोशिश कर ली जाए, ख्वाबों की सुहानी दुनिया को आंखों में बसाना मुश्किल है, अपनों से जताना मुश्किल है, गैरों से छिपाना मुश्किल है। जो रूठ गए वो अपने क्या, जो टूट गए उसने क्या, इन रूठे टूटे सपनों का हंस के मिल जाना मुश्किल है। मैंने कहा ना, वो खाली जगह भर जाना बड़ा मुश्किल है। कुछ ना कुछ तो कमी हो जाती है किसी की जिंदगी में ना होने से, और क्या कमी होगी सोचिएगा।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: मुख्तसर इतना कि दो लफ्जों से बन जाता है दिल, और वसी इतना कि इसमें दो जहां के राज हैं। सुनते रहिए आप शार 100.7 FM रेनबो पर।

कभी यूं भी तो हो ख्वाबों की सुहानी दुनिया को आंखों में बसाना मुश्किल है। कभी यूं भी तो हो, और शायद जिंदगी का यही फलसफा है कि चाहते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन शायद हर चीज जिंदगी में कभी मैसर नहीं होती। कभी कुछ मिलता है तो कभी कुछ खो जाता है, फिर वहां पर अपनी मर्जी कहां चलती है भला। कैसे भी हो, कुछ भी हो, अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं।

और चलते चलते हसरत जयपुर की गजल के चंद अशार आपकी नजर कर रहा हूं कि प्यार सच्चा हो तो राहें भी निकल आती हैं, बिजलियां अर्श से खुद रास्ता दिखलाती हैं, तू भी बिजली की तरह गम के अंधेरों से निकल चल, अपने मिलने पे जहां कोई भी उंगली ना उठे, अपनी चाहत पे जहां कोई दुश्मन ना हंसे, छेड़ दे प्यार से साज तू ए मोहब्बत, चल छेड़ दे प्यार से तू साज ए मोहब्बत गजल चल। इसी के साथ मुझे यानी जमशेद को दी इजाजत, प्रोग्राम आबशार से होती है मुलाकात समाचार संध्या के बाद आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम पॉप टाइम के साथ। आप बने रहिए 107.7 FM रेनबो के साथ।

0: समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
1: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन, एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
0: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

0: है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर सही स्थान पर सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
3: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 2,300,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 1,600,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियो पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला T20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled. Says Vikasit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail project, also gives nod to infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles, nearly 13,000 crore rupees investment committed. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to second round of women's singles event at Australian Open. Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, development also takes place at a rapid pace. He said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
4: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai ki jab sahi niyat se sarkar chalti hai to tez gati se vikas bhi hota hai. एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है. ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे.
3: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time.
4: 2014 ke pehle ke kai dashak bahut asthirta aur nuksan bhi uthana pada, lekin ab desh ki janta ek sthir sarkar ka kaam bhi dekh rahi hai और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है. मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूं, जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं.
3: Mr. Modi said every citizen of the country is filled with the dream of a Vikasit Bharat, and this dream is no longer limited to any single individual, government or political party. He emphasized that the government's economic and structural reforms are a product of ideological conviction rather than political compulsion.
4: Aaj desh ka har nagrik Vikasit Bharat ke sapne se bhara hua. विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा. देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है, और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है. एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है.
3: Earlier, the National Democratic Alliance, NDA, today adopted a resolution lauding Prime Minister Narendra Modi on achieving the feat of becoming India's longest-serving elected Prime Minister. During the conclave of NDA at Bharat Mandapam in New Delhi, a special political resolution was moved praising Mr. Modi's leadership. The meeting was held to celebrate the NDA government completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuous

और इस तरह से कहानी आगे बढ़ती जाएगी। 9:17 साथ में कुछ सेकंड्स और करण औजला की आवाज में कुछ ये भी है।

और कोई भी हो भाई, उसको तारीफ तो अच्छी लगती है, और अगर हुस्न की तारीफ हो तो दिल जो है कुछ ऐसा करता है जैसा इस गीत में है, तो दिल डिंग डोंग डोलता है और डिंग डोंग बोलता है।

0: क्या इतना तुझे समझा।
1: क्यों भाई दिल डिंग डोंग डिंग बोला? बिल्कुल, अगर ऐसे ही डिंग डोंग दिल दिल बोलेगा तो फिर शरारत तो होगी ही।

लेकिन शरारत कोई ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे किसी का कोई हो नुकसान। फिलहाल ये गीत आप तक पहुंच रहा है जसवीर जस्सी की आवाज में, और उसके बाद कुछ मेल मैं शामिल करने वाला हूँ। आपके ढेर सारे मेल आ गए हैं और शुरुआत करता हूँ रजनीश पासवान जी के मेल से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और आपने हमें मेल किया है सीतापुर से, सही ना? और आप प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, लव फ्रॉम डांसिंग ग्रुप रजनीश। और इस तरह से अगला मेल आता है रणवीर गुप्ता जी का। नमस्कार, और संगम विहार ओखला दिल्ली से आपने किया है मेल। रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता, ये है रेगुलर लिसनर। और गाने बड़े बेहतरीन लग रहे हैं इनको, प्रस्तुति भी अच्छी लग रही है, और साथ साथ वकील अहमद साहब का भी मेल आ चुका है और कह रहे हैं आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है और टॉप ऑफ टाइम बहुत अच्छा लगता है, और गर्मी बहुत तेज़ हो रही है और हवा चलने से मौसम अच्छा हो गया है। और भाई आप एंजॉय कर रहे हैं, ढेर सारे गीत जो आप तक पहुंच रहे हैं। जितेंद्र नामदेव, बबलू नामदेव, अंजू नामदेव, खनक नामदेव, आरुही नामदेव, सौम्या नामदेव, ग्राम अपोस घनौली, घनौधी।

सिला शेड्यूल मध्य प्रदेश से आप मेल कर रहे हैं। जबरदस्त कार्यक्रम, बेमिसाल, लाजवाब, आपने लिख के मेरा दिल खुश किया। और इंद्रपाल जी का भी मेल आ चुका है मोहली सीतापुर से, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है और गाने बहुत ही पसंद आ रहे हैं। सभी ग्रामीण एक साथ मिलकर सुनते हैं आपको और बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुलफशा सिद्दीकी जी, आपका भी मेल आ चुका है हमारे पास और आपने हमें किया है संडीला से मेल और पूरी तरह से प्रोग्राम को कर रहे हैं एंजॉय, प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया कहूँगा। तालिब अंसारी जी का भी मेल आ चुका है राजा कटा बाराबंकी से, फाइनली आई एम कम बैक बिकॉज रीजन इज एग्जाम प्रिपरेशन। चलिए, लेकिन आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं, गीत एंजॉय कर रहे हैं। इंद्रपाल जी कैसे हैं? इंद्रपाल यादव जी ललहुआ लखीमपुर खीरी से मेल कर रहे हैं, पॉप टाइम जमशेद भाई के साथ इन्होंने लिख दिया है और लिखते हैं, सुलगती धूप हो या सब रातों का समा, रेडियो ऑन होते ही बदल जाता है जहां, वो फरमाइशें, वो गाने, वो हवाओं का सफर, एक छोटे से डिब्बे में सिमटा है सारा आसमान और प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। आबशार की गजलें भी आपको बहुत अच्छी लगी और साथ साथ मोहम्मद आसिफ का भी मेल आ चुका है हमारे पास, हैदराबाद तेलंगाना से आप प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं आसिफ अंसारी साहब और सारे गाने आपको पसंद आ रहे हैं। शनूर अंसारी का भी मेल आ चुका है हमारे पास मटकली जिला बरेली से और साथ साथ मेल आ चुका है रामराज का, रामराज जी ने भी हमें कर दिया है मेल रायबरेली पहाड़ीपुर से और सारे लोग सुन रहे हैं। नाम पढ़ देता हूँ, रामराज, राजू, भानु, शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधुबनी, मधु, बजरंगी काका और हमको आपने आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बस यही आशीर्वाद चाहिए, यही चीज़ें हैं जो आपको हमारे करीब और हमें आपके करीब ले आते हैं और ये गाने को आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा, दिल ले गई कुड़ी गुजरात की।

और इस गीत के बाद दलेर मेहंदी का ये गीत लगाएगा खूबसूरत सा तड़का। 9:38 साथ में कुछ सेकंड्स से प्रोग्राम पॉप टाइम में आज मैं यानी जमशेद हूँ आपके साथ।

और अभी ढेर सारे मेल बाकी रह गए थे। ज्ञान प्रकाश आर्या जी का मेल आ चुका है हमारे पास बनारस से। वैसे गर्मी तो बहुत पड़ रही है, लेकिन उस पर आपका गाना चार चांद लगा रहा है। आगे भी अच्छे अच्छे गाने सुनाते रहिए, प्रोग्राम में हिट है। ये है ज्ञान प्रकाश आर्या जी का कहना। साथ साथ जावेद अख्तर का भी मेल आ चुका है। आपने हमें भेजा है आजमगढ़ से मेल, और प्रोग्राम को कर रहे हैं एंजॉय। अनुज जी का भी मेल आ चुका है। गुड इवनिंग, मैं बहुत अच्छा हूँ, प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लग रहा है और सारे गाने आपको बेहतरीन लग रहे हैं। आपने हमें लखीमपुर खीरी से किया है मेल। शैलेश कुमार जी का भी मेल आ चुका है हमारे पास। टाइगर शर्मा रूपपुर चंदेला से, रोशनी बबीता सारा पीहू स्नेहा सोनी दुलाब दीदी जी को मेरा नमस्कार बोल दिया मैंने। और ये अगला मेल किसका है? ये है रजनीश जी का। बिल्कुल रजनीगंधा में मैं आ रहा हूँ, इंतज़ार कीजिए। और एक और मेल मेरे पास आ चुका है, यह है एम के राज लखीमपुर खीरी से। रेनबो पॉप रेडियो पर आ रहा है, यानी पॉप टाइम रेनबो सुन रहे हैं हम और पूरी तरह से कर रहे हैं एंजॉय। सारे गाने एक से बढ़कर एक, संगीत मस्ती गपशप और लखनऊ की धड़कन, सब एक जगह। रेडियो ऑन करो, वॉल्यूम बढ़ाओ और झूमो।

और कोशिश यही रही कि कहीं पर भी आपके पैरों के थिरकन टूटने ना पाए। क्यों ऐसा हुआ ना, और ये अगला गीत भी कुछ ऐसे ही करने वाला है। जी मेरे महबूब मेरे सनम, यानी पुराना गाना नए क्लेवर में आपके लिए आपके रेडियो सेट पर मेरे यानी जमशेद के साथ प्रोग्राम पॉप टाइम है।

और भाई जिंदगी है तो दिल भी कोई लेके जरूर जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ से जाऊंगा और ये कहूंगा कि होती है मुलाकात कुछ देर के बाद आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम रजनीगंधा के साथ। ये भी कहूंगा कि अगर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो गई तो सॉरी बोलता हूँ और अगला गीत भी कह रहा है सॉरी बोल। फिलहाल मैं कहूंगा कि आप रहिए हमारे साथ यानी 100.7 FM रेनबो के साथ, जमशेद के साथ।

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर पैदा करने में प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस ने कहा है कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा है कि बधाई देते हुए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का नया रिकॉर्ड बनाने पर अयोध्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक खुशियां मनाई। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना और वैदिक अनुष्ठानों का आयोजन कर देश की निरंतर प्रगति की कामना की गई। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, आजमगढ़ टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व और दुधुआ टाइगर रिजर्व का पर्यटन सत्र मानसून सीजन के कारण 15 जून के स्थान पर 30 जून को बंद होगा। माना जा रहा है कि इस बार बरसात न होने के कारण पर्यटन सीजन को 15 दिन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। गौतम बुद्ध नगर में शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्रेटर नोएडा में बिग क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश के खिलाड़ी खेलने के लिए पहुंचे। इसके साथ युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है। आज पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह लीग में खेलने के लिए पहुंचे। इस दौरान युवा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए हरभजन सिंह ने बिग क्रिकेट लीग खेलने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी। इस बुलेटिन में इतना ही। हमारा अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
1: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
0: ओनली 100.7 FM रेनबो।
2: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
3: इंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन रहेगा संग संग।
4: मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए
0: जब छाएगा 100.7 FM रेनबो का सतरंगी रंग।

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned 100.7
3: Stay tuned 100.7 FM Rainbow
4: धड़कन लखनऊ की।
5: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर
6: पुरानी जींस और गिटार,
5: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
7: है रते आशिके जगा,
5: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
8: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा,
5: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। दिल चाहता है कि तुमसे एक मुलाकात हो, खामोश तराने हो और प्यारी सी बात हो, और फिर उस मत भरी रात में तुम्हारी मेरी बात हो, और तुम बस मुझसे ये ही कहो कि तुम ही मेरी जिंदगी और तुम ही मेरी कायनात हो।

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM।

जो बात इस जगह पर है कहीं पर नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हम आपके साथ, और ये 18 घंटों का जो सिलसिला है वो लगातार कायम रहता है, यानी सुबह से लेकर रात 12 बजे तक। तो बस इस वादे को पूरा करते हुए मैं एक बार फिर यानी जमशेद जुड़ा हूं आपके साथ प्रोग्राम रजनीगंधा में, और मैं ये कहूंगा कि इतनी मुद्दत बाद मिले हो, कुछ तो दिल का हाल कहो। कैसे बीते हम बिन प्यारे इतने माहो साल कहो। हालांकि बहुत छोटा सा वक्फा होता है, बहुत छोटा सा वक्त होता है जब हमारी और आपकी मुलाकात नहीं होती, लेकिन ना जाने क्यों ये जो छोटा सा वक्त है ये बहुत बड़ा लगने लगता है कभी कभी। और ये आम जिंदगी में अगर हम बात करें तो शायद कोई खास शख्स काफी देर तक अगर आपके सामने नहीं होता तो वो लम्हा काफी लंबा लगने लगता है। ऐसा होता है ना, क्योंकि उसने अपने दिल को आपको सौंप दिया होता है। उसकी एक एक बात आपके दिल और दिमाग पर छा चुकी होती है, और उसके बिना जिंदगी शायद बेहतर नहीं लगती। ये अल्फाज सही होगा ना? चलिए, जब एक बार दिल लग गया है, जब एक बार नजरों ने अपना मान ही लिया है, तो फिर शिकवे और शिकायत की गुंजाइश शायद जिंदगी में नहीं रह जाती। 10:13 साथ में कुछ सेकंड्स, रजनीगंधा आज मेरे यानी जमशेद के साथ 100.7 FM रेनबो के साथ।

दर्दे दिल दर्दे जिगर, दिल में जगाया आपने। और ये जो दिल का दर्द या मोहब्बत का दर्द होता है, ये बहुत अलग होता है। कभी तो लोग कहते हैं कि प्यार का दर्द मीठा होता है, बहुत अच्छा लगता है, और कुछ लोगों को ये दर्द बेहतर नहीं लगता। लेकिन मैं तो कहूंगा कि जो अल्फाज रूह को छूते, उन अल्फाजों से की है मोहब्बतें। तू जो पास नहीं हो मेरे, तेरे ख्यालों से की है मोहब्बतें। जब भी तुमने मुझे याद किया, उन प्यारे लम्हों से की है मोहब्बतें। तो ख्वाब है या धड़कती सांस, धड़के जो जोरों से, उनसे की है मोहब्बतें। और ये लाइनें इसकी बानगी हैं कि शायद मोहब्बत हर किसी के नसीब में नहीं होती, हमेशा नहीं होती। और जो मोहब्बत का लम्हा अपने दिल में उस वक्त उतार लेते हैं, शायद उन्हें ही मिलती है मोहब्बत। इसीलिए कहा है कि अगर मोहब्बत वक्त

के साथ मिल रही है, तो हर उस लम्हे को समेट लेना चाहिए, वरना बाद में फिर कहते हैं कि मैं अगर ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, या वैसा करता तो वैसा हो जाता, यानी वक्त निकल चुका होता है। इसीलिए हर उस लम्हे को संजो लेना चाहिए, सजा लेना चाहिए जिंदगी में।

मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, और इसीलिए कहा कि अगर वो मोहब्बत मिल रही है तो उसको दिल में उतार लेना चाहिए। हैरत इश्क मेरी हुस्न का आईना है, देखने वाले कहां से कहां तक पहुंचे। खुल गया आज निगाहें हैं, निगाहें अपनी जलवे ही जलवे नजर आए जहां तक पहुंचे।

अगर तुमसे न मिलता तो शायद ये राज राज ही रह जाता। क्या आखिर मोहब्बत कैसी होती है, मोहब्बत किसको कहते हैं।

दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। एक हल्का सा आस था कभी आंखों में, जो ख्वाब की मानिंद था। ऐसा लगता था कि कभी वो ख्वाब पूरा नहीं होगा, लेकिन वो ख्वाब पूरा हुआ। और मैं कहूंगा कि जो रहते हैं दिलों में वो जुदा नहीं होते, जो रहते हैं दिलों में वो जुदा नहीं होते। कुछ ऐसे भी एहसास होते हैं जो लफ्जों से बयां नहीं होते हैं।

मुझे आजमाने की कोशिश न कर। कभी सुर्ख कभी स्याह है एक कतरा तेरी मोहब्बत का, कभी जरा सा कभी बेपनाह है एक कतरा तेरी मोहब्बत का।

अब हमें चमन से क्या लेना, अब हमें गगन से क्या लेना। ऐसा ही होता है जब एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है, क्योंकि मोहब्बत एक ऐसा एहसास है इसके लिए लोग ना जाने क्या क्या कर जाते हैं। मोहब्बत के लिए इंसान वो सब भी कर जाता है जिसकी कभी उसने कल्पना नहीं की होती है। कई बार पता लग जाता है कि जिसे वो पाने की चाह कर रहा है उसे पा नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो किसी चीज की परवाह नहीं करता। इसको ही तो मोहब्बत कहते हैं।

ऐसे रिश्ते का भरम रखना कोई खेल नहीं, ऐसे रिश्ते का भरम रखना कोई खेल नहीं, तेरा होना भी नहीं तेरा कहलाना भी है। कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं और मोहब्बत की कहानी भी ऐसी होती है। कहां कैसे कब शुरू होती है बिल्कुल पता नहीं चलता, और कहां कब और कैसे खत्म होती है इसका भी पता किसी को नहीं चलता। 10:54 साथ में कुछ सेकंड्स, अभी और ढेर सारी बातें करनी है आपके साथ, और उसके लिए बस छोटा सा करना होगा इंतजार, यानी एक छोटा सा न्यूज ब्रेक, और उसके बाद फिर मेरी यानी जमशेद की होती है मुलाकात प्रोग्राम रजनीगंधा के आगे के सफर में। आप बने रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ, जमशेद के साथ।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी, नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून 2026 को प्रदेश के 75 जनपदों के 1183 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में शांतिपूर्ण, पारदर्शी और सुव्यवस्थित वातावरण में सफलतापूर्वक सम्पन्न कराई गई। परीक्षा के दौरान अत्याधुनिक तकनीकी निगरानी, ई-केवाईसी सत्यापन, बायोमेट्रिक मिलान और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के जरिए भर्ती बोर्ड ने नकल, प्रतिरूप और अफवाह फैलाने के प्रयासों पर प्रभावी अंकुश लगाया। भर्ती बोर्ड के अनुसार 3 दिवसीय परीक्षा में कुल 21,92,236 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जो कुल पंजीकृत अभ्यर्थियों का 75.94% है। भारत और भूटान के सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक संबंधों को ऊंचाई देने की दिशा में प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आज उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और रॉयल

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी, नागरिक, पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून 2026 को प्रदेश के 75 जनपदों के 1183 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में शांतिपूर्ण, पारदर्शी और सुव्यवस्थित वातावरण में सफलतापूर्वक सम्पन्न कराई गई। परीक्षा के दौरान अत्याधुनिक तकनीकी निगरानी, ईकेवाईसी सत्यापन, बायोमेट्रिक मिलान और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के जरिए भर्ती बोर्ड ने नकल, प्रतिरूप और अफवाह फैलाने के प्रयासों पर प्रभावी अंकुश लगाया। भर्ती बोर्ड के अनुसार 3 दिवसीय परीक्षा में कुल 21,92,236 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जो कुल पंजीकृत अभ्यर्थियों का 75.94% है। भारत और भूटान के सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक संबंधों को ऊंचाई देने की दिशा में प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आज उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और रॉयल